0: हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे नितिन शर्मा का राग ललित में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मेगाहर्ट्ज़ यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे, पहले हिंदी में, उसके बाद आप अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2

बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर ये खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर आधारित चिंतन।

बात उस समय की है जब वल्लभ भाई पटेल वकालत किया करते थे। वे अपने कार्य के प्रति इतने सजग और वफादार थे कि वकालत करते समय कहीं और ध्यान नहीं देते थे। एक बार की बात है, वे न्यायालय में मुकदमा लड़ रहे थे। उनके मुकदमे की बारी आने ही वाली थी। वे पूरी तन्मयता से मुकदमे के कागजात ऐसे पढ़ रहे थे जैसे बोर्ड का इम्तहान देने वाले हों। उसी समय उनके सहयोगी ने उन्हें इशारा करके बाहर आने का अनुरोध किया, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके इशारे को अनदेखा कर रहे थे। पुनः कागजात देखने में वो जुट गए। न्यायालय से बाहर खड़े उनके सहयोगी ने दोबारा उन्हें वही इशारा किया और उन्होंने फिर अनदेखा कर दिया। इतने में मुकदमे का नंबर आ गया और बहस शुरू हो गई। वे पन्ने दर पन्ने पलटते हुए बहस किए जा रहे थे। उनका सहयोगी आखिर अंदर आ गया और जब विपक्षी वकील अपनी बात कह रहे थे, तब मौका देखकर उन्होंने सरदार पटेल से धीरे से कुछ कहा। पटेल साहब ने फिर अनसुना कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके सहयोगी ने पटेल साहब से धीमे से कुछ कहा। पटेल साहब ने फिर अनदेखा कर दिया। आखिर उनके सहयोगी ने एक पत्र उनके हाथ में थमा ही दिया। पटेल साहब ने वो पत्र देखा। पत्र में उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर थी। पटेल साहब ने वो पत्र पढ़कर इस प्रकार अपनी जेब में रख लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो। मुकदमे की बहस लगभग 2 घंटे तक चली और पटेल साहब ने वो मुकदमा जीत लिया। बहस पूरी हो जाने के बाद अन्य वकीलों और न्यायाधीश महोदय ने कहा, कुछ भी हो, आपके सहयोगी ने भी इस बहस में पूरा साथ दिया था आपका। इसी बीच विपक्षी वकील बोले, सारी बातें तो वे ही बता रहे थे पटेल साहब को। विपक्षी वकील की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इसी बीच पटेल साहब का सहयोगी बोल पड़ा, मैं तो कुछ भी नहीं बता रहा था साहब। मैं तो बार बार इनसे कह रहा था कि पटेल साहब, आपकी पत्नी का निधन हो गया है, तुरंत मुकदमा खत्म करके घर चलिए, पर ये मेरी बात भला कहाँ सुन रहे थे। ये तो धड़ाधड़ बहस किए जा रहे थे। ये खबर सुनकर न्यायालय में उपस्थित सभी लोग अवाक खड़े पटेल साहब को देख

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों पर आधारित चिंतन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज़, DRM 810 किलो हर्ट्ज़ पर।

सुबह के ठीक 6:45 होने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे रामचरितमानस। इसमें आज आप सुनेंगे बाल कांड का भाग 80।

अपने दोनों शिष्यों श्री राम लक्ष्मण तथा अन्य मुनियों के साथ मुनिवर विश्वामित्र जनकपुर पधारे हैं। ये समाचार पाकर मिथिलेश जनक अपने श्रेष्ठ आत्मियों के साथ उनके दर्शनों के लिए आए। मुनिवर के चरणों में शीश रखकर राजा ने आशीष पाया। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जो फुलवाड़ी देखने गए थे वहां आ पहुंचे। सुकुमार, किशोरावस्था तथा श्याम और गौर वर्ण वाले कुमारों का चित्त चुराने वाला रूप देख तथा उनके तेज से प्रभावित होकर सभी उठकर खड़े हो गए। श्रीराम की मधुर मनोहर मूरत देख विदेह जनक को अपनी तनमन की सुदबुद्ध न रही। उन्होंने उन दो किशोरों का परिचय पूछा जिन्हें तब तक मुनि विश्वामित्र ने बड़े स्नेह के साथ अपने पास बिठा लिया था। मुनिवर ने राजा जनक की जिज्ञासा शांत की। वे दोनों रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं जिन्हें ऋषि मुनियों के जप तप को निर्विघ्न करने के लिए महाराज ने उनके साथ भेजा है। दोनों भाई रूप शील और बल के परम धाम हैं। महाराज जनक दोनों राजकुमारों को देखकर जैसे आघाते नहीं,

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। अष्टमः भारत इण्डोनेशिया संयुक्त आयोगस्य उपवेशनम् ह्यः नवदिल्ल्यां सम्पन्नम्। विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण तस्य इण्डोनेशिया देशस्य समकक्षीयेण सुगियोनो इत्यनेन च सभायाः सहाध्यक्षता कृता। भारत इण्डोनेशिया देशौ राजनैतिक रक्षा सुरक्षा समुद्रीय व्यापार निवेशः औषधीय स्वास्थ्य सेवाः डिजिटल ऊर्जा संपर्कः अंतरिक्षम शिक्षा दूतावास संस्कृति क्षेत्रम् इत्यादीनां विविध क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढं कर्तुं चर्चितवन्तौ। उभौ नेतारौ परस्पर हितानां क्षेत्रीयस्य वैश्विकस्य च विषयेपि विचाराणाम् आदान प्रदानम् अकुरुताम्। डॉक्टर जयशंकरः स्वस्य प्रारंभिक भाषणे उक्तवान् यत् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये संयुक्त आयोगः चतुर्णां वर्षाणाम् अन्तरालस्य अनन्तरम् आहूयते। अस्मिन् उपवेशने द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु महती प्रगति अभवत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः अद्य चण्डीगढ़नगरे कॉमनवेल्थ संसदीय संघस्य CPA इत्यस्य भारतक्षेत्रस्य त्रिदिवसीय मण्डल द्वितीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अस्य सम्मेलनस्य आयोजनं हरियाणा विधानसभया क्रियते। अस्मिन् कार्यक्रमे राज्यसभायाः उपसभापतिः हरिवंशः, राज्यस्य मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभायाः अध्यक्षः हरविंदर कल्याणः, संपूर्ण देशस्य पञ्चदश विधानमण्डलानां पीठासीन उपपीठासीन अधिकारिणः, विधानसभायाः सदस्याः च उपस्थिताः भविष्यन्ति। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणेन NTA इत्यनेन अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके आयोक्ष्यमाणस्य 26,000 नीट UG पुनः परीक्षायाः कृते परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रकाशितम्। पुनः परीक्षाः अपराह्ने 2 सायं 5:45 पर्यन्तं भारतस्य 150+500 नगरेषु 14 विदेशेषु च भविष्यन्ति। NTA इत्यनेन स्पष्टीकृतं यत् परीक्षा नगर सूचना पत्रं प्रवेशपत्रं नास्ति, अपितु केवलं अभ्यर्थिनां परीक्षा केंद्र ज्ञानाय सूचना एव अस्ति। अभिकरणेन अभ्यर्थिनः प्रार्थिताः यत् ते परीक्षायाः प्रवेशपत्रस्य विमोचनस्य च विषये नवीनतमानां घोषणानां कृते स्वस्य आधिकारिक जालपटले अद्यतनीयाः भवेयुः। विश्वस्य बृहत्तमा सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वस्ति योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयन राज्येषु पश्चिम बंगाल राज्यं 37वां राज्यं भविष्यति। राज्ये ABPM जय इत्यस्य कार्यान्वयनार्थम् अद्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरणं पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य सहमतिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यतः। नवदिल्ल्यां केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्रिणः JP नड्डायाः तथा पश्चिम बंगस्य मुख्यमन्त्रिणः शुभेन्दु अधिकारिणः उपस्थितौ MOU इत्यस्य हस्ताक्षरं भविष्यति। भारतस्य पूर्वोत्तर राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असम राज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्लक्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्णपदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के Zone 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने

0: मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ ये संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलेंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. West Bengal is set to become the 36th state to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana or Ayushman Bharat PMJ, which is the world's largest publicly funded health assurance scheme. National Health Authority and the Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding today for the implementation of Ayushman Bharat PMJ in the state. The MOU will be signed in New Delhi in presence of Union Minister for Health and Family Welfare, JP Nadda, and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. The development marks a major milestone in the journey towards achieving equitable and accessible health care for all citizens across the nation. The implementation of Ayushman Bharat PMJ in West Bengal is expected to extend financial protection against catastrophic health expenditure to millions of eligible beneficiaries in the state while enabling seamless portability of healthcare benefits across the country. It will also strengthen the state's healthcare ecosystem by enhancing access to quality and affordable healthcare services. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari said around 4,800 illegal immigrants have been sent to Bangladesh from holding centers set up in the state's border districts, and 836 such people are awaiting deportation from these facilities. Mr. Adhikari asserted that illegal immigration was a big issue and said his government has already handed over land to the BSF to erect around 100 kilometer of fencing out of the 556 kilometers required to secure the India-Bangladesh border. The National Testing Agency, NTA, has released the exam city intimation slip for the NEET UG 2026 re-examination, scheduled to be held on the 21st of this month. The re-examination will be conducted in pen and paper mode from 2 p.m. to 5:15 p.m. across 551 cities in India and 14 cities abroad. The NTA clarified that the exam city intimation slip is not the admit card and is being issued solely to inform candidates about the city where their examination center will be located. The NTA has urged candidates to stay updated through its official websites for the latest announcements regarding the examination and admit card release. The NEET UG for admissions into medical courses took place on the 3rd of May this year, but was cancelled by the NTA on 12th of May amid allegations of paper leak. The CBI is currently investigating this matter and a retest is scheduled for 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the 3-day Zone 2 conference of the Commonwealth Parliamentary Association India region in Chandigarh today. The conference is being hosted by the Haryana Legislative Assembly. The event will be attended by Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh, Haryana Chief Minister Nayab

0: सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली स्पीकर हरविंदर कल्याण प्रिजाइडिंग एंड डेप्यूटी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स फ्रॉम 15 लेजिस्लेचर्स अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ड्यूरिंग द इनॉग्रल सेशन हरियाणा विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण विल डिलीवर द वेलकम एड्रेस. अ स्पेशल डॉक्यूमेंट्री शोकेसिंग द हिस्ट्री एंड डिवेलपमेंट ऑफ हरियाणा विल ऑल्सो बी स्क्रीन्ड ऑन द ओकेजन. Iran has launched missiles at Israel, marking its first such attack since the 8th of April ceasefire, according to the Israel Defense Forces. Iran's state broadcaster also confirmed the launches. Following the Iranian launches, US President Donald Trump said he will tell Israeli Prime Minister Netanyahu not to carry out a retaliatory strike after Iran fired missiles at Israeli targets. The India Meteorological Department, or IMD, has said that certain regions of the country will experience rainfall as the monsoon progresses, while other areas will continue to endure heat wave-like conditions. The weather agency forecast heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall at isolated places over coastal Karnataka today. Interior Karnataka, Kerala, Mahi, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim are likely to experience heavy to very heavy rainfall. In tennis, Germany's Alexander Zverev clinched his maiden Grand Slam title, defeating Italy's Flavio Cobolli in a thrilling five-set final to win the French Open crown at Roland Garros. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर. सुबह के ठीक 7:10 और पूरे 15 सेकंड्स हो चुके हैं. अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका. इसमें आज आप सुनेंगे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजन. आपके साथ संगत कर रहे हैं सितार पर अकील अहमद, बाँसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष.

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम संगीतिका में अभी आप सुन रहे थे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजन। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 7:30 और पूरे 20 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त, आपकी आज की हमसफर अर्चना गुप्ता, जो लेकर आई हूँ आपके साथ कुछ बातें और आपके लिए बहुत सारे गीत।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आपकी सुबह मुस्कुराहटों से भरी हो, और अगर कल का दिन थोड़ा सा मुश्किल रहा हो तो याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा आता है, हर अंधेरे के बाद उजाला आता है। हिम्मत मत हारो ऐ मेरे दोस्तों, हिम्मत मत हारो ऐ मेरे दोस्तों, वक्त चाहे जैसा हो बदल ही जाता है।

दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि खुद के बारे में सोचना और समझना करना भूल ही जाते हैं। हम सबको खुश रखने की अक्सर नाकाम कोशिशें भी करते हैं, लेकिन अपने दिल की आवाज सुनना भूल जाते हैं इसके साथ साथ। और आज सुबह एक बस छोटी सी बात मैं आपके साथ कहना चाहूंगी, आपसे कहना चाहूंगी कि खुद को इतना मत थकाइए कि मुस्कुराना ही भूल जाएं। खुद को इतना भी मत थकाइए कि मुस्कुराना ही भूल जाएं। दूसरों को खुश करते करते अपने सपनों को ही भूल जाएं।

जी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ आज हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। ढेर सारे गीतों के साथ और थोड़ी एनर्जी के साथ आज मैं लेकर आई हूँ ये एनर्जेटिक सॉन्ग्स सिर्फ और सिर्फ अपने लिसनर्स के लिए। जी हाँ, कभी कभी सुबह की पहले किरण ना हमें ये याद दिलाने आती है कि कल चाहे जैसा भी था आज एक नया मौका है। ठीक वैसे ही जैसे हम आते हैं आपको जगाने और थोड़ी सी एनर्जी आपको देने, आप हमारे द्वारा यहाँ से प्ले किए जा रहे खूबसूरत गीतों को सुने, एनर्जेटिक सॉन्ग्स को सुने और जल्दी जल्दी अपना बिस्तर छोड़े और फटाफट से रेडी हो जाए अगले दिन की चुनौतियों के लिए।

दोस्तों सूरज हर रोज यही पैगाम देता है, सूरज हर रोज यही पैगाम देता है, अंधेरों से लड़ने का हौसला देता है, जो गिरकर भी संभल जाए रास्तों में उसी को जिंदगी का असली मजा मिलता है। दोस्तों अगर आज आप किसी परेशानी में है ना, किसी बात को लेकर परेशान है, तो बस इतना याद रखिए कि जिंदगी की किताब में ये पन्ना भी एक दिन पलट जाएगा। जैसे अच्छा वक्त नहीं रहता, वैसे ही बुरा वक्त भी निकल जाएगा। वक्त की धूप हो या मुश्किलों की आंधी, वक्त की धूप हो या मुश्किलों की आंधी, कुछ भी हमेशा नहीं रहता। जो आज आपको रुला रहा है, कल वही आपको मजबूत बना रहा होगा।

कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग और स्टूडियो की घड़ी के अनुसार वक्त हो चुका है 7:45 और पूरे 45 सेकेंड्स। दोस्तों कभी कभी अपने पेरेंट्स के चेहरे को गौर से देखिए, मतलब देखिए गौर से देखिए, उनकी मुस्कान में आपकी खुशी छिपी होती है, उनकी दुआओं में आपकी कामयाबी होती है। कहते हैं ना कि माँ की दुआओं से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, माँ की दुआओं से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, पिता की छाँव से प्यारा कोई किनारा नहीं होता। जो इन रिश्तों की कद्र कर ले उससे अमीर कोई इंसान नहीं होता। दोस्तों जिंदगी की भागदौड़ में अपने अपनों के लिए थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए, क्योंकि रिश्ते मोतियों की तरह होते हैं, अगर कोई गिर भी जाए तो झुक कर उठा लेना चाहिए।

चलिए बात करते हैं, एक छोटी सी मोटिवेशनल बात मैं आपसे के साथ जो है ना वो शेयर करना चाहती हूँ, वो ये कि अगर आपके सपने बड़े हैं दोस्तों तो रास्ते भी थोड़े से कठिन तो होंगे ही, लेकिन याद रखिए मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। गौर फरमाइएगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है कि जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज का दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपकी मेहनत रंग लाए और आपके चेहरे की मुस्कान कभी ना जाए, यूं ही बरकरार रहे।

जी आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग, आपके साथ हूँ मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। वक्त हो चुका है यहाँ पर 7:53 और पूरे 35 सेकंड्स।

दोस्तों वक्त हो चुका है 7:57 और हमारा भी यहाँ से जाने का जो है ना वक्त नज़दीक आ चुका है ऑलमोस्ट। तो जाने से पहले बस एक आखिरी बात आपसे कहूँगी कि सुबह की किरण बनकर हर गम को मिटा दीजिए, सुबह की किरण बनकर हर गम को मिटा दीजिए, जो बीत गया उसे दिल से भुला दीजिए। मिलेगी सफलता कदम कदम पर आपको, बस अपने हौसलों को जरा जगा दीजिए। मैं हूं आपकी दोस्त, आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना, आपसे इजाजत चाहती हूं और आशा करती हूं कि आपको ये कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा होगा। और इसी तरह आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हिम्मत रखिए, खुश रहिए और अपने दिन की शुरुआत प्यार, उम्मीद और जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ कीजिए। स्वस्थ रहिए, स्वच्छता जो है वो रखिए अपने आसपास, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। दोबारा जल्द ही मिलूंगी आपसे इसी वादे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। इसी गीत के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के ठीक 8 बजने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
3: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज के इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
2: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: एजेंट्स और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसुलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियानो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
4: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
3: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
5: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
3: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में दो दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल सम्पन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
6: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू LPG सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोकसत्य ने नेपाल के

0: विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: In a historic first for Punjab, celebrated music composer and singer A.R. Rahman delivered a live performance at the Attari border on Sunday, paying tribute to the border security force through a stirring rendition of his patriotic song, Jai Ho, notes the Tribune. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. West Bengal set to become 36th state or union territory to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. National Testing Agency releases exam city intimation slip for NEET UG 2026 re-examination scheduled to be held on the 21st of June. Lok Sabha Speaker Om Birla to inaugurate Commonwealth Parliamentary Association India Region Zone 2 conference in Chandigarh today. New Delhi says Indonesia is a key pillar of India's Act East policy. Iran fires waves of missiles at Israel for first time since April ceasefire. And in tennis, Germany's Alexander Zverev secures his maiden Grand Slam title. And with that, we end the morning news. Have
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन दोयम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीक नमाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। ईरान ने अप्रैल जंगबंदी के बाद से पहली मर्तबा इसराइल पर मिजाइलों से हमले किए हैं। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरव ने इटली के फेलियो कोबली को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY नाफिज करेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी फंड से चलने वाली सेहत इंश्योरेंस स्कीम है। सेहत के कौमी अथॉरिटी और मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नफाज के लिए आज एक मफाहमत नामे पर दस्तखत करेगी। इस मफाहमत नामे पर दस्तखत सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर JP नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदो अधिकारी की मौजूदगी में किए जाएंगे। इस पेशरफ्त को मुल्क भर में मुल्क के सभी शहरियों के लिए मुसावी और हिफ्जान सेहत की रसाई के सफर में एक बड़ा संग मील बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल में ABPMJAY के नफाज से इस बात की उम्मीद है कि रियासत में लाखों अहल मुस्तफीदीन को भारी भरकम सेहत अखराजात से माली तहफ़ फराहम होगा, जबकि मुल्क भर में हिफ्जान सेहत के फवायद के इम्कान में बिला रुकावट मदद मिलेगी। इससे मेयारी और सस्ती हिफ्जान सेहत खिदमात तक रसाई में इजाफा होगा और रियासत का हिफ्जान सेहत का निज़ाम भी मजबूत होगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना JAYPM अहल मुस्तफीदीन को सानवी और आला दर्जे के अस्पताल में दाखिल होकर इलाज के लिए फी खानदान हर साल 5 लाख रुपए तक सेहत बीमा फराहम करती है। इम्तिहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तिहान के लिए इम्तिहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी की है। ये इम्तिहान इस माह की 21 तारीख को मुनाकिद कराया जाएगा। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रजिस्टर्ड उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना दरख्वास्त नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करके अपने इम्तिहान के शहर के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: NTA की तरफ से जारी किए गए नोटिस के मुताबिक ये इम्तिहान भारत के 551 शहरों में और मुल्क से बाहर 14 शहरों में दिन में 2 बजे से 5:15 बजे तक पेन एंड पेपर तरीके कार के तहत करवाया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तहान के शहर के ताल्लुक से जारी की गई स्लिप एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि इसे उम्मीदवारों को उस शहर के बारे में मुतला करने के लिए जारी किया गया है जहां उनके इम्तहान का सेंटर वाक़ है। एनटीए ने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा है कि इम्तहान और एडमिट कार्ड जारी किए जाने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के बारे में मालूमात उसकी बाकायदा वेबसाइट से हासिल कर रहे हैं। मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट यूजी इम्तहान का इनेकाद 3 मई को कराया गया था, जिसे बाद में पेपर लीक होने के इल्जाम के सबब 12 मई को एनटीए की जानिब से मनसूख कर दिया गया। फिलहाल सीबीआई में इस मामले की जांच कर रही है और 21 जनवरी को ये इम्तहान दोबारा मुनक़द कराया जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
2: लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लिमानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन की 3 रोज़ा जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फ़राइज़ हरियाणा कानून साज असेंबली की तरफ से अंजाम दिए जा रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टैगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क़याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलातों और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजनल 100 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज़ को पहुँचा रहा है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
4: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के ज़रिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के ज़रिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निज़ाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज़ किया गया था। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: साल 2014 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज़ किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात कर

0: वजीर खारजा सुगैनियों ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगैनियों ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नितिनयाहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाज़ें सुनी गईं क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंग बंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी जिसने इतवार को बेरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बेरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मजाहमत की एक मुनजम कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लेबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहिदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलवियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वज़ीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। امتحانات منعقد کرانے والی قومی ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی 2026 کے دوبارہ امتحان کے لیے امتحان کے شہر سے متعلق سلپ جاری کر دی ہے۔ یہ امتحان اس ماہ کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ لوک سبھا اسپیکر اوم برلا آج چنڈی گڑھ میں کامن ویلتھ پارلیمانی ایسوسی ایشن سی پی اے انڈیا ریجن زون

0: एम कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीद नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार 8:45:15 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। आज आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे रूबी गोस्वामी द्वारा राग नट भैरव में गायन।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजिर हां मैं बलविंदर। अज 8 जून है ते अज तो 90 साल पहला ऑल इंडिया रेडियो दी शुरुआत हुई सी। अपनी भरोसेयोग ऑन एयर मौजूदगी नू बरकरार रखदे हुए आकाशवाणी लगातार विकसित हो रहा है। अज ये नैटवर्क 23 भाषावां ते 146 उपभाषावां विच प्रसारण करदे हुए 98% भारतीय आबादी तक पहुँच रखदा है ते दुनिया दे सब तो वड्डे प्रसारण संगठन वजो खड़िया है। आकाशवाणी दे पंजाबी प्रोग्राम दे संबंध विच आओ सुनदे हां एक विशेष प्रस्तुति आकाशवाणी दिल्ली दे पंजाबी प्रोग्राम दा सफर। वाचक ने जसपाल कौर, लेखक ते प्रस्तुतकर्ता ने बलविंदर सिंह।

ऑल इंडिया रेडियो ने अपने शानदार सफर दे 9 दहाके पूरे कर ले ने ते हुण मना रहा है अपनी 90वीं वरेगंढ। 8 जून 1936 नूं ऑल इंडिया रेडियो दी शुरुआत हुई ते 1956 तों इस नूं आकाशवाणी किया जाण लग्या। इन्हां 90 वरियां दौरान ये गवाह बनिया भारत दी आज़ादी दा। ये गवाह बनिया आज़ादी दे मगरों उसरदे ते विकसित हुंदे भारत दा। ये आवाज़ बनिया देश दे लोकां दी ते इस दी आवाज़ गुंजण लगी देश दे कोने कोने विच। अज ये 23 भाषावां ते 100 तों वध बोलियां विच रोज़ाना प्रोग्राम प्रसारित करन वाला दुनिया दा सब तों वड्डा रेडियो नैटवर्क है, जिस दी पहुँच भारत दी लगभग 99% वसों तक है। आकाशवाणी दा हमेशा उद्देश रहा है सूचना, सिख्या ते मनोरंजन। जदों देश विच साखरता दर बहुत घट सी, बहुत घट लोकां दी पहुँच अखबारां तक सी, उस वेले आकाशवाणी ने सब नूं सूचना नाल जोड़िया। देश अते दुनिया च की वापर रहा है इस बारे लोकां नूं चेतन किया, लोकां नूं सिख्यत करके उन्हां दे जीवन पद्धर नूं उच्चा चुकण विच आकाशवाणी दी बहुत वड्डी भूमिका रही है। लोकां नूं उन्हां दी भाषा विच सिख्या अते जानकारी दे के अते जागरूक करके उन्हां दे जीवन पद्धर नूं उच्चाउण विच रेडियो ने बेमिसाल योगदान दिता है। साखरता, सिख्या, सेहत संभाल, महिला विकास, बाल विकास, समाजिक कुरीतियां तों मुक्ति, विज्ञानक वतीरा, पशु पालन ते खेतीबाड़ी, यानी हर खेतर विच हर वर्ग दे विकास विच निग्गर भूमिका निभाई। हरी क्रांति लियाउण विच आकाशवाणी दे योगदान नूं भुलाया नहीं जा सकता।

आकाशवाणी दिल्ली दा पंजाबी प्रोग्राम अज भी अपने माण मत्ते सफर ते माण महसूस करदा होया मिट्टी दी महक दे नाम नाल स्रोतियां नू अपने गौरवशाली विरसे कला साहित्य सभ्याचार नाल जोड़दा होया ते पंजाबी भाषा दी सेवा करदा होया निरंतर नवियां पुलंगा पुट रहा है। आकाशवाणी दे 90 वरियां दे सफर विच आकाशवाणी दिल्ली दे आकाश उत्ते पंजाबी प्रोग्राम एक तारे वांग लिश्क रहा है। हुणे असीं सुन रहे सी आकाशवाणी दिल्ली दे 90 साल पूरे होण ते एक विशेष प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली दे पंजाबी प्रोग्राम दा सफर। वाचक सन जसपाल कौर, लेखक ते प्रस्तुतकर्ता सन बलविंदर सिंह। ते आओ हुण सुणदे हां एक गीत सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच।

0: कर जावा काबे नू, दिल लोचे तखत हजारे नू। सुरिंदर कौर दी आवाज़ विच हुणे तुसी इह गीत सुन रहे सी। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।
1: अभी आप पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष अरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उप पीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत शुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गरीबों के कल्याण के लिए सरकार की 12 साल की विकास यात्रा पर प्रकाश डाला। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत ने कई बदलाव देखे हैं और इन बदलावों के केंद्र में गरीब कल्याण और समाज के वंचित वर्ग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा अंत्योदय से प्रेरित रही है और उसकी हमेशा यही कोशिश रही है कि विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच सके जो दशकों से पीछे छूट गए थे। कोलकाता के जाधवपुर स्टेशन के पास कल रात अवैध फेरी वालों को हटाने की कार्रवाई के दौरान तनाव बढ़ गया। दरअसल वामपंथी और कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कार्रवाई का विरोध करने के लिए पहुंचे थे। इसके बाद केंद्रीय बलों के साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। सृजन भट्टाचार्य समेत कई वामपंथी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। यह ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करती है। मौसम विभाग ने कहा कि मॉनसून के आगे बढ़ने के साथ साथ देश के कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी, जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने आज तटीय कर्नाटक में मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान जताया है। मध्य कर्नाटक, केरल, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मध्य महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria.

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आपकी पसंद। फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज तो आपका और हमारा दिन है, यानी बेस्ट फ्रेंड डे। आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से हैप्पी बेस्ट फ्रेंड डे मुबारक। और दोस्तों, क्योंकि आकाशवाणी ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम और आप जुड़े हुए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस दुनियादारी का, फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस दुनियादारी का, बस नाज है अपनी यारी का। चलते नहीं हैं हम कभी भी अकेले, साथ चले काफिला यारी का।

दोस्तों, आपके मेल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, और अगर आप भी अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए या हमारे लिए कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें मेल करिए। हमारा ईमेल है ipradiodelhi@gmail.com। तो आप हमें मेल करते रहिए, और अपनी पसंद के भी और अपने दोस्तों की पसंद के लिए भी। और ये हमारे पास मेल आया है चंडीगढ़ से, बिमला आनेजा, सतीश आनेजा का। और ये मेल आया है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का, उत्तर प्रदेश से। इन्होंने हमें शुभकामनाएं दी हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष बेमिसाल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये अगला मेल है हमारे पास सीतामढ़ी बिहार से, मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, साजिया शाहीन नाज, नाजिया नूरी नाज, नुजहत जहानाज। और इन्होंने कहा है कि हमें अपने प्रोग्राम में शामिल करें, तो हमने आपको अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है। महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली, शलोक कुमार, और महाराष्ट्र से ही सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार। गोविंदपुरा अहमदनगर से हैं जुनेद मुजावर, सबीहा मिसाइल, जैनब मुजावर। महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख, नाजिया नाजिर, साजिद शाहिद, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुचाना सिंह पाठक। ये हैं अनारकली बाज़ार जगराम से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। आइए सुनते हैं आप सब की पसंद का ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल और आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना। और दोस्तों आपके मेल हमारे पास आ रहे हैं और ये मेल हमारे पास आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा का। इन्होंने लिखा है कि हमारे जैसे हज़ारों मिलेंगे लेकिन उन हज़ारों में हम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपके जैसे हज़ारों मिल सकते हैं पर उन हज़ारों में आप नहीं मिलेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। और आपने हमारा स्वागत भी किया है, बहुत शुक्रिया आपका। और ये मेल आया है हरजिंदर सिंह भाटिया का। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और मन्नत मक्कड़, कमाल साहनी, ये इनका मेल आया है हमारे पास जालंधर से। उत्तराखंड से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू, इन्होंने हमारा शुक्रिया किया है और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप मक्कड़, इन्होंने फिर से हमें मेल किया है। रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, दोस्तों आप हमारे पास जो है एक ही मेल एक ही बार कोशिश कीजिए कि किया कीजिए ताकि हम सभी के मेल शामिल कर पाएँ, क्योंकि आप बार बार हमें मेल करते हैं तो उससे हमें भी थोड़ी सी परेशानी होती है। ये कुरावली से हैं अमित कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा। मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, इन्होंने हमें धन्यवाद किया है और प्यार भरा नमस्कार, आपको भी हमारा नमस्कार। उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, दोस्ती एक ऐसा अनमोल रिश्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के पनपता है, और ये वो रिश्ता है जिसे हम खुद चुनते हैं और जो जिंदगी के हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहता है। और ये कोई किताब नहीं जिसे बस पढ़ लिया जाए, ये वो विश्वास है जिसे हर सुख दुख में निभाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसे ही दोस्त आप हमारे हैं जो हमें लगातार मेल करते रहते हैं और हमारे प्रोग्राम को पसंद भी करते हैं। तो ये हमारे पास मेल आया है सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया का, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा और आरजू और नव्या। और ये अगला मेल हमारे पास आया है रमेश चौहान का, सूर्य नगरी, जोधपुर, राजस्थान से, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी और हिमांशु का। ये हमारे पास मेल है उत्तम नगर दिल्ली से, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। उत्तम नगर दिल्ली से ही इन्हीं का ही है, बोधराज खोरवाल का। सहारनपुर से हैं जॉन डी कैस्टो, रोजी, पर्ल और विलिस डी कैस्टो का। और ये मेल हमारे पास आया है सीतामढ़ी से अक्रम हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत अक्रम, वसीम अक्रम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अक्रम, शमीम अक्रम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी, कलेर बिहार से, मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन। सनावत से हैं शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना। और दोस्तों, आप हमें बार बार मेल कर रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, पर एक ही व्यक्ति के बार बार मेल आ रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सभी के मेल शामिल हों। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

दोस्तों, सच्चा दोस्त वह नहीं है जो सिर्फ आपकी खुशियों में शामिल हो, बल्कि वो है जो आपकी आंखों के आंसू भी बिना कहे पढ़ ले। बिल्कुल दोस्तों, और हमारे पास मेल आ रहे हैं लगातार, और कोशिश है कि आप सभी के मेल हम शामिल कर लें। बेंगलुरु से हैं ये भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंद्र भूषण।

बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, और इन्होंने हमें बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं कि आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पी चौहान, बेबी गर्वी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार, आदर्श सार्थक, अलौकिक, और ये हमारे पास मेल आया है छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया का, और ये है पंजाब से हैं मिंटू, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। फरीदाबाद से हैं यतिन, सरोज, और ये हमारे पास अगला मेल आया है राजी शर्मा का, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना और नियान शर्मा, मलोट पंजाब से। हिसार से हैं आदित्य, सचिन, वीना रानी, रश्मि। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: हंसी से गम को छुपाना सीखा है, हंसी से गम को छुपाना सीखा है, दोस्तों की बदौलत ही मुस्कुराना सीखा है। बिल्कुल दोस्तों, और दोस्त साथ में हो तो मुस्कुराहट अपने आप ही कायम हो जाती है। और हमारे पास अगला मेला है मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक का। उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर सिंह। और ये मेल हमारे पास आया है किशन वंजानी का। ये कहाँ से हैं इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ कैंट से। किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, मंगेश नरवाड़े ये हैं महाराष्ट्र से, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल, बिहार से रविंद्र मोहन, आशा देवी, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और ये हमारे पास मेल आया है रामेश्वर कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश, इनकी पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा, वेद बाबू और समस्त कठेरिया परिवार। इन्होंने लिखा है कि हम आपका प्रोग्राम बराबर सुन रहे हैं और हमारा भी मेल शामिल करें, तो हमने आपका मेल शामिल कर लिया है। चौथी वास हरियाणा से हैं मांगेराम सतोड़, और ये लिख रहे हैं कि हमारा मेल कहाँ जाता है, आप हमारे मेल को नहीं देखते हैं। सभी श्रोताओं के मेल आप ले रहे हैं पर किसी को निराश नहीं कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया है, हमारा मेल तो शामिल नहीं होता है। तो आपका मेल हमने शामिल कर लिया है। और दोस्तों, आज बेस्ट फ्रेंड डे है, तो हम चाह रहे हैं कि आप सभी दोस्तों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो हम नहीं चाहते कि कोई भी नाराज़ हो। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।
1: तेरे जैसा या।

दोस्तों, दौलत से तो बस दुनिया खरीदी जा सकती है, लेकिन सच्चा दोस्त सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। और आप हमारे दोस्त हैं तो हम भी बहुत किस्मत वाले हैं। ये हमारे पास मेल आया है दत्तरेंगी से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता शर्मा, रुद्र वर्मा, इन्होंने लिखा है, कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा है, आप हमारा मेल शामिल करें या ना करें, हम सुने बिना नहीं रह सकते। बिल्कुल दोस्तों, ये सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा कि आपका मेल शामिल हो या ना हो, पर आप कार्यक्रम ज़रूर सुनेंगे, और यही सच्चे दोस्त की पहचान है। ये मेल हमारे पास आया है लोहगढ़ ठाकरावाला से, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरजूर सिंह और गुरलाल सिंह, अविराज सिंह। छत्तीसगढ़ से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी, सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, ये हैं सोनीपत से। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल, पापा जी, नानक चंद मल्होत्रा। और रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और भाविक सिक्का। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता शर्मा, रुद्र वर्मा। और ये हमारे पास मेल आया है गुलाम साबिर राही मेहरा जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से, और ये हमारे नियमित श्रोता हैं। एकता कॉलोनी रोहतक से हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता।

निखिल कांगड़ा और तन्वी, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, और मसरूर हसन का है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, रुपेश संघल, और ये महाराष्ट्र से हैं महेश संघई, रुपेश संघई, कमल पाठक। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, हमारी और आपकी दोस्ती भी यूं ही बरकरार रहे हमेशा। और इसी के साथ ही अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर। नमस्कार।

0: अभी आप फिल्म संगीत आपकी पसंद कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
2: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
1: देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। ये ऐतिहासिक दिन देश के सांस्कृतिक, सूचनात्मक और प्रसारण इतिहास में एक विशेष क्षण है। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। आज आकाशवाणी 591 रेडियो स्टेशन का संचालन करती है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
4: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक संस्कृत सुभाषितम साझा किया। इसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर समस्त प्राणियों का कल्याण करना हमारी संस्कृति का मूल तत्व रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी व्यापक दृष्टिकोण के साथ भारत आज निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said that India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan and the downtrodden. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम हमारी बेड़ी में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ और सबसे पहले आपका धन्यवाद देती हूँ कार्यक्रम सुनने के लिए और हमें संपर्क करने के लिए। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओं, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए 8527449955।
1: तो श्रोताओं, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर, जिसका शीर्षक है छोटी उम्र बड़ी जिंदगी। श्रोताओं, भारत में महिलाओं की स्थिति समय के साथ सुधर रही है, लेकिन कई गृहिणी महिलाओं को आज भी घरेलू हिंसा, पति की मारपीट, सास ससुर के ताने सुनने पड़ते हैं। महिलाओं की इस स्थिति के पीछे एक कारण उनकी कमजोरी या चुप्पी भी होती है। महिलाओं को उनके साथ हो रही जातियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आज की कहानी नीतू ने भी एक समय पर आकर अपनी चुप्पी तोड़ी और दूसरी महिलाओं के लिए एक उदाहरण बनी। घर के कामकाज में कोई गलती होने, दहेज या पति को खुश ना कर पाने पर मार खाने वाली हर महिलाओं को नीतू की कहानी जरूर सुननी चाहिए। नीतू एक अच्छे परिवार में पली बड़ी लड़की थी और नीतू ने अपनी स्नातक ग्रेजुएशन की परीक्षा पूर्ण कर कंप्यूटर का कोर्स किया था और साथ ही वह जॉब भी करना चाहती थी, लेकिन समय रहते एक अच्छे लड़के का रिश्ता आ गया तो नीतू के परिवार ने नीतू का विवाह करवा दिया। नीतू के विवाह में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। बरातियों के स्वागत से लेकर दहेज, विदाई और नकद, सभी चीजों का पूरा पूरा ध्यान रखा गया। नीतू की विदाई के बाद कुछ सालों तक सब कुछ सही चल रहा था। उसका पति अमन भी उसे सब प्रेम रखता था, बस कमी थी तो नीतू के सपने पूरे होने की। नीतू शादी से पहले से ही काम करना चाहती थी, लेकिन अच्छे रिश्ते के चक्कर में उसे बाहर काम करने का समय ही नहीं मिला। शादी के दौरान नीतू के बाहर काम करने की इच्छा भी जताई, लेकिन उस समय किए वादे को अमन अब नकारने लगा। खुशहाल जिंदगी नीतू की नरक की जिंदगी में बदल गई। शादी के कुछ सालों तक तो सब कुछ सही चलता रहा। इस दौरान नीतू ने एक बेटी को भी जन्म दिया, लेकिन अब
2: नीतू, ये क्या आज फिर से आलू बैंगन बनाए? तुम्हें पता है ना मुझे आलू बैंगन पसंद नहीं।
3: पर मैंने तो आपसे पूछ के ही बनाया था ना।
2: वो मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, पर तुम्हें तो ध्यान रखना चाहिए मेरी पसंद ना पसंद का।
3: पर आलू के पराठे तो आपको पसंद है, पर ये
2: तू इधर आ, तुझे बस मुझे नीचे दिखाने का मौका चाहिए होता है। ले, अब सब ध्यान रहेगा और ये खाना भी खुद ही खाना।
3: सब काम पूछ के करती हूँ, फिर भी हर रोज मुझे मारने का कारण मिल ही जाता है इनको। अरे गुड्डी बेटा, अंदर जा, ये ठीक है, बस पैर फिसल गया मेरा, तू बस अंदर जा बेटा।
4: ये क्या फिर तुम दोनों का चालू हो गया? हे प्रभु, परमेश्वर ही बचाए मुझे इस कलेश से। तुम्हारा रोना धोना हो जाए तो खाना लगा देना मेरा।
3: जी माँ, बस अभी लगा देती हूँ।
2: जा रहा हूँ माँ, खाना आज बाहर ही खा लूंगा।
4: ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। अरे पति पर भी ध्यान दिया कर, सारा दिन गुड्डी के पीछे लगी रहती है। देखा, मेरा बेटा अमन आज फिर भूखा ही चला गया।
3: पर माँ जी, मैं तो बस।
4: चुप कर, अब मुझसे जबान लड़ाएगी? जा काम कर अपना।
5: क्या बात है कमला, आजकल रोज घर में रोने धोने की आवाजें आती हैं। बेटे बहू सही तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं गीता बहन, ये रोज रोज के कलेश से तो मैं भी दुखी हो गई हूँ। अब समझ नहीं आता कि इस बहू का क्या करूं।
5: ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने जो रोज का रोना धोना हो?
4: गीता, तू तो जानती ही है, अमन के पिता के जाने के बाद से ही अमन पर जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आजकल थोड़ा गुस्सा ज्यादा करने लगा है, पर
5: क्या,
4: बहू को भी तो ध्यान रखना चाहिए ना।
5: किस बात का?
4: अरे अमन के स्वभाव का।
5: पर इसमें बहू क्या देखे?
4: अरे अब आज ही की बात ले ले, बहू ने अमन से पूछा कि खाने में क्या बनाऊं, लेकिन मूड सही न होने के कारण खाना देखते ही अमन गुस्सा करने लगा और इसी गुस्से में बहू पर हाथ उठ गया।
5: पर इसमें गलती तो अमन की है ना?
4: भला इसमें वो भी क्या करता,
5: उसे अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए।
4: चलो छोड़ो, हम भी कहां इसमें उलझ गए। सर्दी हो गई है, थोड़ी चाय बनवाती हूँ।
5: हाँ ठीक है।
4: बहू जरा दो कप चाय ले आना, पड़ोस वाली गीता आंटी आई हैं।
3: जी माँ जी, लाई।

0: अरे वाह बहू, चाय तो तुमने बहुत बढ़िया बनाई है।
1: जी बस शुक्रिया।
0: सुना है तूने स्नातक पढ़ रखा है, तो कुछ करती क्यों नहीं? यूं ही घर में रहकर पढ़ाई बर्बाद करनी है क्या?
2: अरे अरे, ये क्या बोल रही है तू गीता बहन? ये बाहर काम करेगी तो घर कौन संभालेगा?
0: पढ़ी लिखी बहू मिली है कमला, बाहर काम करेगी तो चार पैसा घर ही में ही आएगा।
2: पर चूल्हा चौका और गुड्डी?
0: अरे कमला, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कभी चूल्हा चौके में हाथ ही नहीं दिया हो। चार पैसे लाएगी तो अमन के सर का बोझ कम हो जाएगा और घर में शांति भी रहेगी।
2: पर गुड्डी को तो अपनी माँ ही चाहिए बस।
0: धीरे धीरे वो भी समझ जाएगी, और 4 साल की तो हो ही गई, अब स्कूल में दाखिला करवा दो, खुद ब खुद व्यस्त रहेगी।
2: कह तो सही रही है तू गीता,
0: पर क्या?
2: मुझे नहीं लगता अमन मानेगा।
0: देख ये तो तुम्हारे ऊपर ही है, मैं चलती हूँ, देख लेना, और बहू तू भी चल। कमला चलती हूँ मैं।
2: अरे आ गया बेटा।
3: हाँ माँ।
2: वो मैं सोच रही थी।
3: क्या सोच रही थी माँ?
2: चल छोड़, तू खाना खा पी ले पहले, फिर तसल्ली से बात करेंगे।
3: ठीक है माँ, मैं आता हूँ फिर।
4: माँ जी, आपने उनको कहा या नहीं?
2: मुझे लग रहा है वो नहीं मानेगा, इसलिए।
4: आप रहने दो, मैं ही बात करती हूँ।
2: हाँ तू ही देख ले, बस जरा मूड देख कर बात करना, मुझे सुबह की तरह कलेश नहीं चाहिए फिर से।
4: ठीक है।
2: और सुन, गुड्डी सो जाए फिर ही बात करना, मैं अपने पास सुला लूंगी उसे आज।
4: ठीक है। आप फ्री हो गए? आप आराम करो, मैं रसोई में थोड़ा काम बाकी है, उसे समेट कर आती हूँ।
3: हाँ माँ, ये क्या खुसर फुसर चल रही है?
2: अरे कुछ नहीं, तू आराम कर।
3: ठीक है माँ।
4: सुनो जी, सो गए क्या आप?
3: हाँ, कुछ काम है तो बोलो।
4: नहीं ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये सोच रही थी कि घर का काम जल्दी खत्म हो जाता है तो सारा दिन यूं ही घर में बैठी रहती हूँ, सोचा फिर से पढ़ाना चालू कर दूं।
3: तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना?
4: क्यों, क्या हुआ? मैं तो बस।
3: फालतू दिमाग मत लगाओ, घर पर ध्यान दो बस, और मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ।
2: क्या हुआ, बोल दिया अमन को?
4: नहीं, वो मना कर दिए, कहा सिर्फ घर पर ध्यान दो।
2: एक बात बोलूं बहू, एक औरत को खुद की मदद खुद ही करनी होती है, और अब ये तुझे देखना है कि तू आगे क्या करना चाहती है। हमारी तो कट गई बेटा, अब तेरा भविष्य तेरे ही हाथ में है।
4: सही बोल रही हूँ आप, मैं आज ही बात करती हूँ। अरे अरे, आप काम के लिए निकल रहे हैं?
3: हाँ बोलो।
4: वो मैं सोच रही थी पढ़ाने के लिए स्कूल में आज ही बात कर रहा हूँ।
3: तुम्हें समझाया था ना कि घर पर ध्यान दो।
4: लेकिन इसमें हर्ज क्या है?
3: लगता है तुम नहीं समझोगी।
4: बस बहुत हुआ, मैं नहीं बोलती तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ, बस आपकी इज्जत करती हूँ इसलिए चुप रहती हूँ, नहीं तो ये रोज रोज मार खाना, हर समय चुप रहना मेरी फितरत नहीं है। शादी से पहले भी मैं काम करती थी, और आपको कहा भी था कि शादी के बाद में भी करूंगी।

0: पर क्या, बोलो बोलो।
1: मुझे लगता है हमारे रिश्ते को थोड़ा समय देना पड़ेगा, तब शायद ये सब बातें जो आपने कही थी ना, उनका अर्थ आपको समझ आएगा।
0: क्या मतलब?
1: कि मैं पढ़ाने का काम फिर से शुरू करने जा रही हूँ और कुछ समय के लिए मैं अपनी मम्मी के यहाँ रहने जा रही हूँ। जब आपका गुस्सा शांत हो जाए ना, तो आ जाना मुझसे मिलने और साथ ले आना मुझे।
0: ये क्या पागलपन है नीतू, घर कौन संभालेगा?
1: बहुत हुआ अब। माँ, आपको कभी भी कोई भी बात की जरूरत हो आप मुझे फोन कर लेना।
2: ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रखना।
1: और माँ, आपने कहा था ना कि एक औरत ही खुद की मदद कर सकती है, तो ये पहल मैंने आज से ही कर दी। वैसे भी तो आस पड़ोस के लोगों को मेरी हालत का अंदाजा हो गया है और मैं नहीं चाहती कि मेरी आगे की जिंदगी भी ऐसे ही गुजरे। आप अपना ध्यान रखना माँ, मैं चलती हूँ।
2: ठीक है बेटा, खुश रहना।
3: समय बीतता गया। कुछ ही साल में नीतू ने टीचर से स्कूल की प्रिंसिपल के पद को प्राप्त किया। कुछ महीनों में ही अमन को भी समझ आ गया। वो अपनी गलती मानकर नीतू को अपने साथ घर ले गया था और कुछ ही महीने हुए नीतू ने खुद का स्कूल भी खोल लिया। आज नीतू ने एक औरत होकर सबसे पहले खुद की मदद की और माँ की दी हुई सीख को अपनाया और अपनी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाया। हमारे देश में घरेलू हिंसा आम बात है और गांव क्षेत्र में तो बहू को कब्जे में रखने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, एक औरत आज भी उतनी ही संवेदनशील होती है जितनी वो कल थी और आने वाले कल होगी। लेकिन एक सीख हमेशा याद रखना कि पहल हमें खुद ही करनी होगी। हमें ध्यान रखना है कि हमारे आसपास अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो उन्हें सिखाएं कि पहल उनकी हो।

0: तो दोस्तों, हमारे कुछ श्रोता हैं जो निरंतर हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं और फोन कॉल के जरिए हमसे बातचीत करते हैं। आज उनके नाम हम आप सभी के साथ साझा करना चाहेंगे। सीतापुर यूपी से राम नरेश, लखनऊ यूपी से विजय कुमार मिश्रा, औरंगाबाद बिहार से देवनंदन जी, बराइच यूपी से शहजाद अली और उनकी पत्नी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रमों को सुनने के लिए और लगातार हमसे बातचीत करके हमें प्रोत्साहित करने के लिए।
1: इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या एसएमएस करें इस नंबर पर। नंबर है 8527449955। जी हाँ श्रोताओ, नंबर एक बार दोबारा नोट कर लीजिए, 8527449955। यदि आप हमें पत्र लिखना चाहते हैं तो हमारा पता नोट कर लीजिए। पता: कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ श्रोताओ, कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। और मुझे यानी कि प्रिया को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं संगीता पंत की आवाज में ये गीत।

अभी आप संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सुरमंजरी, जिसमें आज आप सुनेंगे सलीम अहमद का सितार वादन राग गुर्जरी तोड़ी में। आलाप मध्य तीन ताल में है और तबले पर संगत की है नौशाद अहमद ने।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत सुरमंजरी कार्यक्रम में अभी आप अहमद सलीम अहमद का सितार वादन सुन रहे थे, राग गुर्जरी टोड़ी में। आलाप मध्य तीन ताल में निबद्ध था और तबले पर संगत की थी नौशाद अहमद ने। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक बुनियाद

0: आदि सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने इसे आवास क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव बताया, जिससे लाखों गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित हुआ है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आज से पश्चिम बंगाल में भी लागू होने जा रही है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेंगे।
1: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
2: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। इस जांच से म्यांमार से मादक पदार्थ की तस्करी और आपूर्ति करने वाले संगठित गिरोह का पता चला है। पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर उत्तर कोरिया पहुंच गए हैं। ये पिछले 7 वर्ष में उनकी पहली उत्तर कोरिया यात्रा है। चीन का उद्देश्य लंबे समय से सहयोगी रहे और हाल के वर्षों में रूस के अधिक निकट हो रहे उत्तर कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfer, DBT, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. The Prime Minister said the journey of Garib Kalyan has become a collective movement towards human empowerment and realizing the dream of a Vikasit Bharat. West Bengal is set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, becoming the last

0: घर आंगन।
1: घर सिर्फ दीवारों में नहीं बसता, वो बसता है उन आवाजों में जो सुबह भाप चाय की भाप के साथ उठती है और शाम को थकी हुई मुस्कान बनकर लौटती है। घर वो है जहां बातें कभी पूरी नहीं होती और खामोशियां भी अपनी सी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर इन्हीं एहसासों, इन छोटी छोटी जिम्मेदारियों और रिश्तों की गर्माहट को समेटे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल यानी 366.3 मीटर पर भी। दोस्तों, आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो हम सफर सोनाली। आइए इस आंगन में कुछ देर ठहरते हैं जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और हर बात दिल तक उतरती है, और यहां हम मनाते हैं आपके साथ हमारी बातों का एक बेहतरीन गुलदस्ता जिसमें सजे होते हैं खूब सारे फूल, और बस फूलों को देखते ही याद आती है क्या बहारें।

जी हाँ, आपसे मिलने के लिए हम आ गए हैं कहाँ, लेकर कार्यक्रम घर आंगन 101 MHz FM गोल्ड पर। आप ये गाना सुन रहे थे, फिल्म थी आन मिलो सजना और स्वर थे मोहम्मद रफ़ी के साथ लता मंगेशकर के। अच्छा दोस्तों, आपको पता है ना आप हमसे कहाँ मिलते हैं? आप हमसे मिलते हैं fmgold@gmail.com पर। तो आपकी बातों का, आपकी सुझावों का, आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा इंतज़ार। हम आपके साथ आज मौजूद हैं लेकर कार्यक्रम घर आंगन। और दोस्तों, आज है 8 जून, मतलब 90 वर्षों से ये जो एक आवाज़ निरंतर हमारे साथ चल रही है ना, कभी समाचार बनकर, कभी संगीत बनकर और कभी हमारी स्मृतियों का हिस्सा बनकर, आज आकाशवाणी, हमारी अपनी आकाशवाणी, अपनी गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूरे कर रही है। इस अवसर पर सभी श्रोताओं, कलाकारों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों, तकनीकी कर्मियों और प्रसारण से जुड़े प्रत्येक साथी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल कार्यक्रमों का प्रसारण नहीं किया, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, लोक परंपराओं, साहित्य, संगीत और इतिहास की अनमोल धरोहर को भी सहेज कर रखा है। और जब हम इस विरासत की बात करते हैं ना, तो आकाशवाणी के अभिलेखागार अर्थात AIR आर्काइव्स का उल्लेख स्वाभाविक हो जाता है ना। और ये अभिलेखागार केवल रिकॉर्डिंग का संग्रह नहीं है, बल्कि भारत की सामूहिक स्मृति का जीवंत दस्तावेज है। यहाँ महान विभूतियों की आवाज़ें, दुर्लभ संगीत, लोकगाथाएँ, साहित्यिक कृतियाँ और इतिहास के महत्वपूर्ण क्षण आज भी सुरक्षित हैं। दोस्तों, समय बीत जाता है, पीढ़ियां बदल जाती हैं, लेकिन अभिलेखागार उन आवाज़ों को जीवित रखते हैं जिन्होंने अपने युग को स्वर दिया था। यही कारण है कि AIR आर्काइव्स केवल अतीत का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान का एक अमूल्य खजाना है। आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस ऐतिहासिक यात्रा को नमन करते हुए, इस समृद्ध प्रसारण विरासत और सांस्कृतिक धरोहर को हम याद करते हैं जिसने देश को सुनने, समझने और जोड़ने का काम किया। और दोस्तों, आपको एक बात और बता दें कि आज इस अवसर पर हम आपके लिए आकाशवाणी की जो 90 वर्ष की यात्रा है, इस उपलक्ष्य में आज शाम 4 बजे हमारे दिल्ली स्थित रंग भवन सभागार में आकाशवाणी @90 एक संगीतमय यात्रा, इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा रहा है। इस विशेष सांस्कृतिक संध्या में देश की विविध लोक एवं संगीत परंपराओं की रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम में आपको बता दें, नाद @90, रंग पंजाबी, मरुतरंग और यूथ वाइब्स जैसी प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और आकाशवाणी की समृद्ध प्रसारण विरासत का उत्सव मनाया जाएगा। आइए हम सभी आकाशवाणी के 90 वर्षों की इस यादगार यात्रा के साक्षी बने और संगीत, संस्कृति और रचनात्मक अभिव्यक्तियों से सजी इस विशेष संध्या का आनंद जरूर लें। और अगर आप किसी कारणवश नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, तो इस समारोह का ना सजीव प्रसारण आप आकाशवाणी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। तो ये है हमारी आकाशवाणी, जो हमेशा हमारे साथ निरंतर बनी हुई है, क्योंकि सब चीज़ें गुम हो जाती हैं लेकिन आवाज़ कभी गुम नहीं होती।

0: फिल्म किनारा में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ भूपिंदर की आवाज में ये गीत।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: दोस्तों, कभी कभी मन को विश्राम नींद से नहीं मौन से मिलता है। हम दिन भर लोगों से, परिस्थितियों से और बहुत सारे विचारों से घिरे रहते हैं।

बाहर की दुनिया से संवाद करते करते हम अपने भीतर के स्वर को सुनना ही भूल जाते हैं। ऐसे में योग केवल शरीर को साधने की प्रक्रिया नहीं बल्कि स्वयं तक लौटने का एक मार्ग बन जाता है। योग साधना का एक महत्वपूर्ण आयाम है क्या? जी हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन। ध्यान हमें संसार से भागना नहीं सिखाता बल्कि खुद के भीतर ठहरना सिखाता है। जब हम कुछ पलों के लिए अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। विचार आते हैं जाते हैं और उनके बीच एक ऐसा मौन जन्म लेता है जो भीतर संतुलन और स्थिरता का अनुभव कराता है। भारतीय दर्शन में योग का उद्देश्य केवल स्वस्थ शरीर प्राप्त करना नहीं बल्कि उस चेतना से जुड़ना है जो हमारे भीतर सदैव विद्यमान है। परम चेतन में लीन होने का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं बल्कि खुद को अधिक गहराई से पहचानना है। शायद इसीलिए योग कोई अभ्यास का मार्ग नहीं है और ये कोई अभ्यास मात्र नहीं है बल्कि ये एक यात्रा है, बाहर से भीतर की यात्रा। और इस यात्रा में हम दुनिया को नहीं खुद को पाना सीखते हैं। स्वयं को पहचानना सबसे बड़ा सुख है। मन ही वो दर्पण है जो हमें खुद की पहचान खुद से करवाता है।

फिल्म काजल में आप सुन रही थी आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत। और देखिए ना दोस्तों, हमने आपसे एक गुजारिश क्या की, आपने हमारी हर बात मानी, हमेशा मानी। तो बस देखिए, आपकी मेल्स हमारे पास पहुंच गए हैं। तो हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं, ये हमारे साथ हैं केशव, विवेक, प्रियांशी चौधरी, वास हिसार हरियाणा से, और लिखते हैं कि सोनाली जी नमस्कार, 12:10 पर आपकी आवाज़ पहचान गया था। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी आवाज़ पहचान ली। और लेकिन आपको हमसे ये शिकायत है कि हम सुबह 10 बजे

से इंद्रप्रस्थ पर क्यों नहीं आते? अरे 10 बजे नहीं तो हम 12 बजे तो आ गए ना। कभी ना कभी तो आपके साथ सारे दिन में कहीं ना कहीं आप हमें सुन ही लेंगे, और इस बहाने आप बहुत सी दूसरी आवाज़ों को भी तो सुनते हैं। तो बस सबकी आवाज़ों में सबका स्वागत कीजिए और लगातार बने रहिए कहाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नवीन भाटिया जी मोतीनगर नई दिल्ली से, ये भी हमें नमस्कार कर रहे हैं और लिख रहे हैं, सभी को आकाशवाणी के 90 ईयर्स पूरे होने की शुभकामनाएं, और 8 जून 1936 से 8 जून 2026 और आगे कई सदियों तक। शुक्रिया जी, आकाशवाणी की आवाज़ लगातार आपके साथ जुड़ी रहेगी कई कई सदियों तक। हमारे साथ एक और हमारे दोस्त जुड़े हैं, जी हाँ, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और आकाशवाणी परिवार को 90 वर्ष पूरे होने की कोटि कोटि हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। कार्यक्रम सुन रहे हैं घर आंगन, मधुर प्रस्तुति, मोहक बातें, मनपसंद गीत और मनभावन बातें भी हैं। दिल से बड़ी बधाई, आपका दिवस और जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा लिखते हैं हमें हमारे श्रोता। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हमारे साथ राजू अग्रवाल जी लिख रहे हैं, तोरा मन दर्पण कहलाए, आज जमाने में विडम्बना यह है कि अच्छा हमारा चेहरा दर्पण को अच्छा नहीं, नहीं देखिए आप इस तरह से बातें ना लिखिए, बहुत सी बातें ऐसी थी, हर चेहरा खूबसूरत होता है, चेहरे की खूबसूरती आपके मन से ही जाहिर होती है। तो आपका जो चेहरा है वो तभी खूबसूरत है जब आपका मन खूबसूरत है, और हर चेहरा हर तरह से हमेशा बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि हम हर इंसान ईश्वर की सबसे बड़ी और अनुपम कृति हैं, हम सभी बहुत खूबसूरत हैं, और आप सभी की इतनी प्यारी प्यारी मेल्स के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के 100.1 MHz FM गोल्ड पर कार्यक्रम घर आंगन, और मैं हूँ आपके साथ आपके रेडियो हम सफर सुनाली। आज हम बात करेंगे एक ऐसी योजना के बारे में जिसने बहुत से लोगों को बहुत कुछ दिया। जी हाँ, छोटे कारोबार अक्सर बड़े सपनों की शुरुआत होते हैं, ऐसे ही लाखों रेहड़ी पटरी और ठेला लगाकर रोजी रोटी कमाने वाले लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना शुरू की थी। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की यह योजना छोटे दुकानदारों और फेरी लगाने वाले लोगों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है। योजना के तहत ना दोस्तों, बिना किसी जमानत के बैंक से धनराशि प्राप्त की जा सकती है, और सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो ये है कि समय पर राशि वापस करने वालों को आगे और ज़्यादा सहायता मिलने का अवसर भी मिलता है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भी इस योजना के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ये जो योजना है ना, ये दरअसल उन लोगों के लिए है जो शहरों में रेहड़ी पटरी ठेला या फेरी लगाकर अपना व्यवसाय करते हैं। कोरोना काल में शुरू की गई ये पहल आज भी लाखों छोटे कारोबारियों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रही है। यदि आप या आपके आसपास कोई स्ट्रीट वेंडर इस योजना के बारे में जानकारी लेना चाहता है ना, तो आप प्रधानमंत्री स्वनिधि पोर्टल या अपने स्थानीय नगर निकाय से संपर्क कर सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए, ये छोटे छोटे जो कारोबार होते हैं, ये छोटे छोटे जो कारोबारी होते हैं, ये अपनी बहुत मेहनत से अपनी आजीविका कमाते हैं, तो इस तरह की योजना का लाभ उठाकर ये अपने इस व्यवसाय को और आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर फेरी वालों के पास में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, खूब सारी सजधज का सामान भी मिलता है, दुपट्टे मिलते हैं, ओढ़नी मिलती है, फिर क्या मिलती है, चूड़ियाँ भी तो मिलती हैं, है ना।

फिल्म सुहाना सफर में आप सुन रहे थे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग समुद्र से दूर रहते हैं, लेकिन सच ये है कि महासागर हमसे कभी दूर नहीं होते। हमारे आसपास जो हवा बहती है, जो वर्षा हमें मिलती है और पृथ्वी पर जो जीवन संभव है, उसमें महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत ना वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के दौरान हुई थी और साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे आधिकारिक मान्यता दी थी। यानी आज है 8 जून और आज है विश्व महासागर दिवस। इस वर्ष ना विश्व महासागर दिवस की जो थीम है वो है वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस, यानी उसका संरक्षण करें जो हमें जीवन देता है। पृथ्वी की लगभग 71% सतह महासागरों से ढकी हुई है। ये जलवायु को संतुलित रखते हैं, वर्षा चक्र को प्रभावित करते हैं और पृथ्वी पर उपलब्ध जो हमारी ऑक्सीजन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्री वनस्पतियों के माध्यम से हमें मिलता है। दोस्तों, आज महासागर प्लास्टिक प्रदूषण, बढ़ते तापमान और जैव विविधता के संकट जैसी चुनौतियों

फिल्म बारूद में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये बहुत प्यारा सा गीत। और देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं किसकी? जी हाँ, घर आंगन की, क्योंकि कार्यक्रम है घर आंगन 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर। जीवन में ना कभी कभी कुछ भूमिकाएं हमारी प्राथमिकता बन जाती हैं। परिवार, बच्चों की देखभाल या अन्य जिम्मेदारियों के कारण कई महिलाएं अपने करियर से कुछ समय के लिए दूरी बना लेती हैं, है ना? और फिर क्या होता है कि इसके बाद में वापसी में कुछ परेशानियां आने लग जाती हैं। लेकिन करियर में दोबारा वापसी करने का पहला कदम क्या है? वो है अपने अनुभव और अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखना। भले ही कार्यस्थल दूरी रही हो, भले ही आपकी अपने कार्यस्थल से दूरी रही हो, लेकिन इस दौरान ना जो आपके अंदर एक धैर्य, एक टाइम मैनेजमेंट और एक समस्या का समाधान, कुछ ऐसे कौशल हैं जो आपने इस दौरान अगर अपने अंदर विकसित किए हैं तो वो आपके लिए बहुत कारगरी साबित हो सकते हैं। वापसी की तैयारी के लिए ना आपको अपने क्षेत्र की नई जानकारियों और तकनीकों से स्वयं को अपडेट रखना उपयोगी हो सकता है। देखिए आजकल ना ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे से कोर्सेज हो गए हैं जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। वेबिनार और डिजिटल प्लेटफॉर्म सीखने के बहुत सारे अवसर हमें उपलब्ध बहुत सहज तरीके से कराते हैं। फिर ऐसे छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करना एक बहुत अच्छा

हो सकता है। जैसे आप सबसे पहले क्या करिए, आप पहले पार्ट टाइम कहीं फिर कोई काम ढूंढिए, फिर फ्रीलांसिंग भी कर सकती हैं, घर से काम या फिर अपना खुद का छोटा कोई उद्यम हो सकता है, जहाँ पर कई महिलाओं के लिए ये जो तरीके होते हैं, ये जो ऑप्शंस होती हैं, ये आत्मविश्वास लौटाने का एक बहुत अच्छा जरिया बन सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात वो ये है कि करियर में आया जो ये विराम है ना, ये आपकी क्षमता को कम नहीं करता, लेकिन जीवन के हर अनुभव से व्यक्ति हमेशा समृद्ध होता है, ये आप हमेशा याद रखें। इसीलिए यदि आप दोबारा शुरुआत करना चाहती हैं तो आपको बस कुछ चीज़ें याद रखनी हैं। जैसे आपने केवल कुछ समय का विराम लिया है, आपने अपनी पहचान खोई नहीं है, आप खुद को फिर से वापस उस फील्ड में, उस जगह पर दोबारा ला सकती हैं जो आपके लिए सबसे अच्छा रहा है, या आपने जिस कार्यक्षेत्र से कुछ समय के लिए दूरी बनाई है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए आप अगर अपनी क्षमताओं को और दोबारा तौलें और एक नई शुरुआत करें और अपने जीवन को एक नया मोड़ दें।

आरती मुखर्जी को आप सुन रहे थे फिल्म गीत गाता चल में। दोस्तों आज की ना जो माँ है, जी हाँ, उसके सामने ना बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वह घर भी संभालती है, बच्चों का ध्यान भी रखती है और कई बार अपने कामकाजी जीवन की जिम्मेदारियां भी निभाती है, मानेंगे ना। और अगर ऐसे में अक्सर ना वो खुद को या अपने आप से ये अपेक्षा करने लगती है कि उसे हर भूमिका में सर्वश्रेष्ठ होना है, लेकिन क्या सचमुच बच्चों को ऐसी सर्वश्रेष्ठ या सुपर मॉम की ज़रूरत है? ना ना, बच्चों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या होती है पता है आपको? एक ऐसे घर की जहाँ अपनापन हो, संवाद हो और मुस्कुराहटें हों। इसके लिए माँ का हर समय परिपूर्ण होना ज़रूरी नहीं, बल्कि उसका खुश और संतुलित रहना सबसे अधिक ज़रूरी है। जब माँ खुद के स्वास्थ्य, अपनी रुचियों और अपने

आराम का ध्यान रखती है ना, तो उसका जो सकारात्मक प्रभाव है ना, वो पूरे परिवार पर पड़ता है। जो माँ खुद खुश रहेगी, वही बच्चों को जीवन में संतुलन और आत्मविश्वास का महत्व भी सिखा पाएगी और अपने बच्चों को खुश रहना भी सिखा पाएगी। इसीलिए खुद पर ना मतलब जिसे कहते हैं कि अनावश्यक दबाव डालने की बजाय ये स्वीकार करना ज़रूरी है कि पूर्णता नहीं, प्रेम ज़्यादा ज़रूरी है। हर समय सुपर मॉम बनने की कोशिश ना करें, इससे बेहतर है कि एक ऐसी हैप्पी मॉम बने जिस स्वयं का भी उतना ही ख्याल रखे जितना अपने परिवार और बच्चों का रखती है। आखिरकार बच्चों को वो माँ सबसे ज़्यादा याद रहती है जो उनके साथ हंसी थी, उनके साथ बैठी थी और उनकी बातें जो हमेशा सुनती है ना, मतलब एक हंसती खेलती साथ देती माँ ही बच्चों को हमेशा अपनी याद रहती है। और हम लोग भी यही चाहते हैं कि एक ऐसी ही माँ हमारे बच्चों की नज़र में हमेशा बनी रहे, क्योंकि केवल वह नहीं जिनके लिए हमने हमेशा पूरा काम किया है, बल्कि हम वो हैं जिन्होंने खुद खुश रहकर अपने बच्चों को खुश रहना सिखाया है, क्योंकि खुश माँ ही खुश परिवार की सबसे मजबूत नींव होती है। मानेंगे ना?

0: फिल्म घर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों हमारे साथ हमारे एक और दोस्त जुड़े हैं, ये हैं उग्रसेन यादव, नई दिल्ली से लिख रहे हैं, आपको मेरा दिल से नमस्कार। आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को ये अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं, और आपकी इन्हीं सारी बातों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और देखिए चलते चलते आपसे बस यही बात कहूँगी कि हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी तब आएगी जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है कि खुशी वहीं से शुरू होती है जहाँ हम रुक कर यह देखना सीखते हैं कि जो हमारे पास है वो कितना काफ़ी है ना। ज़िंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है, एक शांत सा पल, एक गहरी सांस, किसी अपने की सच्ची मुस्कान, इन सारी बातों को, इन सारे खजानों को अपने जीवन में संजोए रखिए। हमारे साथ बने रहिए हमारे कार्यक्रम घर आंगन में, और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। इसी के साथ मुझे यानी आपके रेडियो हम सफ़र सोनाली को दीजिए अनुमति, नमस्कार। घर आंगन
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य

0: जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमा सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में चार स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Paltta Assembly re-election held on the 21st of last month. just 48 hours before

श्रोताओं, 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी व्यावसायिक सफलता साबित हुई और 1968 की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 16वें फिल्मफेयर पुरस्कारों में नीलकमल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, राम महेश्वरी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता राजकुमार को, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शशिकला और सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता महमूद सहित 8 नामांकन प्राप्त हुए। और वहीं वहीदा रहमान को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला, जो 1965 में रिलीज हुई फिल्म गाइड के बाद इस श्रेणी में उनकी दूसरी जीत थी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। श्रोताओं, नीलकमल फिल्म का संगीत रविशंकर शर्मा द्वारा रचित था और इसके गीत साहिर लुधियानवी द्वारा लिखे गए थे। इस फिल्म का गीत बाबुल की दुआएं लेती जा, जिसे हम ऑलमोस्ट हर शादियों में सुनते हैं, हमें हर बार भावुक कर देता है। इस गीत के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरस्कार के लिए मोहम्मद रफ़ी को नामांकन प्राप्त हुआ था। इस फिल्म के अन्य गीतों की बात करें तो वो भी एक से बढ़कर एक साबित हुई।

श्रोताओं, अगर बात करें फिल्म नीलकमल की कहानी की, तो आपको बता दें कि फिल्म की कहानी पुनर्जन्म और रहस्य पर आधारित है। एक आधुनिक कॉलेज की लड़की सीता यानी वहीदा रहमान नींद में चलने यानी स्लीप वॉकिंग की अजीब बीमारी से ग्रस्त है। नींद में अक्सर वो एक पुराने किले के खंडरों में पहुंच जाती हैं, जहां उसके पिछले जन्म की यादें और अधूरी प्रेम कहानी छिपी हुई है। पिछले जन्म में वो एक राजकुमारी नीलकमल थी और चित्रसेन नामक एक मूर्तिकार से प्रेम कर बैठी थी। राजा द्वारा चित्रसेन को दीवार में जिंदा चुनवा दिए जाने के कारण उन दोनों का प्रेम अधूरा रह जाता है। वर्तमान जीवन में राम नाम का एक व्यक्ति सीता को बचाता है और बाद में दोनों का विवाह हो जाता है, जिसके बाद सीता के पिछले जन्म का रहस्य खुलता है।

श्रोताओं, फिल्म नीलकमल की निरंतर लोकप्रियता का कारण अलौकिक तत्वों, जटिल रिश्तों और मनमोहक अभिनय का अनूठा मिश्रण है। फिल्म पुनर्जन्म, अमर प्रेम और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं जैसे विषयों को कुशलतापूर्वक एक साथ पिरोती है, जिससे एक ऐसी सम्मोहक कहानी का निर्माण होता है जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है।

चित्रसेन के राजकुमारी नीलकमल के प्रति अमर प्रेम पर केंद्रित अलौकिक कहानी में एक रहस्यमयी रंग भर देता है, जिससे यह अपने समय की अन्य रोमांटिक फिल्मों से अलग पहचान बनाती है। वहीदा रहमान द्वारा सीता के किरदार में निभाई गई भावनात्मक गहराई, राजकुमार द्वारा चित्रसेन के रूप में किया गया दमदार अभिनय और सहायक कलाकारों, विशेष रूप से शशिकला और महमूद के शानदार प्रदर्शन ने फिल्म की अपील को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया।

इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ इस फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट और दोस्त रिया प्रकाश को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं। कुछ ही देर में अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं यादविंदर सिंह। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां दे हित विच सरकार दी 12 सालां दी विकास यात्रा उत्ते चानणा पाया। उन्हां कहा गरीबां ते वांझे वर्गां दी भलाई देश विच हो रहीआं तब्दीलीआं दे केंद्र च। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला चंडीगढ़ विच राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करनगे। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून नूं होण वाली नीट यूजी मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जनतक कर दित्ती है। देश दा भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होण दा जशन मना रहा है। ते भारत पलके तो इंदौर च ब्रिक्स खेतीबाड़ी कार्य समूह ते ब्रिक्स खेतीबाड़ी मंत्रियां दी मुख मीटिंगां दी मेजबानी करेगा। हुण खबरां विस्थार दे नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां दे हित विच सरकार दी 12 सालां दी विकास यात्रा उत्ते चानणा पाया है। श्री मोदी ने अज एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि इस समय दौरान देश ने बहुत सारियां तब्दीलियां देखियां अते गरीबां ते वांझे वर्गां दी भलाई इन्हां तब्दीलियां दे केंद्र च रही है। उन्हां कहा कि अंतोदय हमेशा सरकार लई प्रेरणा स्रोत रहा है अते यकीनी बनाउण दी कोशिश रही है कि विकास दे लाभ दहाकियां तों पिछे रह चुके लोकां तक पहुंच सकन। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, सिद्धा लाभ तबादला, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन अते आयुष्मान भारत वर्गी हर पहलकदमी का उद्देश लोगों लिए माण अते मौके नूं यकीनी बनाउणा है। तकनालोजी ने गरीबां दे जीवन पद्धर नूं सुधारन च अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिद्ध

0: फीसदी आबादी तक पहुंच रखते ने अते इस दीयां 23 भाषावां ते 146 उप बोलियां च प्रसारण करते ने। आकाशवाणी का एक्सटरनल सर्विसिज डिवीजन 100 तों वध देशां च प्रसारण करता है अते भारत की आवाज़ नूं विश्व पद्धर ते पेश करता है अते इस विशाल देश दे हर निवासी नूं वख-वख खेतरां च 24 घंटे 7 दिन सारियां प्रमुख भाषावां ते उप भाषावां च खबरां ते विचार प्रदान करता है। इस दौरान आकाशवाणी जलंधर वल्लों अज KL सहगल आडिटोरियम विखे एक शास्त्री संगीत समारोह एक शाम शास्त्री संगीत के नाम करवाया जा रहा है। भारत आकाशवाणी के प्रसारण के 90 साल पूरे होने समर्पित यह संगीत समारोह शाम 6:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी के प्रोग्राम मुखी परमजीत सिंह ने दसिया कि शास्त्री संगीत के वख-वख रूपों च गायन के नाल नाल साजा की जुगलबंदी भी पेश की जाएगी। भारत मध्य प्रदेश के इंदौर च अज तो आउंदी 13 जून तक होने जा रही ब्रिक्स खेतीबाड़ी कार्य समूहों और ब्रिक्स खेतीबाड़ी मंत्रियों की अहम मीटिंगों की मेजबानी करेगा। अज भोपाल च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करदिआं खेतीबाड़ी मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ब्रिक्स दीआं इह मीटिंगां इस साल भारत की प्रधानगी हेठ कीतीआं जाणगीआं। उन्हां कहा कि ब्रिक्स देशां कोल दुनिया की लगभग 42% खेती योग जमीन है अते इह देश कौमांतरी खुराक उत्पादन का तकरीबन 45% हिस्सा भी पैदा करदे ने। ईरान च भारतीय दूतघर ने भारतीय नागरिकां नूं खित्ते विच हाल ही च होए घटना चक्कर दे मद्देनज़र ईरान दी यात्रा तों बचण दी सलाह दित्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच दूतघर ने इस समय ईरान च मौजूद भारतीय नागरिकां नूं उपलब्ध आवाजाई दे साधनां राहीं देश छड्डण दी भी सलाह दित्ती है। खास खबरां एक बार फिर सुन लो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबां दे हित विच सरकार दी 12 सालां दी विकास यात्रा ते चानना पाया। उन्हां कहा गरीबां ते वांझे वर्गां दी भलाई देश च हो रहीआं तब्दीलियां दे केंद्र च। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला अज चंडीगढ़ च राष्ट्रमंडल संसदी संघ इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस दा उद्घाटन करनगे। राष्ट्रीय प्रीख्या एजेंसी ने 21 जून नूं होण वाली नीट UG मुड़ प्रीख्या लई शहरां दी जानकारी जारी कर दित्ती है। देश दा भरोसेमंद लोक प्रसारक आकाशवाणी अज अपने 90 साल पूरे होण दे जशन मना रहा है। इहदे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा इह बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रदेशिक खबरां दा बुलेटिन शामी 6:20 ते होएगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदय से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। मगरीब बंगाल सरकार आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिसाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। और आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए बहबूद के सरकार के 12 साल के सफर को उजागर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मुल्क में कई बड़ी तब्दीलियां आई हैं और इन तब्दीलियों में गरीब कल्याण और महरूम तबकों को बुनियादी मकाम हासिल है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार ने हमेशा अंत्योदय से तरगीब हासिल की है और हमेशा इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की गई है कि तरक्की के फायदे उन लोगों तक भी पहुंचें जो कई दहाइयों से पीछे रह गए थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि लोगों की अज़मत वक़ार और मौक़ों को यकीनी बनाने के मकसद से ही जन धन अकाउंट्स, फ़ायदों की बराह रास्त मुंतकली, स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसे इकदाम किए गए। जनाब मोदी ने कहा कि गरीबों के बेहतर मियार ज़िंदगी को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी ने अहम रोल अदा किया है। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पूरे मुल्क में पिछले 12 साल के दौरान गरीबों की बहबूद, करोड़ों महरूम गरीब कुनबों की जिंदगी में अजमत, वक़ार, सलामती और खुद एतमादी का एक नया बाब साबित हुआ है। जनाब चौहान ने इस बात को उजागर किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे इकदाम से करोड़ों कुनबों को दुश्वार हालात में कुव्वत और ताकत मिली है। मगरी बंगाल सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है, जो रियासत में हिफ्जान सेहत के दायरे को वसत देने की समत एक नुमाया कदम है। मरकजी वजीर सेहत JP नड्डा और मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल सरकार आज नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत करने वाले हैं। साबिका तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को रियासत में नाफिज नहीं किया गया था। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में एक अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफिदीन को फी कुनबा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे के इलाज की सहूलत फराहम करती है। मगरबी बंगाल मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों समेत इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। स्कीम के तहत 36,000 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट अस्पताल पैनल में शामिल हैं। नीज अब तक 44 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके आगाज़ के बाद से अब तक ये स्कीम भारत के हिफ्जान सेहत के शोबे में कायापलट, इलाज के अखराजात में नुमाया कमी लाने और सरकारी और निजी अस्पतालों के एक वसी नेटवर्क के जरिए मियारी इलाज तक रसाई को बेहतर बनाकर भारत के सेहत के शोबे में तब्दीली की बुनियाद बनकर उभरी है। आकाशवाणी से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: मगरी बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के सरकर्ता लीडर जहांगीर खान को आज सुबह सवेरे नेपाल सरहद के नजदीक गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि वो सरहद पार फरार होने की कोशिश कर रहे थे। एसटीएफ के एहलकारों ने खुफिया इत्तला मिलने पर कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया। जहांगीर खान को मजीद पूछताछ के लिए कोलकाता लाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी से कबल गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यह कयास आरई की जा रही थी कि वो कहां हैं। इससे कबल कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच ने 5 FIR के मामलों में उनके लिए उबूरी तहफ्फुज की मुद्दत में तौसी करने से इनकार कर दिया था। रियासत में सरकार बदलने के बाद कई गांव वालों ने जहांगीर खान के खिलाफ जमीन हड़पने और जबरन रुपया वसूल करने के इल्जाम लगाए थे। राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट सुखेंदु शेखर रॉय ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया है। जनाब रॉय ने न सिर्फ ऐवान बाला से बल्कि तृणमूल कांग्रेस की इब्तदाई रुकनियत से भी सुबुकदोश हो गए हैं। एक प्रेस नोट में जनाब सुखेंदु शेखर रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर बदउनवानी, खवातीन के खिलाफ इंतहाई तशद्दुद और तालीम, सेहत, सनअत और रोजगार और अमन कानून के शोबे में नाकामी का इल्जाम लगाया। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर फिर से मिसाइल हमले किए हैं, जिससे मगरबी एशिया में बहरान बढ़ गया है और जंगबंदी भी खतरे में पड़ गई है। ईरान के सिपाह पासदारान इनकलाब ने इसराइल के अहम फौजी ठिकानों पर कई हमले किए। इनमें इसराइल के सबसे अहम 2 फजाइया के अड्डों को निशाना बनाया गया। मीडिया इत्तलात के मुताबिक 3 अलग अलग मकामात पर इसराइल के मिसाइल हमलों में ईरान के रडार मराकज को निशाना बनाए जाने के जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की है। उधर इसराइली फौज ने जनूब मगरबी ईरान में एक बड़े सनअती ठिकाने पर फजाई हमले करने की बात की तस्दीक की है। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। 1936 में आज के ही दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। यह तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इतलात और नशरियाती तारीख में खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। पेश एक रिपोर्ट।
3: मुल्क की आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो की खिदमत को तेजी के साथ वसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 551 स्टेशन काम कर रहे हैं, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी 23 जबानों और 146 इलाकाई बोलियों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का गैर मुल्की नशरियात का शोबा 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अजीम ख्यालात पर अमल करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुल्क के हर शहरी को, ख्वाह किसी भी खत्ते में रहता हो, 24 घंटे 7 दिन तमाम अहम जबानों और बोलियों में खबरें और नजरियात से हमकनार कर रहा है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शमीम इरफान।
1: अकलियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने आकाशवाणी के 90 साल मुकम्मल होने के शानदार सफर पर आकाशवाणी के तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक वीडियो पैगाम में जनाब रिजिजू ने कहा कि आज पूरा मुल्क आकाशवाणी के साथ मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के तवस्सुत से एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे को मुस्तहकम बनाया जा रहा है।
4: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है, 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है, आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामनाएं।
1: भारत मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में इस माह की 9 से 13

तारीख तक ब्रिक्स एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप और ब्रिक्स ज़रई वज़रा की अहम मीटिंगों की मेज़बानी करेगा। आज भोपाल में एक ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये मीटिंगें इस साल भारत की ब्रिक्स सदारत के तहत मुनाकिद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स एक ताकतवर आलमी प्लेटफॉर्म बन गया है। उन्होंने मजीद कहा कि ब्रिक्स मेंबर ममालिक के पास दुनिया की कुल ज़रई आराजी का 42% हिस्सा है, नीज आलमी गजाई अशिया का 45% हिस्सा यही ममालिक पैदा करते हैं। जनाब चौहान ने एतमाद का इजहार किया कि ये मीटिंग्स ब्रिक्स ज़रई तआवुन को नई सिमत अता करेंगी। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन को आज उस वक्त एक बड़ा कानूनी धचका लगा जब एक खसूसी पीएमएलए अदालत ने रांची के बड़गई इलाके में 8.86 एकड़ जमीन से वाबस्ता मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें बरी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने इससे पहले दोनों फरीकों के दलाइल की समाअत के बाद अपना हुक्म महफूज रखा था। फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि इस केस में आगे कार्रवाई करने के लिए मुनासिब जवाब और शवाहिद मौजूद हैं। अदालत ने कहा कि इस मरहले पर मुलजिम को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इस तरह अदालत ने हेमंत सोरेन की दरख्वास्त खारिज कर दी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने कहा है कि इस महीने की 2 तारीख से 7 तारीख तक 12वीं क्लास के इम्तिहान के पर्चों की फिर से जांच और तस्दीक के लिए जो वक्त दिया गया था उसमें 3,08,000 से ज्यादा इम्तिहान के पर्चों के लिए 1,60,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें दाखिल की। बोर्ड ने कहा है कि वह शिकायत के अजाले के अपने निज़ाम, हेल्पलाइन नंबर और दीगर मवासलाती वसीलों के जरिए तलबा की तमाम हकीकी शिकायतों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंत्योदया से तरगीब हासिल करते हुए गरीबों की बहबूद को पिछले 12 साल में सरकार की पॉलिसियों में बुनियादी मकाम हासिल रहा है। मगरी बंगाल सरकार आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया बहरान फिर से बढ़ गया है। और आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Ujan Sukhai, the News Services Division of AIR strives to provide news and views to every dweller in this vast country in varied terrains, 24/7, in all major languages and dialects, while adhering to highest professional ethics and standards in radio broadcasting. With Aman Yadav, Vishnu P.S., Akashwani News, Delhi.
1: In the Philippines, 16 people have been killed after a 7.8 magnitude offshore earthquake hit the Mindanao region of the archipelago this morning. More than 200 people have been injured due to the earthquake that also set off a tsunami. The local authorities are still verifying the extent of the fatalities and damage. In cricket, Afghanistan were 98 for 4 in their second innings on day 3 after being asked by hosts India to follow on in the one-off test at New Chandigarh. Earlier today, India's Manav Sutar snared a 6-wicket haul on a dream debut as Afghanistan were bowled out for a paltry 152. Earlier, India declared its first innings at a commanding 564 for 8. The India Meteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favourable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforce follow-on after bundling out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
2: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक

0: अभियान बन गया है।
1: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही। आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
2: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देश भर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
3: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है।

0: पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच आने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुँच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश के 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हाल

0: सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर दिन के 2:30 हो रहे हैं और ये वक्त है आपके पसंदीदा प्रोग्राम एक ही कलाकार का। तो स्वीकार कीजिए अपनी दोस्त राखी बैनर्जी का प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले हम आपको आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी प्रिय श्रोताओं को आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से ही लाखों दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। उनकी मुस्कान, उनके वो खुले लहराते बाल और वो कमाल का अंदाज और उनके स्क्रीन प्रेजेंस ने उन्हें एक अलग ही पहचान दी। अक्सर लोग कहते हैं कि वक्त के साथ चमक फीकी पड़ जाती है, लेकिन हमारी आज की जो कलाकार हैं उन पर ये बात बिल्कुल लागू नहीं होती है। 16 साल की उम्र में जो जादू इन्होंने शुरू किया था वो आज भी है, जी हाँ आज भी उतना ही बरकरार है, चाहे वो 70 के दशक का वो आइकॉनिक मॉडर्न लुक हो या फिर आज के दौर के संजीदा और दमदार किरदार। इन्होंने हर पीढ़ी के दिलों पर राज किया। तो श्रोताओं, क्या आप अंदाज़ा लगा पाएं कि आप हम किसकी बात कर रहे हैं? तो चलिए दोपहर के सुस्ती को थोड़ा दूर भगाते हैं और आपके साथ इस गपशप को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की उस गॉर्जियस दमदार और एवरग्रीन एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया जी की। आज बस आप आराम से बैठिए और सुनते रहिए एक ही कलाकार, क्योंकि आज डिंपल जी की ज़िंदगी के कुछ बेहद दिलचस्प और अनसुने पन्ने हम मिलकर पलटने वाले हैं।

श्रोताओं, आकाशवाणी दिल्ली के इंद्र प्रेस चैनल से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार, और जो आज की हमारी कलाकार हैं वो हैं एवरग्रीन डिंपल कपाड़िया, और मैं आपके साथ हूँ आपकी दोस्त राखी बैनर्जी। श्रोताओं, आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि बॉलीवुड की एवरग्रीन

एवरग्रीन और शानदार अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया जी का आज जन्मदिन है। आकाशवाणी परिवार की ओर से उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और अपनी बेहतरीन अदाकारी से यूं ही दर्शकों का मनोरंजन करती रहें। अब बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ दिलचस्प पन्नों की। 8 जून 1957 को मुंबई में जन्मी डिंपल कपाड़िया गुजराती बिजनेसमैन चुन्नी भाई कपाड़िया

0: कौवे को यूं बुद्धू बनाया, रोटी खोकर कौवा बड़ा ही पछताया।
1: बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना, क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
3: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
4: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
2: राजा रवि वर्मा।
4: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

0: मैं तो मंदिर की दीवार ही गंदी कर दी, कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए। अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ?
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक है।
3: अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा, तुमने दीवार खराब कर दी, और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
4: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
3: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
3: चल चल चल चल चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
4: ठीक है।
1: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
5: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोचू ने। देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
2: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
6: कहाँ है कोचू और मंगला है?
7: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था। आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोच्चू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं?
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: राजा राजवर्मा, हमारा संदेशा पाकर आप आए, अच्छा किया जो आप आए। आपका स्वागत है। आपके यहां सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हां, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलीमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है? इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। यह हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
0: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे, तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग।
7: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिश।

उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में मोहम्मद अली कमाल का पुरखलूस आदाब। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने के मौके पर आइए सुनते हैं ये फीचर रेडियो के बेमिसाल 90 साल।

0: तो याद के बेनिशान जजीरों से हमारे ज़हन और दिल की अध खुली खिड़कियों तक जो आवाज आ रही है वो आवाज कुछ कुछ सवालिया अंदाज की है।
1: यानी कि पिछले 90 वर्षों से हमारे और आपके पसंदीदा रेडियो ने हमारे आवाम के लिए क्या क्या किया है, मुल्क के लिए, समाज के लिए क्या क्या किया है, हमारे लिए, आपके लिए क्या क्या किया है।
0: जी हाँ, इन सारे सवालों का अगर कुछ शायराना सा जवाब ढूंढा जाए तो यही कहा जाएगा कि रेडियो वो है जिसके होने पे न होने का गुमा होता है। ऐसा दुनिया में भला और कहां होता है, जो करें बात तो हर बात से 100 बात जुड़े, जैसे बरसात की रिमझिम में समा होता है।
2: तो बरसती यादों की रिमझिम के इस मौसम में, यानी 90 साल पूरे होने के इस मौके पर, आज अगर साहिल लुधियानवी हमारे साथ होते
0: जी,
2: और हम उनसे दरख्वास्त करते कि हमारे मुल्क में जब रेडियो की शुरुआत हुई तो क्यों और कैसे हिंदुस्तान का माहौल बदल गया
0: जी,
2: शहरों का, देहातों का, घर का और समाज का, और क्या असर हुआ दिलों पर, दिमागों पर, लेखकों पर और शायरों पर।
0: जी हाँ, तो मुझे लगता है कि आपके जवाब में साहिल लुधियानवी कुछ यूं कहते, यूं अचानक वो मीठी आवाज कहीं से आई, जैसे पर्वत का जिगर चीर के झरना फूटे, या जमीनों की मोहब्बत में तड़प कर नागाह आसमानों से कोई शोख सितारा टूटे। यानी 20वीं सदी के उस शुरुआती दौर की उदास बेरंगी में रेडियो किसी जादू की तरह चमक उठा।

0: ऐसा घुल गया दल ख्वाबे तन्हाई में, रंग सा फैल गया दिल के सियाह खाने में। देर तक यूं तेरी मस्ताना सदाएं आई, जिस तरह फूल चटकने लगे वीराने में।
1: तो इस कमोबेश एक सदी के अरसे में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ कैसे हुआ, तो उन सब लाखों आवाजों की तफसील को किसी दरिया को कूजे में बंद करने जैसा होता है।
0: हाँ, ये तो चैलेंज है
1: जी,
0: लेकिन करना तो पड़ेगा किसी न किसी तरीके से।
2: एक तरीका है मेरे पास।
0: जी, वो क्या है?
2: देखिए, ये मेरे हाथ में क्या है।
0: ये कुछ पुराने, बल्कि मुझे लगता है बहुत पुराने लिफाफे हैं ये।
2: ठीक कहा, ये हमारे सुनने वालों के भेजे हुए खत हैं जो हमें रेडियो के आर्काइव्स में मिले। और ये देखिए, ये डाक टिकट अंग्रेजों के जमाने का है, यानी एक खत आजादी से पहले का है और बाकी ये खत आजादी के बाद के हैं।
0: मेरा ख्याल है कि शायद इन पुराने खतों से रेडियो के 90 बरसों को देखना, दिखाना, समझना, समझाना, बल्कि बयान करना किसी हद तक शायद मुमकिन होगा।
2: तो लीजिए, ये रहा पहला खत अलमास भाई पालनवाला का।
0: अलमास भाई पालनवाला, क्या?
2: और ये आया है बॉम्बे स्टेट के लोनावाला नाम के टाउन से।
0: तो चलिए थोड़ी देर को मान लेते हैं कि अलमास भाई पालनवाला जहां कहीं है, आसमानों में, जमीनों में, वो जहां कहीं है इस वक्त हमको जरूर सुन पा रहे हैं।
1: अच्छा, तो पढ़िए क्या लिखते हैं अलमास भाई पालनवाला।
2: हाँ, लिखा है हमा जोर हमा अशोबेद,
0: यानी
2: सलाम नमस्ते आदाब।
0: आदाब,
1: आदाब।
2: पहले आप सबको नौरोज की दिली मुबारकबाद।
0: जी, आपको भी।
2: मुझे रेडियो सुनने का शौक तब से है जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब ने अपने ब्रॉडकास्ट की इब्तिदा की थी।
0: अच्छा, यानी ये समझिए ये 1920-22-26 की बातें कर रहे हैं।
2: यही कोई। और ज्ञाचंद मोटवानी और उनके करीबी दोस्त नादिर शाह बेराम जी ने जब कोलाबा में पहले रेडियो क्लब के लिए मेंबरशिप का काम शुरू किया तो मेरे अंकल ने काफी मोटी रकम देकर एक रेडियो सेट खरीदा और छत पर एरियल लगाने का काम मुझे सौंपा।
3: वाह, वाह।
2: और मैं जब एरियल लगाकर नीचे उतरा तब तक रेडियो ट्यून हो चुका था।
0: अरे वाह।
2: और उसमें दो लोगों की बात करने की आवाज आ रही थी। फिर क्या था, फिर गाना शुरू हो गया और यहीं से मेरा रेडियो से इश्क शुरू हुआ।
0: वाह, वाह, वाह, वाह।
2: मेरे फादर सरकारी अफसर थे, इसलिए तबादले के बाद हमको दिल्ली आना पड़ा। सब संगी साथी बॉम्बे में छूट गए, इसलिए रेडियो से दोस्ती और गहरी हो गई। हम लोग उस जमाने में किंग्सवे कैंप में रहा करते। वहां से कुछ ही दूर राजपुर रोड पर रेडियो स्टेशन था।
0: ये बहुत पुरानी बात कर रहे हैं। देखिए, आज दिल्ली में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें याद होगा कि रेडियो पार्लियामेंट स्ट्रीट में आने से पहले राजपुर रोड पे वहां हुआ करता था।
2: अलमास भाई आगे लिखते हैं कि जितना बड़ा हमारा रेडियो सेट था उतनी ही बड़ी बड़ी बैटरियां लगाकर उसे चलाया जाता और रेडियो शुरू होने से पहले उसे 4-5 मिनट गर्म करना पड़ता।
0: जी, उसमें वो डायोड ट्रायोड होते थे, धीरे धीरे गुलाबी होते थे, फिर लाल होते थे, तब जाके आवाज आती थी।
2: और ये इंतजार के पल बड़े बेकरार हुआ करते।
0: जी,
2: बहरहाल आगे लिखते हैं कि फिर जब वो शुरू होता तो आसपास के तमाम लोग, औरतें, बच्चे, सब रेडियो के आसपास जमा हो जाया करते और कई लोग तो रेडियो सेट के पीछे जाकर ये देखा करते कि ये आवाजें कहां से आ रही है। कुंदनलाल सहगल ने नवाब वाजिद अली शाह की जो ठुमरी बाद में फिल्म में भी आपने सुनी होगी, वो हमने पहले पहल रेडियो में ही सुनी। और अगर आप वो ठुमरी मेरी फरमाइश पर सुनवा दें तो मेहरबानी होगी। तो आइए सुनते हैं कुंदनलाल सहगल की आवाज में ये यादगार ठुमरी।

0: और ये खाकी लिफाफा किसका है?
1: ये खाकी नहीं, ये सफेद था कभी।
0: अच्छा,
1: लेकिन देखिए 79 बरसों की गर्द ने इसको ऐसा कर दिया। और आप ये देखिए, उर्दू की बेहतरीन राइटिंग जो बिल्कुल कैलीग्राफी लगती
0: जी
1: है
0: जी।

0: लिखने वाले हैं योगेश्वर दयाल सक्सेना बाजार सीताराम से। सबसे पहले तो लिखते हैं कि आदाब।
1: आदाब।
0: बरसों से रेडियो सुनने का शौक है, मगर सन 1947 ने तो गोया रेडियो को हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा ही बना दिया। 15 अगस्त की रात हमने पहली बार आजादी की वो मुबारक साथ रेडियो पर सुनी।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
0: एक बुजुर्ग शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे, कहने लगे,
3: अब रेडियो हिस मास्टर्स वॉइस नहीं रहा, अब ये नए दौर की आवाज है।
0: वाह वाह, क्या बात कही उन्होंने। और फिर देखिए, बंटवारे की उथल पुथल शुरू हो गई। मुल्क के हालात की खबरें लोग बराबर रेडियो से सुनते थे। हमारे मोहल्ले के कई खानदान भी यहां से चले गए, और जाते वक्त एक साहब अपना पुराना रेडियो सेट हमसायों के पास अमानत रख गए कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो वापस आकर ले जाएंगे। 12 नवंबर को महात्मा गांधी की हमने तकरीर रेडियो पे सुनी। मालूम हुआ कि वो कुरुक्षेत्र के महाजरीन से, शरणार्थियों से बात कर रहे थे।
4: तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुछ भी हिंदुस्तान की सेवा की है, या तो कहो कि जगत की, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान और जगत कोई अनोखी चीज नहीं है। अगर हिंदुस्तान की सेवा करता हूँ तो उससे उसके मार्फत भी सारे जगत की सेवा करना, ये मेरा जीवन भर का मंत्र है।
0: आगे लिखते हैं कि अगर मुमकिन हो तो मेरी फरमाइश पर नूरजहां का कोई गाना सुनवा दें, जिससे हम बंटवारे से पहले का वो बेहतरीन दौर याद कर सकें

0: और ये अगला खत कहां से आया है?
1: ये खत है फरीदाबाद के करीब एक गांव से। इसको लिखने वाले हैं बंसीधर मेवाती। ये लिखते हैं, सलाम नमस्ते और सत श्री अकाल।
2: जो बोले सो निहाल।
0: सत श्री अकाल।
1: आगे लिखते हैं कि आपकी सेवा में ये खत लिख रहा हूँ। बचपन में जब पहली बार एक सेठ जी की हवेली में रेडियो देखा था तो वो सिर्फ पैसे वालों की चीज मालूम होता था। हम लोगों ने प्रधान जी से विनती भी की थी कि पूरा गांव अगर चंदा कर ले तो पैसे जोड़ जोड़ के खरीद ही लेंगे, लेकिन वो बोले,
3: ओ सुन भाई लल्ला, बंदूक की तरह इसका भी लाइसेंस चाहिए, पता है तुझे?
1: पर अब तो ऐसा लगता है कि रेडियो का डंका घरों, दुकानों, चौपालों और खेत खलियानों तक में बज रहा है।
0: क्या बात है।
1: अभी कुछ बरस पहले मैंने खुद का एक छोटा सा ट्रांजिस्टर खरीद लिया। अब बैटरी डालिए और जहां चाहे साथ ले जाइए, कभी खेत में, कभी कुएं के पंप के पास, तो कभी बैलों के साथ हल चलाते हुए भी मैं रेडियो चलाता रहता हूँ।
3: जी जी।
1: मैं तो साइकिल के हैंडल से भी इसे बांध देता हूँ और रेडियो सुनता रहता हूँ।
0: क्या बात है।
1: और अब तो रेडियो पर सिर्फ गीत संगीत, रागनी या खबरें ही नहीं आती, बल्कि खेती बाड़ी की भी ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं जिनका पहले हमारे बुजुर्गों ने कभी नाम तक नहीं सुना था। रेडियो पर अब नए बीजों, खादों और सिंचाई के तरीकों पर भी बात होती है। रेडियो पर जो मुंशी जी आते हैं वो बता रहे थे कि सरकार चाहती है कि ज्यादा पैदावार वाली फसलें उगाई जाएं ताकि मुल्क को बाहर से अनाज न मंगाना पड़े।
4: जी जी जी। ये देखिए, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं कि आजादी के बाद हमारे वहां ज्यादा फसल नहीं होती थी। उसके बाद जिसे हम हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, सब्ज इनकलाब कहते हैं, तो उस जमाने की ये बात कर रहे हैं। उस जमाने में स्टॉक कलेक्टर होते थे मुंशी जी, जो खेती बाड़ी के प्रोग्राम में आते थे और वो रेडियो के कंपेयर थे, और फिर वो जो साइंटिस्ट होते थे उनको लेके आते थे। और ये देखिए उस जमाने की बातें हैं। हमारे किसान भाई तो आज भी इसे,
1: हमारे गांव में इन दिनों एक नई बहस चल रही है। लोग कहते हैं कि रेडियो से हारमोनियम सुनाई नहीं देता है। क्या आपका हारमोनियम खराब हो गया है? हम तो अपने गांव में हारमोनियम बिना कुछ गा ही नहीं सकते। पता नहीं आप लोग कैसे गा लेते हैं।
4: देखिए, ये उस जमाने की बात कर रहे हैं जब केसकर साहब के ऑर्डर से, जो हमारे पहले इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, हारमोनियम पे पाबंदी लगा दी गई थी। और ये सोचा गया था कि हारमोनियम एक विदेशी साज है और इसकी हमको क्या जरूरत

0: उस पे जोर दिया जाता था।
1: बिल्कुल
0: तो इस
1: बिल्कुल
0: वजह से गांव के लोगों को लगता था कि जरूर इनका हारमोनियम खराब हो गया है। और देखिए कितनी अच्छी ऑफर है, वो कह रहे हैं कि अगर आपका खराब हो गया तो हमारा ले लीजिए। जी
2: आप आगे लिखते हैं कि लेकिन अच्छी बात यह है कि रेडियो अब शहर से ज्यादा गांव देहात का हो गया है। बापू की बात पर आपने अमल किया है, यानी भारत गांव में रहता है।
1: बिल्कुल सही।
2: तो अब रेडियो पहले से कहीं ज्यादा गांव के आम आदमी के बेहद करीब आ गया है।
1: ये भी सही है।
2: कभी मौसम का हाल, कभी मंडी के भाव, तो कभी गर्मी के दिनों में भैंसों की देखभाल पर मशवरे किए जाते हैं।
0: जी जी जी
2: सबको मालूम है कि आप लोग फिल्मी गाने पसंद नहीं करते, जबकि सारे गाने बुरे नहीं होते। इसलिए अगर मुमकिन हो तो मेरी फरमाइश पर वो वाला गाना ठुमरी समझकर या लोकगीत समझकर सुनवा दीजिए, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे।
0: अब लगता है कि देखिए इनको कुछ सुख तो देना ही पड़ेगा।
1: सही।
0: और देखिए ये उस जमाने की बातें कर रहे हैं जब केसकर साहब के आदेशों पर, उनके ऑर्डर्स पर रेडियो पर फिल्मी गाने बैन हुआ करते थे। और देखिए इनके खत में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लिखा हुआ है मशरकी पंजाब, यानी आप ये सोचिए कि फरीदाबाद जो है पंजाब हुआ करता था।
3: अच्छा।
0: जी बल्कि दिल्ली भी पंजाब के अंडर में उस जमाने में
3: अच्छा।
0: आता था आजादी से पहले। और ये जो कह रहे हैं कि गाना सुनवा दीजिए, तो चलिए भाई इनका गाना सुनवा देते हैं, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आए।

0: तो देखिए, सबको मालूम है कि ये जो गाने फिर धीरे धीरे कैसे वापस आए, इस पे आगे हम लोग बात करेंगे। सच तो यह है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बीच सिर्फ खेतों में ही नहीं बोए गए थे, बल्कि रेडियो की आवाजों के जरिए फिजा में भी बिखेरे गए थे। और इस इनकलाब में, यानी कि सब्ज इनकलाब में, हरित क्रांति में, रेडियो का शायद सबसे बड़ा किरदार था। और किसानों की जिंदगी में खुशहाली की जो बयार आई, उसकी शुरुआत ऐसे ही हमारे किसी स्टूडियो से हुई थी।
1: जी बिल्कुल।
0: और देखिए, इस वक्त जो मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं, ये खत ये आया है, कहाँ का है, राकेश कुमार वेद लिखते हैं, और ये लिख रहे हैं कि असल में मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूं, मगर तकसीम के बाद से अब दिल्ली में आबाद हूं। अरसे दराज से रेडियो सुनने का शौक है, पहले पहल तो खबरें और गाने ही सुनते थे, मगर अब यूं महसूस होता है कि रेडियो सिर्फ दिल बहलाने की चीज नहीं रहा, बल्कि जबान, अदब, मौसीकी और तहजीब का एक पूरा इदारा बन गया है। और हमारे घर में सब लोग पंजाबी बोलते हैं, सुबह से शाम तक माताजी, बेगम, बच्चे सब पंजाबी ही बोलते हैं। मैं मजाक में कहता हूं कि दिन भर अपने घर पेट भर के पंजाबी सुन लेता हूं, अब भाई जरा रेडियो पर थोड़ी सी उर्दू सुना दीजिए। और इसके बाद ये लिखते हैं, फिर मैं रेडियो से सीखकर खुद भी कुछ लिखने की कोशिश करता हूं। पुराने दौर के रेडियो के मौजू पर मेरी अधूरी नज्म का एक हिस्सा पेश है। लिखते हैं, फिजाओं में खनकते हैं उसी आवाज के साए, कभी जब माजी की गुमशुदा राहों से गुजरते हैं, लुभाते हैं याद की पुरवाई के कुछ नमनाक से झोंके, कभी यादों की एल्बम के अगर हम पन्ने पलटते
2: हैं। माजी के बयार बहादी है, क्या अशआर लिखे हैं, क्या मिसरे हैं, कि फजाओं में खनकते हैं उसी आवाज के साए, कभी जब माजी की गुमशुदा राहों से गुजरता हूँ, वाह क्या बात है, लुभाते हैं याद की परवाई के कुछ नमनाक से झोंके, कभी यादों की एल्बम के अगर हम पन्ने पलटते हैं। सुभान अल्लाह।
0: और आगे लिखते हैं कि जब भी फुर्सत मिलती है मैं सीधा उर्दू सर्विस लगा लेता हूँ, सहगल, सुरैया, नूर जहां, रेशमा, मेहदी हसन और कहां सुनने को मिलेंगे। और खास तौर से उर्दू मजलिस तो अब गोया अपने घर की महफिल मालूम होती है। शायरी, नई किताबों, मुशायरों और अहले कलम की गुफ्तगू सुनकर दिल खुश हो जाता है। ये जानकर भी खुशी होती है कि सरहद के उस पार भी उर्दू प्रोग्राम बड़ी दिलचस्पी से सुने जाते हैं, और जबान आखिर जबान होती है, वो सरहदों से कहां कैद हो सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और आखिर में लिख रहे हैं कि मैंने महसूस किया है कि अब भी रेडियो पर उर्दू के जौक और नफासत का ख्याल रखा जाता है। अच्छा है, नई नस्ल के लिए जबान की शायस्तगी अगर बाकी रहे

0: अदब से दिलचस्पी बाकी रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, और शायद उर्दू मजलिस इसी खिदमत को अंजाम दे रही है।
1: बिल्कुल।
0: और आखिर में लिखा है कि मुझे क्लासिकी मौसिकी सुनने का भी शौक है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक और संगीत सम्मेलन तो मैं बरसों से बाकायदगी से सुनता आ रहा हूँ, और जहाँ मुमकिन हो वहाँ खुद जाकर बनफसे नफीस भी सुनता हूँ। और कुछ दिन पहले नेशनल प्रोग्राम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का राग दरबारी कानड़ा सुनने का इत्तेफाक हुआ, खुदा गवाह है आज तक ऐसा लगता है जैसे उनकी ताने अब भी फिजा में गूंज रही हों। और इसी तरह नेशनल प्रोग्राम ऑफ प्लेस भी मैं बहुत शौक से सुनता हूँ। अच्छा रेडियो ड्रामा आदमी को सिर्फ कहानी नहीं सुनाता बल्कि पूरा मंजर आंखों के सामने ला खड़ा कर देता है।
1: सही कहा।
0: और कभी कभी तो यूं महसूस होता है जैसे मैं पुरानी दिल्ली, लाहौर या गुजरांवालों की गलियों में फिर से पहुंच गया हूं।
2: क्या बात है।
0: और आखिर में एक फरमाइश भी कबूल फरमाइए, अगर मुमकिन हो तो मेरी तरफ से बेगम अख्तर की वो गजल सुनवा दीजिए, दीवाना बनाना है तो दीवाना
2: बनाते।
0: और लिखते हैं कि उनकी आवाज सुनकर दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है, जैसे दुनिया फिर से एक अच्छी जगह बन गई हो। आपका नियाजमंद राकेश कुमार वेद, करोल बाग, दिल्ली, फरवरी 1964।

0: और मलिका गजल बेगम अख्तर की इस बहुत यादगार गजल के बाद अगला खत उठाते हैं। लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: जय हिंद।
3: जय हिंद।
0: मैं अहमद दीन कसाना वादी कश्मीर के उरी सेक्टर के एक छोटे से पहाड़ी गांव बातराल से आपकी खिदमत में ये खत लिख रहा हूँ।
1: वाह,
0: हरी भरी वादियों से ये खत आया है
1: जी।
0: फरमाते हैं कि हमारे पहाड़ी इलाके में सर्दियों की रातें बहुत लंबी होती हैं, बर्फ पड़ने लगे तो सड़कें बंद, जिंदगी की गहमा गहमी बंद, और कभी कभी तो कई दिन तक दुनिया से रابطہ कट जाता है।
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: और ऐसे वक्त में रेडियो ही हमारा सबसे बड़ा साथी होता है, सबसे बड़ा हमदम होता है।
1: जी बिल्कुल।
0: मेरे पापा मरहूम को उर्दू सर्विस सुनने का बड़ा शौक था। वो खास तौर पर पुराने गाने सुनते वक्त रेडियो की आवाज जरा ऊंची कर देते। नूरजहां, तलत महमूद, सहगल साहब और शमशाद बेगम की आवाज सुनते ही मुझे अपने वालिद मोहतरम की याद आ जाती है। इसलिए मेरे लिए सिर्फ गाने नहीं, एक मुकम्मल जमाना है।
1: वाह, क्या अच्छी बात कही।
0: आगे फरमाते हैं कि मुझे खेलों का भी बेहद शौक है, खास तौर पर क्रिकेट का। मगर सच पूछिए तो मैंने आज तक अपनी आंखों से कोई बड़ा क्रिकेट मैच नहीं देखा। हमारे यहां ना बड़ा स्टेडियम है ना कोई बड़ा मैदान, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की क्रिकेट कमेंट्री सुन सुनकर अब हाल ये है मेरा कि मैं गांव के बच्चों को LBW, गुगली, स्लिप फील्डिंग और कवर ड्राइव तक समझा सकता हूँ।
1: क्या बात है।
0: और जब कोई बड़ा मैच हो तो पूरा गांव रेडियो से चिमटा नजर आता है। कभी सिग्नल कमजोर पड़ जाए तो लोग रेडियो को खिड़की के पास, फिर छत पर, फिर दरख्त के नीचे ले जाकर आवाज साफ करने की कोशिश किया करते हैं।
1: जी जी जी जी।
0: तसव्वुर कीजिए उस दौर को, माजी के औराक को पलट कर देखें।
1: जी, बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि जो एंटीना होता है, पेड़ एंटीना का काम करता है, उसके नीचे ज्यादा अच्छी आवाज आती।
0: सही कहा आपने। आगे फरमाते हैं कि और जब कमेंटेटर जोर से कहता कि गेंद ये सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर, तो यूं महसूस होता है कि हम खुद मैदान में बैठे हों और गेंद हमारी तरफ ही आ रही है।
1: क्या बात है। जी जी जी।
0: आगे फरमाते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सबसे पहले क्रिकेट कमेंट्री कब और किसने शुरू की थी? और हाँ, एक फरमाइश भी है, अगर मुमकिन हो तो रेडियो पर कोई ऐसा गीत सुनवा दीजिए जिसमें रेडियो की बात हो।
1: अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी फरमाइश है।
0: बिल्कुल, कोशिश करेंगे पूरा करने की।
1: जी।
0: आगे बस वसलाम, आपका मुखलिस अहमद दीन कसाना, वातराल, उड़ी सेक्टर, कश्मीर।
1: तो मोहतरम अहमद दीन कसाना साहब, वालेकुम असलाम। उड़ी सेक्टर की बर्फानी वादियों से भेजा गया आपका मोहब्बत भरा खत हमको मिला। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि ऑल इंडिया रेडियो, खसूसन

0: जालंधर स्टेशन की क्रिकेट कमेंट्री आपके लिए महज तफरी नहीं बल्कि खेलों की दुनिया से राबते का एक वसीला भी है। आपने हिंदुस्तान में पहली क्रिकेट कमेंट्री के बारे में सवाल किया था, तो हमारी मालूमात के मुताबिक हिंदुस्तान में सबसे पहली मशहूर जानी मानी रेडियो क्रिकेट कमेंट्री सन 1934 में बंबई के एक घरेलू मैच के दौरान AFS बाबी तालियार खान ने की थी। उनका पूरा नाम था अर्देशर फरदून जी सोहराब जी तालियार खान, लंबा चौड़ा नाम, और उन्हीं को हिंदुस्तान का पहला बड़ा क्रिकेट कमेंटेटर माना जाता है। हालांकि इससे पहले 1932 में हिंदुस्तान की पहली टेस्ट टीम इंग्लैंड गई थी, मगर उस जमाने में रेडियो कमेंट्री नहीं हुआ करती थी। बाद में ऑल इंडिया रेडियो के कयाम यानी के 1936 के बाद खेलों की नशरियात ज्यादा मुनज्जम तौर पर शुरू हुई। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि लोग सिर्फ रेडियो सुनकर पूरा मैच अपनी आंखों से देख लेते थे, महसूस कर लेते थे। और बाद के बरसों में बालजे पंडित जैसे मशहूर कमेंटेटर्स ने इस रवायत को और भी मकबूल बनाया। वो सिर्फ स्कोर नहीं बताते थे बल्कि मैदान की फिजा, खिलाड़ियों के अंदाज, स्टैटिस्टिक्स, दिलचस्प वाकयात और क्रिकेट की बारीकियां भी सामईन तक पहुंचाते थे। तो देखिए खसाना साहब, आप जैसे सामईन ही रेडियो की असल ताकत हैं, जो आवाजों के जरिए दूर दराज की चीजों को भी महसूस कर लेते हैं। तो चलिए इनकी फरमाइश पर सुना देते हैं सुधा मल्होत्रा का गाया एक मशहूर गाना, जो अब ज्यादा मशहूर नहीं कहा जाएगा क्योंकि लोग उसे भूल चुके हैं। तो एक भूला बिसरा गाना जो शायद इनको रेडियो से मुताल्लिक ही लगेगा।
1: बिल्कुल, आइए सुन लेते हैं।

0: सलाम नमस्ते जय हिंद और सत श्री अकाल
1: जी। सत श्री अकाल।
2: नमस्ते अकाल। जय हिंद।
0: मेरा नाम शीला चतुर्वेदी है। मैं निजाम कॉलेज में हिस्ट्री की प्रोफेसर थी और अब हैदराबाद में रहती हूँ। हमारा खानदान ग्वालियर के फ्रीडम फाइटर का खानदान था और एक दिलचस्प इत्तेफाक ये भी है कि मेरी उम्र भी तकरीबन उतनी ही है जितनी रेडियो की है।
1: अरे वाह
0: जी। ये लिखती हैं, इसलिए कभी कभी यूं महसूस होता है जैसे मेरी अपनी जिंदगी भी रेडियो के साथ साथ सफर कर रही हो।
1: यानी इनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये भी 90 साल की हो चुकी हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: माशाल्लाह माशाल्लाह।
0: ये कहती हैं, बचपन में वालिद साहब के साथ बड़े से वॉल्व वाले रेडियो के सामने बैठना याद है। वो INA रेडियो से सुभाष चंद्र बोस के ब्रॉडकास्ट सुना करते थे।
1: वाह वाह
0: जी।
1: क्या बात है।
0: सहगल, नूरजहां, तलत, लता, रफी, बेगम अख्तर, बड़े गुलाम अली खां, भीमसेन जोशी, MS सुबुलक्ष्मी और ना जाने कितनी आवाजों को अपने ही घर का फर्द बनते देखा है।
1: सच है, सच बात है।
2: एक दौर देखा है
0: जी,
2: लगभग 90 बरस का।
1: 90 बरस
0: जी,
1: का।
0: जी, जी, जी, जी, जी, जी। वो कहती है कि फिर वक्त बदला, रेडियो शहरों से निकलकर गांव तक पहुंचा। कहीं किसान मौसम सुनने लगे तो कहीं मजदूर खबरें, कहीं औरतें घरेलू प्रोग्राम, कहीं बच्चे बाल मंदिर, कहीं नौजवान रोजगार, साइंस और नई तालीम की बातें करने लगे।
1: जी सच है,
2: तमाम मौजूदात पर बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आगे वो लिखती हैं, हवा महल के ड्रामे आज भी कानों में गूंजते हैं। कितने ही किरदार सिर्फ आवाज के सहारे हमारे अपने मालूम होने लगते थे। फिर FM गोल्ड आया तो यूं लगा जैसे पुराने जमाने की खुशबू नए अंदाज में वापस आ गई हो। जी, पुराने नगमे, नर्म गुफ्तगु, खबरों और मौसीकी का वो इम्तिजाज आज भी दिलों को अजीब सुकून देता है। अब तो जमाना और भी बदल गया है।
2: नया जमाना आ गया।
0: जी जी, मोबाइल फोन खुद ही चलता फिरता रेडियो बन चुका है। लोग ट्रेन में, सड़क पर, सुबह की सैर में कानों में छोटे से हेडफोन लगाकर प्रोग्राम सुनते रहते हैं। और अब तो पॉडकास्टिंग के नाम पर फिर वही पुरानी आवाजों की दुनिया एक नए लिबास में वापस आती महसूस हो रही है। ये कहती हैं कि क्रिकेट की कमेंट्री हो, नेशनल ब्रॉडकास्ट, जयमाला, उर्दू मजलिस, संगीत सम्मेलन, मन की बात या रात गए बजने वाली कोई उदास गजल, रेडियो ने हर दौर में हम लोगों का साथ निभाया है।
1: सच है, बिल्कुल, ये बात
2: बिल्कुल सही कहा।
0: आज जब रेडियो अपने बेमिसाल 90 साल मुकम्मल कर रहा है तो यूं लगता है जैसे ये सिर्फ एक इदारे की सालगिरह नहीं है बल्कि हमारी इज्तिमाई याददाश्त का जश्न है। वो लिखती हैं, आखिर में बस इतना कहना चाहूंगी

वक्त बदलता रहा, जमाने बदलते रहे, आवाजें बदलती रही, मगर रेडियो की वो पहली मानूस मोहब्बत आज भी वैसी ही महसूस होती है, जैसे सर्द रात में दूर कहीं किसी अपने ने आवाज दी हो।

0: रेडियो के बेमिसाल 90 साल। अभी आप प्रोफेसर दानिश इकबाल का तहरीर करदा ये फीचर सुन रहे थे। सदाकार थे अथर सईद, मोहम्मद शमीम खान और मनाल सैयद। प्रोडक्शन मुकुल चावला की और हिदायतकार थे प्रोफेसर दानिश इकबाल। तरतीबो पेशकश थी इंतज़ार अली की। इसी के साथ आज का उर्दू मजलिस प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। खुदा हाफिज।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। शाम के 4 बजने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
3: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
4: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी,
5: देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
6: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
7: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि गरीबों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास, जनधन, मुद्रा और प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसे कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत करोड़ों नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा, स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ा है। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने सांसद पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। श्री रॉय ने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, महिलाओं के प्रति हिंसा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, रोजगार और कानून व्यवस्था में विफलता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नव निर्वाचित सरकार ने चुनावी वायदों के अनुसार राज्य में विकास और पुनर्निर्माण के कार्यक्रम लागू करने शुरू कर दिए हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश, भाष्यम रामकृष्ण और चिंतकायला विजय ने आज अमरावती में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। तीनों उम्मीदवारों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं की उपस्थिति में चुनाव अधिकारी आर वनीता रानी को अपने नामांकन पत्र सौंपे। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित हुआ है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल और प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उसने कहा

ऑपरेशन के दौरान इसराइल के वायुसेना केंद्रों नेवातिम और तेल नोफ पर हमले किए गए। मीडिया की खबरों के अनुसार इसराइल के हमलों के जवाब में ये कार्रवाई की गई है। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच में पारी और 300 रन से हरा दिया है। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। जवाब में अफगानिस्तान की टीम पहली पारी में 152 रन पर सिमट गई। इसके बाद फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में अफगानिस्तान 112 रन ही बना सकी और भारत ने मैच जीत लिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू कर रहे मानव सुथार को मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Mamata Banerjee, Senior National Conference leader Umar Abdullah and NCP-SP leader Supriya Sule. While some opposition parties, include Aam Aadmi Party and DMK, distanced themselves from the meeting. Later, addressing the media, Congress President Mallikarjun Kharge shared that 25 political parties attended the meeting. He noted that various issues were discussed and everyone shared their views during the meeting. The Delhi High Court today issued notices to the Centre and the Central Board of Secondary Education CBSE over a PIL challenging the newly introduced on-screen marking system for Class 12 board exam answer sheets. The court has listed the matter for hearing on 12th of June. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. The BSE Sensex shed 719 points to close at 73,524. India registered their biggest ever victory in Test cricket, crushing Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off in New Chandigarh today. After declaring their first innings at 564 for 8, India bowled Afghanistan out for 152 before lunch on day 3 and enforced the follow-on. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर. इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 4:10 हुए हैं. आइए आपको जानकारी देते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में. लापता युवती का पूरा नाम नेहा कुमारी है. इन्हें अंतिम बार इनके घर पर देखा गया. इनकी आयु 15 वर्ष है. पतला शरीर है एवं कद 5 फीट 2 इंच है. नेहा कुमारी के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SHO पुलिस स्टेशन फर्स्ट बाजार शहादरा दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं. लापता महिला का पूरा नाम गीता है. ये पिंटू कुमार की पत्नी है. इन्हें अंतिम बार ग्राम पारोही दिनांक 17 मार्च 2026 को देखा गया. गीता की आयु 30 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य है. कद 5 फीट है एवं रंग गेहुआ है. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक कोतवाली जेवर जनपद गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. खोई हुई महिला का पूरा नाम सोनाली पाल है. इन्हें अंतिम बार 1 अप्रैल 2026 को ग्राम सलारपुर नोएडा में देखा गया. सोनाली की आयु 26 वर्ष है. शरीर की बनावट सामान्य है एवं कद 5 फीट है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. गुमशुदा युवती का पूरा नाम काजल है. ये राजू की पुत्री हैं. ग्राम गढ़ी शहादरा सेक्टर 143 नोएडा. काजल को अंतिम बार 27 अप्रैल 2026 को गढ़ी शहादरा सेक्टर 142 में देखा गया. काजल की आयु 18 वर्ष है. कद 5 फीट 2 इंच है. इन्होंने अंतिम बार काले रंग की टी शर्ट, स्लेटी रंग का लोअर एवं पैरों में जूते पहने थे. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 142 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं. खोए हुए युवक का पूरा नाम श्यामवीर है. ये पुतुलाल के पुत्र हैं. निवासी सुनार वाली गली कस्बा व थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर. श्यामवीर की आयु 21 वर्ष है. शरीर की बनावट औसत है एवं कद 5 फीट है. ये अपने घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं. इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं.

लापता युवती का पूरा नाम पूजा है, ये दीपक की पत्नी है, निवासी ग्राम धुमानीपुर थाना बादलपुर। इनकी आयु 19 वर्ष है, मजबूत शरीर है एवं कद 5 फीट है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना बादलपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से संपर्क कर सकते हैं। खोए हुए पुरुष का पूरा नाम सुरेश है, इनकी आयु 29 वर्ष है, कद 3 फीट 5 इंच है, काले बाल हैं, चेहरा गोल है एवं शरीर की बनावट औसत है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप थानाध्यक्ष ब्रह्मपुरा जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। और अंत में, लापता युवक का पूरा नाम समीर है, इनकी आयु 17 वर्ष है, इनके पिता का नाम उमर दराज है, काले बाल हैं, कद 5 फीट 3 इंच है। इनके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप प्रभारी निरीक्षक थाना रेलवे रोड जनपद मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4:15 हुए हैं, आइए सुनते हैं युवा वर्ग को संबोधित कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार साथियों, युववाणी के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शैलजा पुरोहित और मेरे साथ हैं मेरे को होस्ट अभिषेक।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक गौड़। युववाणी के इस ऐतिहासिक और बिल्कुल नए सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 90 साल की आकाशवाणी के इस सफर का हिस्सा बनना हमारे लिए किसी इमोशन से कम नहीं।
0: बिल्कुल दोस्तों, एक बार फिर से अब हर मंडे टू फ्राइडे आपसे मुलाकात होगी युववाणी पर इसी समय, और बात की जाएगी बदलते भारत की डायनामिक युवा पीढ़ी यानी आपकी। अभिषेक, आप जानते हैं आज है माइंडफुल मंडे और इसी के साथ चलने वाला है हेल्थ, एजुकेशन, इंफोटेनमेंट एंड फिटनेस से जुड़ी बातों के साथ ही एवरग्रीन गानों का नॉनस्टॉप कारवां।
1: तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले सेगमेंट आज की बात से।
0: दोस्तों, आज हम सिर्फ युववाणी की नई शुरुआत ही नहीं कर रहे बल्कि आकाशवाणी की 90 वर्षों की शानदार यात्रा का जश्न भी मना रहे हैं। साल 1936 में आज ही के दिन ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इस खूबसूरत सफर की शुरुआत हुई थी।
1: और सोचिए, तब का ये बड़ा सा टीवी बॉक्स जैसे दिखने वाला हमारा भारी भरकम रेडियो आज हमारी जेब में स्मार्टफोन के जरिए पॉकेट साइज एफएम बनकर घूम रहा है। वक्त बदला लेकिन यादें वही हैं।
0: यादों से याद आया अभिषेक, एक जमाना था जब आकाशवाणी की मीठी धुन से सुबह की शुरुआत हुआ करती थी। क्या आप जानते हैं उस सिग्नेचर ट्यून को किसने बनाया था?
1: बिल्कुल, वो जादुई धुन बनाने वाले थे हमारे जैसे ही एक युवा वॉल्टर कॉफमैन, एक ज्यूइश रेफ्यूजी जिन्होंने बॉम्बे में शरण ली थी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की राग शिवरंजनी पर आधारित यह धुन आज भी यादों के पुराने सफर पर ले चलती है। चलिए इसी नॉस्टैल्जिया के साथ सुनते हैं आज का हमारा पहला गाना, जिसके बोल हैं तुम पुकार लो तुम्हारा इंतजार है, मूवी खामोशी से, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने।

0: दोस्तों, गाने के इस मिठास के साथ ही मुझे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रसिद्ध पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। दोस्तों, युवावस्था भी तो ऐसा ही एक फेज है।
1: बिल्कुल सही कहा शैलजा, जहाँ हर दिन कल से बेहतर कुछ करने की चुनौती है। मुझे लगता है युवावस्था के सफर पर हरिवंश राय बच्चन जी की वो पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर ध्यान से देखें तो हमारा 9 दशकों का प्यारा साथी रेडियो भी तो हमें कभी हार ना मानना ही सिखाता है।
0: सच कहा आपने दोस्त, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ऐतिहासिक ट्विस्ट विथ डेस्टिनी भाषण हो, जिसके हिंदी अनुवाद के अंश रेडियो के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचे,
1: या 1971 का युद्ध, पोखरण परीक्षण, या फिर क्रिकेट वर्ल्ड कप की रोमांचक कमेंट्री, रेडियो ने महाभारत के संजय की तरह हर घटना को जन जन तक पहुंचाया है।
0: और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के साथ ही आकाशवाणी से देश का बच्चा बच्चा परिचित है। और दोस्तों, इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले गाने का, जिसके बोल हैं आशाएं, फिल्म इकबाल से।

0: क्या बात है, कितना प्यारा गीत था। वैसे शैलजा, गानों और रेडियो की बीट्स तो कमाल की हैं, लेकिन आज की भागदौड़ वाली लाइफ में हमारी बॉडी की बीट्स जरूर बिगड़ी हुई हैं। फास्ट फूड कल्चर और कम होती फिजिकल एक्टिविटी हमारी सेहत पर बहुत भारी पड़ रही है।
1: यू आर राइट अभिषेक, आज हमारे सामने एक तरफ तो कुपोषण की समस्या है और दूसरी तरफ मोटापा भी तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए तो प्रधानमंत्री जी मन की बात में बार बार फिटनेस, योग और ड्रग फ्री लाइफस्टाइल को अपनाने की अपील करते हैं। आखिर साउंड बॉडी और साउंड माइंड ही तो विकसित भारत के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं।
0: सही बात है, फिटनेस कोई शॉर्ट टर्म ट्रेंड नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, लाइफ जीने का तरीका है। तो क्यों ना इस माइंडफुल मंडे हम सब एक छोटा सा संकल्प ले, थोड़ी एक्स्ट्रा वॉक, थोड़ा कम शुगर और नशे से पूरी दूरी।
1: क्या बात है अभिषेक। तो दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब आप तैयार हो जाइए इस प्यारे से गाने की बीट्स पर झूमने के लिए तैयार, जिसके बोल हैं इलाही मेरा जी, फ्रॉम फिल्म ये जवानी है दीवानी।

0: दोस्तों, एक समय था जब लोग बेसब्री से रेडियो पर आने वाले प्रोग्राम का इंतजार किया करते थे। हाँ, ये उस दौर की बात है जब स्मार्टफोन तो छोड़िए, टीवी भी नहीं हुआ करता था। अगर आप 60, 70 या 80 के दशकों के मूवीज के शौकीन हैं तो आपने देखा होगा कि खेतों में काम करते किसान या सरहद पर तैनात फौजी भाई, चौपाले पर बैठी लोग या घरों में काम करती महिलाएं, इनके लिए रेडियो ही एकमात्र एंटरटेनमेंट का जरिया हुआ करता था।
1: सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं अभिषेक, आकाशवाणी अपने 9 दशकों की यात्रा में भारतीय संस्कृति और संगीत विरासत का प्रमुख केंद्र भी रही है। इसने कभी विश्व प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर जी की सितार के सुर बिखेरे, तो कभी सुप्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खां की धुनों से स्मृतियों में अमिट छाप छोड़ी। विविध भारती ने उस्ताद बड़े गुलाम खां, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी, पंडित भीमसेन जोशी और मोहम्मद रफी जैसे जाने कितने ही दिग्गजों की आवाज से जनमानस को रूबरू कराया।
0: दोस्तों, रेडियो एक दोस्त की तरह अच्छे बुरे समय में एक पूरी पीढ़ी का साथी रहा है, जिसके किस्से हमने अपनी दादी नानी की बातों में खूब सुने और जिए हैं। तो रुकिए, इसी के साथ अगली मूवी का गाना हम पेश करते हैं आपके समक्ष, मांझा, जो जिसे गाया है अमित त्रिवेदी और मोहन कनन ने।

0: इस प्यारे से गाने के बाद मशहूर शायर मजरूह सुल्तानपुरी फरमाते हैं, मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। हमारा अगला सेगमेंट है मन से माइक्रोफोन तक की ओर। ये स्टोरी है एक ऐसे यूथ आइकॉन की जिन्होंने साबित कर दिया कि जब इरादे नेक हों तो राहें भी आपकी हमसफर बन जाती हैं।
1: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं प्रियांशु खेमरिया की, जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव टुमड़ा से आते हैं और आज अपने फाउंडेशन के जरिए हजारों चेहरों पर मुस्कान ला रहे हैं।
0: अपने गांव के पहले NIT ग्रेजुएट प्रियांशु ने बचपन में ही समझ लिया था कि असली गैप एबिलिटी में नहीं बल्कि रिसोर्सेज की कमी में है। उन्होंने ठान लिया कि जो दिक्कतें उन्होंने झेली वो उनके जैसे ही रूरल एरिया से आने वाले बच्चों को नहीं झेलने देंगे। सभी के लिए समान अवसर को अपनी लाइफ का मोटो बनाते हुए 2019 में अपने ही गांव टुमड़ा में पहली आश्रय लाइब्रेरी की शुरुआत की। उनके प्रयासों को पंख तब लग गए जब NIT के सुरतकल में इंडिया से कोने कोने से आने वाले और भी साथी इनसे जुड़ गए।
1: साल 2019 में एक छोटी सी लाइब्रेरी से शुरू हुआ इनका ये सफर आज 7 सालों में 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की टीम के साथ दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में अलग अलग जिलों और ग्राम पंचायतों में सोशल कॉजेस के लिए काम कर रहा है।
0: और खास बात यह

0: है कि इनके ज्यादातर इनिशिएटिव्स या तो क्राउड फंडेड या फिर सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं। तो आइए अब जानते हैं प्रियांशु से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: नमस्ते, मेरा नाम प्रियांशु खैमरिया है। जब मैं क्लास 9th में जबलपुर गया, तब मैंने देखा कि कितना अंतर है शिक्षा के स्तर में मेरे गांव में और जबलपुर में, और कैसे बहुत से ऐसे क्वालिटी रिसोर्सेज हैं, क्वालिटी टीचर्स हैं, जिनकी अवेलेबिलिटी मेरे गांव में नहीं होती थी। इसके बाद मैंने जेई की परीक्षा दी और मेरा सिलेक्शन NIT के सूरतकल में हुआ। तब मैंने सोचा कि मेरे गाँव के बाकी बच्चों का क्या, स्पेशली वो बच्चे जो गाँव से बाहर निकल ही नहीं पाए। और इसी सोच के साथ शुरू होता है आश्रय। आश्रय में हम सब मिलकर फिर एक बुक कलेक्शन ड्राइव लॉन्च करते हैं, और उस बुक कलेक्शन ड्राइव की हेल्प से पहली फ्री लाइब्रेरी मेरे गांव में बना पाते हैं। और इसी तरीके से हमारी टीम में कुछ और लोग जुड़ते हैं। उसके बाद हम प्रशासन की मदद से पंचायतों में लाइब्रेरी ओपन करते हैं। इस तरीके से लाइब्रेरी का कारोबार आगे बढ़ता है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम लाइब्रेरीज के साथ साथ लर्निंग सेंटर्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, साथी हैं, वो जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे। क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं, ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स होते हैं। इसके बाद हमने एक चीज और नोटिस करी कि जो बच्चे क्लास 8th में हैं, क्लास 7th में हैं, पर उनका क्लास फर्स्ट सेकेंड का बेसिक्स भी क्लियर नहीं है, पर उन्हें स्कूल में क्लास 7th और 8th में ही बैठना पड़ता है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कोई ऐसा मॉडल डिजाइन करेंगे जिसमें इन बच्चों को उनके लर्निंग लेवल्स के हिसाब से हम बिठाएं और उनको लेवल अप करें। और इसी आइडिया के साथ स्टार्ट होता है आश्रय विद्यालय, जिसमें कोई क्लास का सिस्टम नहीं होता। बच्चों को एक टेस्ट लिया जाता है, उस टेस्ट के हिसाब से जो उनका लर्निंग लेवल है उसमें उन्हें रखा जाता है, और फिर हम ट्राई करते हैं कि 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने में उनको उससे लेवल अप करें। इसका सोल्यूशन निकला आश्रय विद्यालय डिजिटल सेंटर से, जिसमें हमने टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर गांव में बिल्ड किया, जिसमें बच्चों को हमने टैब्स, प्रॉपर फर्नीचर, प्रॉपर वाईफाई कनेक्शन, जो बेसिक अमेनिटीज हैं वो इंश्योर करी। और इसके साथ ही साथ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, या फिर जो हमारे कोलेबोरेशन है जो डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स में, उनके साथ हमने इंश्योर किया कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन उन बच्चों को प्रोवाइड कर पाए। इस प्रोजेक्ट में MP के एजुकेशन मिनिस्टर हैं रावत प्रताप सिंह जी, उनका भी विजिट हुआ, और उन्होंने कहा था कि दिस सेंटर इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन।
2: प्रियांशु जैसे युवाओं का हौसला देखकर मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब जी का वो शेर याद आता है, आंखों में मंजिलें थीं, गिरे और संभलते रहे, आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। इनकी कहानी वाकई ग्रामीण भारत की चुनौतियों को अवसर में बदलने की जीती जागती मिसाल है।
0: जी हाँ, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, प्रियांशु जैसे जाने कितने ही युवा अपनी कोशिशों से समाज में पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं। अगर आपके पास भी है ऐसी ही अनकही पर इंस्पायर कर देने वाली कहानियाँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं yuvvanidelhi@gmail.com पर। जी हाँ, yuvvanidelhi@gmail.com। तो साथियों, अब तैयार हो जाइए एक प्यारे से गाने के लिए, जिसके बोल हैं, बादल पे पाँव है या छोटा गाँव है। यस, फिल्म चक दे इंडिया से।

0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शैसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी वीरता पदक

0: Lilting tunes by the military band from the Mahar Regimental Center, Sagar, Madhya Pradesh. The tunes that swell the chest of every Indian across India and around the world. And today is a day of great honor.
1: Mananiya Rashtrapati Mahodaya, aapki anumati ho to raksha alankaran samaro arambh kiya jaye.
2: Raksha Sachiv Shri Rajesh Kumar ne karyakram arambh karne ki anumati li Mananiya Rashtrapati se. Aur ab karyakram ka vidhivat शुरुआत.
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र. इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट, इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, छत्तीसगढ़ पुलिस.
2: इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य

0: पदक के लिए आमंत्रित किया गया है इस वक्त राष्ट्रपति के सामने।
1: 16 अप्रैल 2024 को इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नेतृत्व में एक वृहत अभियान आरंभ किया गया। नक्सलियों ने घात लगाकर भीषण गोलीबारी की, जिससे लगभग 200 जवानों की सुरक्षा संकट में पड़ गई। अधिकारियों ने तत्काल जवाबी रणनीति बनाई, जो इतनी साहसिक थी कि नक्सली चकित रह गए। 3 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में जब 4 जवान घायल हो गए, तो कमांडर ने गोलीबारी में उलझाकर दूसरी तरफ से बड़ी होशियारी के साथ घायल साथियों को सुरक्षित निकाल लिया। अभियान में अनेक नक्सली मारे गए। यह अभियान छत्तीसगढ़ के अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ और सफल अभियानों में गिनी जाती है। रणभूमि में अद्वितीय साहस और विलक्षण नेतृत्व कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट,
0: अपने कर्तव्य के प्रति इस असाधारण साहसिक कार्य के लिए इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट को माननीय राष्ट्रपति पदक से सम्मानित करते हैं।
1: इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख,
0: और अब इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति के सामने। इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख, तालियों के साथ।
1: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला, 19वीं बटालियन द सिख रेजिमेंट।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला फ्रॉम द 19th बटालियन ऑफ द सिख रेजिमेंट।
1: 13 जुलाई 2024 को नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों के घुसपैठ की सूचना मिलने पर लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला ने घात दस्ता लगाया। अभियान के दौरान भारी गोलीबारी, ग्रेनेड हमलों के बीच रेंगते हुए आगे बढ़े और नजदीक से 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। साथियों पर घातक फायर कर रहे 3रे आतंकी का भी खात्मा किया। निर्भीक रण कौशल असाधारण साहस के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नितेश भारती शुक्ला।
2: A brisk, quick walk up to the Honorable President, that is Lieutenant Colonel Nitesh Bharati Shukla, proudly receiving the Medal of Honor Shaurya Chakra for his bravery, courage, and indomitable spirit. And now,
1: Major Aditya Pratap Singh, Sena Medal. The Rajputana Rifles, 44 Assam Rifles.
0: Major Aditya Pratap Singh ko ab Shaurya Chakra.
1: Major Aditya Pratap Singh ne अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में भारी घुसपैठ तथा बड़े हमले की खबर मिलने पर एक ऑपरेशन आरंभ किया। 72 घंटे की निगरानी कर आतंकवादियों को ढूंढ निकाला। महज 30 मीटर से भयंकर गोलीबारी के बावजूद निर्भीक अधिकारी ने अपनी जान की परवाह किए बिना अकेले ही मोस्ट वांटेड उग्रवादी को मार गिराया। अदम्य साहस, राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आदित्य प्रताप सिंह,
0: आदित्य पराक्रम कर्तव्य की पराकाष्ठा से ऊपर निस्वार्थ सेवा और उग्रवादी हमले की निष्काम करने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति।
1: मेजर आशीष कुमार, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: Major Ashish Kumar from the 7th Battalion of the Parachute Regiment, brusquely, boldly, confidently walking forward, taking a quick thump, a salute.
1: 2 November 2020 को अनंतनाग में आतंकवादियों के संभावित मार्ग पर निगरानी के दौरान मेजर आशीष कुमार ने 2 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान की। भारी गोलीबारी के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया, जिसमें एक A++ श्रेणी का कुख्यात आतंकवादी था। असाधारण वीरता और श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर आशीष कुमार,
2: मेजर आशीष कुमार फ्रॉम द पैरा रेजिमेंट, डॉनिंग द रेड बेरे, वॉकिंग पास्ट टुवर्ड्स ऑनरेबल प्रेसिडेंट एंड प्राउडली द मेडल Shaurya Chakra being pinned on his proud chest. A soldier lives for this day.
1: Sipahi GD Sanjay Tiwari, Sipahi GD Fida Hussain Dar, Kendriya Reserve Police Force.
0: CRPF के GD संजय तिवारी और GD फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है।
1: 2 नवंबर 2024 को रात्रि 2:45 पर खनियार थाने के एक मोहल्ले से एक विदेशी आतंकवादी के छुपे होने की सूचना मिली। बिना समय गवाए सिपाही GD संजय तिवारी और फिदा हुसैन डार ने लक्षित मकान को घेर लिया। गोलीबारी शुरू हुई। आतंकवादी ने कई ग्रेनेड भी फेंके, जिससे नजदीक से मुकाबला कर रहे दोनों जाबाज सिपाहियों को कई गोलियां और ग्रेनेड के टुकड़े भी लगे। बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद वे निडरता से आगे बढ़े और विदेशी आतंकवादी के भारी सुरक्षात्मक पोजीशन में रहने के बावजूद मार गिराया। गोली लगने के बावजूद असाधारण वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही GD संजय तिवारी।
0: सिपाही GD संजय तिवारी को, जो कि CRPF से है, अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: सिपाही GD फिदा हुसैन डार।
0: और अब अदम्य साहस के लिए CRPF के सिपाही GD फिदा हुसैन डार को शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही हैं माननीय राष्ट्रपति।
3: सहायक कमांडेंट वर्तमान में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक 26 असम राइफल्स।
2: असिस्टेंट कमांडेंट एंड नाउ डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक फ्रॉम द 26 असम राइफल्स वॉकिंग पास द ऑडियंस एंड नाउ अ क्विक ब्रिस्क।
3: 5 नवंबर 2024 को चिंतावाड़ी क्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक के नेतृत्व में एक टुकड़ी को लक्ष्य घर के उत्तर पूर्वी हिस्से में तैनात किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने का प्रयास किया। उस समय डिप्टी कमांडर मोहम्मद शफीक ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए भारी गोलाबारी के बीच आतंकवादी के करीब जाकर उसे बेहद नजदीकी से ढेर कर दिया और अपने साथियों को बिना किसी नुकसान के साथ बचाकर भारी मात्रा में युद्ध जैसी सामग्री भी बरामद की। अदम्य साहस, सर्वोच्च नेतृत्व एवं असाधारण सामरिक कौशल का परिचय देने के लिए डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक।
2: डिप्टी कमांडेंट मोहम्मद शफीक वॉकिंग ब्रिस्कली कॉन्फिडेंटली एंड नाउ फेसिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट टू रिसीव हिज मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र।
3: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर।
0: लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: 6 नवंबर 2024 को लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को एक संयुक्त घेराबंदी और तलाशी अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब घर में फंसे एक आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की कोशिश की, तब उन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को भांपकर निडर होकर छिपे हुए दूसरे आतंकवादी पर जानबूझकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने अपने साथी को भी समय पर सूचित किया। परिणाम स्वरूप अपनी सेना द्वारा दोनों आतंकवादियों को मार गिराया। सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा के सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर।
0: सामान्य कर्तव्य से बढ़कर सेवा की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: सीमैन फर्स्ट क्लास मरीन कमांडो वर्तमान में लीडिंग सीमैन राम गोयल।
2: एंड नाउ सीमन राम गोयल।
3: ऑपरेशन चुंतावाड़ी के दौरान आप भारी गोलाबारी के बीच लक्षित घर के घेराबंदी करने के लिए तैनात थे, जहां दो आतंकवादी छिपे हुए थे। आपने अत्यधिक सामरिक परिपक्वता का परिचय दिया और लक्षित घर में छिपे दूसरे आतंकवादी को पकड़ने के लिए कई बार निडरता से अपनी आड़ तोड़कर सटीक गोलाबारी की। तत्पश्चात आपने अपने साथियों के साथ लक्षित घर में प्रवेश करके निष्प्रभावी आतंकवादियों के शव बरामद किए और युद्ध जैसे सामान भी कब्जे में किए। कर्तव्य से परे सामरिक कौशल, अदम्य साहस और विशिष्ट वीरता के लिए लीडिंग सीमैन मरीन कमांडो राम गोयल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। leading seaman Marine Commando Ram Goyal.
2: Walking confidently, briskly, this is leading seaman Ram Gopal to receive his Medal of Courage, Medal of Gallantry, Shaurya Chakra. Saluting and heading
3: Sipahi GD Saddam Hussein, CRPF.
0: और अब CRPF के सिपाही GD Saddam Hussein को शौर्य चक्र के सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया गया है माननीय राष्ट्रपति के सामने इस वक्त सिपाही GD Saddam Hussein।
3: जम्मू एवं कश्मीर में भारी हथियारों से युक्त दो विदेशी आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष सूचना मिली। सिपाही GD Saddam Hussein तय योजना अनुसार तलाशी अभियान का हिस्सा थे और उन्होंने प्रतिकूल परिस्थिति में लक्ष्य क्षेत्र में रणनीतिक रूप से मोर्चा संभाला और अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल से युक्त आतंकवादियों की अंधाधुंध गोलीबारी के बावजूद असाधारण धैर्य के साथ अपने मोर्चे पे डटे रहे और बड़ी सटीकता के साथ अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर राउंड फायर करके लक्ष्य को बर्बाद किया। इस असाधारण वीरता एवं अदम्य साहस के लिए सिपाही GD Saddam Hussein को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सिपाही GD Saddam Hussein।
0: सिपाही GD Saddam Hussein, तृतीय बटालियन CRPF के द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, अदम्य साहस, कर्तव्य प्राणता, ड्यूटी के प्रति समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति ने पदक से।
3: सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन, 20वीं बटालियन CRPF।
2: And now walking towards our honorable president, assistant commandant Vipin Wilson from the 20 battalion CRPF. A quick turn and a salute.
3: 11 नवंबर 2024 को मणिपुर के जिरीबाम जिले में सशस्त्र विरोधियों ने 20वीं बटालियन के मोर्चे पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन ने तुरंत लगातार एवं सटीक गोलाबारी से विरोधियों पर हमला किया और हमलावरों को रक्षात्मक स्थिति से पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लगातार गोलीबारी के बावजूद वे आगे बढ़े और उन्होंने दो कट्टर आतंकवादियों को मार गिराया और महत्वपूर्ण हथियार भी बरामद किए। चुनौतीपूर्ण युद्ध परिस्थिति में असाधारण वीरता और अदम्य साहस के लिए सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सहायक कमांडेंट विपिन विल्सन,
2: असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन बीइंग अवार्डेड द मेडल ऑफ गैलेंट्री शौर्य चक्र एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट नाउ पिनिंग द मेडल ऑन टू द प्राउड चेस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट विपिन विल्सन।
4: राइफलमैन भोजराम साहू, 3rd बटालियन असम राइफल्स।
0: तीन असम राइफल्स के राइफलमैन भोजराम साहू को अगला शौर्य चक्र दिया जा रहा है।
4: 15 नवंबर 2024 आप भारत म्यांमार सीमा रेखा के समीप तैनात घुसपैठ विरोधी दस्ते के स्काउट की भूमिका निभा रहे थे। अपनी टुकड़ी को अचानक एक सघन विस्फोट की चपेट में आया देख व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप निडरता से आगे बढ़े तथा सटीक निशाने से दो विद्रोहियों को घायल कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच गोली लगने से जख्मी होने के बावजूद आपने एक और विद्रोही को घायल करते हुए उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में तीनों विद्रोहियों के मारे जाने की पुष्टि की गई एवं भारी मात्रा में हथियार तथा गोला बारूद भी बरामद किया गया। अद्भुत वीरता तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन भोजराम साहू।
0: तालियों की गड़गड़ाहट के बाद राइफलमैन भोजराम साहू शौर्य चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के सामने।
4: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह, उड़ान पायलट।
2: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह एंड नाउ अ फ्लाइंग पायलट ब्रिस्कली वॉकिंग फॉरवर्ड टेकिंग अ क्विक ब्रिस्क टर्न अ सल्यूट टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट सुप्रीम कमांडर ऑफ द
4: 21 नवंबर 2024 की अंधेरी रात में आपको एक प्रशिक्षु पायलट की उड़ान के मूल्यांकन के लिए विमान कप्तान का दायित्व तो सौंपा गया। एक मुश्किल मैनूवर का अभ्यास करते समय पिछली कैनोपी के क्षतिग्रस्त होने से केबिन में अचानक एक्सप्लोसिव डीकंप्रेशन पैदा हो गया और कैनोपी के कई टुकड़ों से आपको गंभीर चोटें आईं। प्राणघातक एरोमेडिकल चुनौतियों तथा रक्तस्राव के बीच आपने अधिक मानसिक संतुलन बनाए रखा एवं असहनीय पीड़ा के बावजूद घने अंधेरे में वायुयान को स्वयं नियंत्रित करते हुए आबादी से दूर सुरक्षित उतारा। इस बहादुर वायु योद्धा ने न केवल युवा पायलट की जान बचाई बल्कि संभावित दुर्घटना को टालकर आम नागरिकों के प्राणों एवं संपत्ति के साथ साथ राष्ट्र की बहुमूल्य सामरिक संपत्ति की सुरक्षा भी

0: सुनिश्चित की। इस असाधारण कृत्य के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अभिमन्यु सिंह।
1: Group Captain Abhimanyu Singh, a round of claps going up in the air, receiving his proud gallantry award, the Shaurya Chakra, for exceptional gallantry and courage.
0: Major Bhargav Kalita, Kumaon Regiment, 50th Battalion, Rashtriya Rifles.
2: Kumaon Regiment, 50th Rashtriya Rifles ke Major Bhargav Kalita ko Shaurya Chakra se sammanit kiya ja raha hai.
0: आपने अक्टूबर 2022 से जम्मू कश्मीर में सेवाएं देते हुए अपनी बटालियन के साथ 3 सफल ऑपरेशन में भाग लिया, जिसमें 3 आतंकी मारे गए एवं 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जिंदा पकड़ा गया। 2 दिसंबर 2024 को एक आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आपने कुशल नेतृत्व करते हुए एक अचूक घात लगाया, जिसके फलस्वरूप इस आतंकी को मार गिराया गया। उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता तथा अद्वितीय वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर भार्गव कलिता।
1: मेजर भार्गव कलिता फ्रॉम द कुमाऊं रेजिमेंट प्राउडली रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर शौर्य चक्र फॉर अनडॉन्टिंग करेज एंड ब्रावाडो।
0: मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह, द पैराशूट रेजिमेंट।
2: और अब 11 पैराशूट रेजिमेंट के मेजर लेशांतिंग दीपक सिंह शौर्य चक्र लेने के लिए।
0: उत्तर पूर्व में सेवाएं देते समय आतंकियों द्वारा निर्दोष नागरिकों के अपहरण की सूचना मिलने पर आपने अपनी जान की चिंता न करते हुए स्वयं बंधकों को मुक्त कराने का साहसिक निर्णय लिया। लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आतंकियों द्वारा की गई भारी गोलीबारी के बीच आपने अत्यंत नजदीक से एक आतंकी को मार गिराया तथा स्वयं को ढाल बनाते हुए बंधक नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच भागने का प्रयास कर रहे एक और आतंकी को भी आपने घायल कर दिया। आपके कुशल मार्गदर्शन के फलस्वरूप निर्दोष नागरिकों को सकुशल मुक्त कराया गया तथा भारी मात्रा में हथियार एवं युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। अदम्य साहस तथा उत्कृष्ट रण कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर लेईशांग थेम दीपक सिंह।
2: विशेष वीरतापूर्ण कार्य के लिए मेजर लेईशांग दीपक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा।
0: मेजर अंशुल बल्टू, जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, 32वीं बटालियन, आसाम राइफल्स।
1: एंड नाउ कमिंग मार्चिंग फॉरवर्ड मेजर अंशुल बल्टू फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री।
0: 29 अप्रैल 2025 आपने दक्षिण आसाम में उग्रवादियों की मौजूदगी संबंधी सूचना के आधार पर चलाए गए एक घेराबंदी अभियान का नेतृत्व किया। तलाशी के दौरान उग्रवादी भारी गोलीबारी करते हुए घने जंगलों की ओर भाग निकले। आपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उनका पीछा किया तथा एक सशस्त्र आतंकी को अकेले ही मार गिराया। भीषण मुठभेड़ के बाद 3 सशस्त्र आतंकियों के शव एवं 3 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में युद्ध सामग्री भी बरामद की गई। असाधारण बहादुरी तथा कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से अलंकृत किया जाता है। मेजर अंशुल बल्टू।
1: द गणतंत्र मंडप एकोइंग अवे द लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मेजर अंशुल बल्टू रिसीविंग हिज शौर्य चक्र, अ प्राउड मोमेंट फॉर द सोल्जर सैल्यूटिंग आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट। And a quick turn
0: Major
1: back to the arena.
0: Shivkant Yadav, Parachute Regiment.
2: अब पैराशूट रेजिमेंट के मेजर शिवकांत यादव को शौर्य चक्र।
0: मेजर शिवकांत यादव ने एक आतंक विरोधी अभियान के दौरान दुर्गम और घने जंगल क्षेत्र में आतंकवादियों का पता लगते ही अपनी टुकड़ी की पुनः तैनाती की। प्रतिकूल परिस्थितियों में घनी झाड़ियों में लगातार पीछा करते हुए एक कुख्यात A++ श्रेणी के आतंकवादी को मार गिराया। अभियान में 2 अन्य दुर्दांत आतंकवादी भी ढेर किए गए। अद्वितीय वीरता, प्रेरणादायी सैन्य नेतृत्व के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर शिवकांत यादव।
2: तीव्र सामरिक सूझबूझ, विशिष्ट वीरता, आदित्य धैर्य

0: अदम साहस के लिए मेजर शिवकांत यादव को तालियों के गड़गड़ाहट के बीच शौर्य चक्र
1: सुबेदार पीएच मोसेस वन असम राइफल्स।
2: नाउ सुबेदार पीएच मोसेस फ्रॉम द फर्स्ट असम राइफल्स proudly marching, slow measured march, a quick salute.
1: 14 मई 2025 को एक विशेष अभियान के दौरान गश्ती दल के सेकंड इन कमांड के रूप में अचानक छिपे उग्रवादियों की गोलीबारी का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी पूरी टुकड़ी खतरे में आ गई। अपने फायर से उग्रवादियों को दबाव में रखते हुए अत्यंत जोखिम उठाकर पहले एक और फिर दूसरे आतंकवादी को भी ढेर कर दिया। असाधारण शौर्य, विलक्षण सैन्य कौशल और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सुबेदार पीएच मोसेस।
2: सुबेदार पीएच मोसेस, अ प्राउड सोल्जर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ मां भारती आवर मदरलैंड इंडिया, रिसीविंग हिज प्राइड मेडल ऑफ ऑनर, सैल्यूटिंग एंड हेडिंग बैक।
1: मेजर विवेक, द मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल्स।
0: मैकेनाइज इन्फेंट्री 42 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विवेक को शौर्य चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है।
1: 15 मई 2025 को पुलवामा जिले में घेरा और तलाशी अभियान के दौरान मेजर विवेक की टुकड़ी आतंकवादियों की गोलीबारी की चपेट में आ गया। आपने आतंकवादियों के भागने के प्रयास को विफल किया तथा नागरिकों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की। जोखिम उठाकर कंक्रीट की छत के नीचे छिपे A++ श्रेणी के आतंकवादी को आमने सामने की लड़ाई में मार गिरा है। विशिष्ट वीरता, उत्कृष्ट नेतृत्व, अद्वितीय युद्ध कौशल के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर विवेक,
0: अत्यंत वीरता, नेतृत्व क्षमता, रणनीतिक कुशलता और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए मेजर विवेक को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
1: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई 3 असम राइफल्स।
2: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई फ्रॉम द 3rd असम राइफल्स, रेडी टू रिसीव।
1: 9 जून 2025 को राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई भारत म्यांमार सीमा पर घुसपैठ विरोधी अभियान के अग्रणी स्काउट थे। आपने कई आतंकवादियों को घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़ते देखा। आपने पहले ही हमले में 2 आतंकवादियों को मार गिराया और गोली से घायल तीसरे आतंकवादी को भी उसी शाम घने जंगलों में ढूंढकर मार गिराया। अदम्य साहस, कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई।
2: राइफलमैन मांगलेम सांग वाईफाई being awarded the Shaurya Chakra, displaying nerves of steel.
1: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar, Parachute Regiment.
0: 21 para vishesh dal ke Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ko Shaurya Chakra diya ja raha hai.
1: Lieutenant Colonel Ghatge Aditya Shri Kumar ne सीमावर्ती इलाके में एक किले बंद विद्रोही शिविर पर सटीक हमला करने के लिए व एक कुख्यात विद्रोही समूह के नेतृत्व को बेअसर करने के लिए मजबूत खुफिया नेटवर्क स्थापित किया, कड़े धोखे के प्रोटोकॉल लागू किए और कई उच्च जोखिम वाले टोही अभियानों में भाग लिया, जिससे 9 विद्रोही मारे गए। निडर नेतृत्व और विशिष्ट वीरता के लिए आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार।
0: उत्कृष्ट व्यवसायिक क्षमता, निडर नेतृत्व और प्रतिकूल परिस्थितियों में विशिष्ट वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल घाटगे आदित्य श्री कुमार को ये शौर्य चक्र प्रदान किया गया है।
3: कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर, पैराशूट रेजिमेंट।
2: Briskly marching forward in measured steps, this is Captain Yogendra Singh Thakur from the 6th Para Regiment.
3: जम्मू एवं कश्मीर के इलाके में कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर अपने निगरानी दस्ते के साथ तैनात थे, जब उन्हें लगभग 300 मीटर की दूरी पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों की हरकत दिखाई थी। संदिग्ध व्यक्तियों के भागने और अनअपेक्षित नुकसानों से बचाने के लिए

0: वे घने कोहरे में अटल रहे। अचानक आतंकवादियों ने उनकी टुकड़ी पर भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। स्थिति में वे रेंगते हुए आतंकवादियों की ओर बढ़े और बेहद नजदीकी मुठभेड़ में भीषण गोलाबारी के बीच एक आतंकवादी को मार गिराया। उनकी अभूतपूर्व वीरता, युद्ध कुशलता एवं दृढ़ संकल्प के लिए कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर
1: और हिज अनप्रेसिडेंटेड वैलर, फाइटिंग स्पिरिट, डेडिकेशन, कैप्टन योगेंद्र सिंह ठाकुर इज अवार्डेड द शौर्य चक्र। एंड नाउ अ सैल्यूट एंड टर्न।
0: सुबेदार शमशेर सिंह, पैराशूट रेजिमेंट।
2: और चार पैरा विशेष दल के सूबेदार शमशेर सिंह इस वक्त शौर्य चक्र लेने के लिए राष्ट्रपति के सामने।
0: सूबेदार शमशेर सिंह को श्रीनगर जिले के एक इलाके में 3 उच्च कोटि आतंकवादियों को खोजने एवं मार गिराने के अभियान में स्क्वाड कमांडर के रूप में नामांकित किया गया था। खोजने के गतिविधि के दौरान वे अचानक भीषण गोलाबारी के चपेट में आ गए। युद्ध क्षेत्र में संयम का परिचय देते हुए उन्होंने तुरंत उस स्थान की पहचान की जहां एक आतंकवादी छुपा हुआ था और खुद को दुश्मन की सीधी गोलाबारी के बीच स्थापित किया। आगामी निकट मुठभेड़ में दुश्मन की गोलाबारी का सामना करते हुए वे आगे बढ़े और एक सटीक और घातक हमला करके एक आतंकवादी को मार गिराया। गोलाबारी के बीच अद्वितीय साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सूबेदार शमशेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है।
2: कर्तव्य के प्रति समर्पण और समझदारी का प्रदर्शन करने के लिए सूबेदार शमशेर सिंह शौर्य चक्र लेते हुए माननीय राष्ट्रपति से।
0: लांस नायक, वर्तमान में नायक राहुल सिंह, पैराशूट रेजिमेंट। श्रीनगर के एक जिले में एक आतंक विरोधी ऑपरेशन में नायक राहुल सिंह को एक प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। अटल साहस, बेमिसाल फील्ड क्राफ्ट एवं संकेतों का पीछा करते हुए उन्होंने आतंकवादी ठिकानों का खोज निकाला एवं तुरंत अपने स्क्वाड कमांडर को सूचित किया। आगे बढ़ते समय प्रख्यात खतरे का एहसास होने पर उन्होंने आतंकी ठिकाने के बारे में अपने दस्ते को सूचित किया और निकटतम आतंकवादी पर सटीक गोलाबारी करके उसको मौके पर ही मार गिराया। उनकी वीरतापूर्ण कार्यवाही, दृढ़ बहादुरी और असाधारण लड़ाकू क्षमता के लिए नायक राहुल सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायक राहुल सिंह।
1: नायक राहुल सिंह मार्चिंग अहेड फॉर हिज मेडल ऑफ ऑनर द शौर्य चक्र। दिस इज courage under fire, a fine display of what our soldiers vow to pledge.
0: Rifleman Dhubra Jyoti Datta, 33 Assam Rifles.
2: 33 Assam Rifles ke rifleman Dhubra Jyoti Datta vishwas ke sath aage badhte hue
0: 19 सितंबर 2025 को राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को इम्फाल घाटी में एक बाढ़ राहत अभियान में वाहन चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। वाहन के पिछले हिस्से में 8 और जवान भी बैठे थे। तभी अचानक अज्ञात विद्रोहियों ने घात लगाकर वाहन पर हमला किया। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को स्वयं जांग, छाती, कंधे और बांह पर कई गोलियां लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए वाहन को मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकाला और अपनी त्वरित कार्रवाई से पिछले हिस्से में सवार सभी 8 साथी सैनिकों की जान बचाई। अपने उत्कृष्ट एवं वीरतापूर्ण कार्य के लिए राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। राइफलमैन धूबरा ज्योति दत्ता।
2: रक्षा अलंकरण समारोह केवल सम्मान प्रदान करने का अवसर नहीं बल्कि ये उन वीर गाथाओं को राष्ट्र के सामने नमन करने का अवसर है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से भारत की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
0: लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए।
1: Women empowered are not behind. We have now two women, Lieutenant Commanders Dilna K and Lieutenant Commander Rupai.
0: आप दोनों को नाविका सागर परिक्रमा 2 के लिए चयनित किया गया था, जो INSV तारिणी पर एक अग्रणी द्विसदस्य विश्व परिक्रमा अभियान था। 2 अक्टूबर 2024 से 29 मई 2025 के बीच आपने भारतीय, प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागरों से होते हुए 25,600 समुद्री मील से अधिक की यात्रा की, जिसमें आपको एकांत, अत्यधिक मौसम और तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। आप पॉइंट नीमो तक नौकायन कर पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी। अभियान के दौरान जीवन झकझोर देने वाली परिस्थितियों के बावजूद आपने अदम्य साहस, उत्कृष्ट नौकायन कौशल और नेतृत्व का परिचय दिया। इस अभूतपूर्व अभियान में असाधारण वीरता के लिए लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एवं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के
1: A big round of applause for the woman soldier from the Indian Navy receiving her Shaurya Chakra proudly.
0: Lieutenant Commander Rupa A.
1: Lieutenant Commander Rupa A. Now in front of our Honorable President, proudly receiving her Medal of Honor, the Shaurya Chakra, daring the weather and being the first Indians to reach Point Nemo.
3: शत्रु का मुकाबला करते हुए वीरता के लिए वीर चक्र। कल को शांक लांबा रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी।
2: और अब वीर चक्र दिए जाएंगे। वीर अधिकारी पूरे आत्मविश्वास और गौरव के साथ राष्ट्रपति महोदया के समक्ष।
3: कल को शांक लांबा ने अनुकरणीय नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए एक विशेष उपकरण बैटरी को प्रतिकूल परिस्थितियों में इंडक्ट किया। बेहद कम समय में नए क्षेत्र में उत्कृष्ट युद्ध क्षमता सुनिश्चित करते हुए दिए गए लक्ष्यों का सफल विश्लेषण किया एवं एक समन्वित सटीक फायर मिशन द्वारा कई आतंकी शिविरों को बर्बाद करने में अहम योगदान दिया, जिसमें कई आतंकियों का सर्वनाश किया गया। दुश्मन की भीषण गोलाबारी के बीच अपनी जान जोखिम में डालकर आप अग्रिम मोर्चे पर डटे रहे तथा एक गन से दूसरी गन पर जाकर निरंतर अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाते रहे। असाधारण नेतृत्व क्षमता तथा युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। कल कोशांक लांबा।
2: भारतीय सेना की परंपरा के अनुसार गोलीबारी के बीच असाधारण वीरता, पराक्रम और साहस का प्रदर्शन करने के लिए कर्नल कोशांक लांबा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है।
3: कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, उड़ान पायलट।
1: एंड आवर सेकंड वीर चक्र, ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू, Flying Captain from the Indian Air Force.
3: एक सैन्य अभियान के दौरान शक्तिशाली लड़ाकू विमानों से सुसज्जित आपके स्क्वाड्रन को शत्रु के कुछ ठिकानों को बर्बाद करने का जिम्मा सौंपा गया। निरंतर बदलते खतरों के बीच अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना इस पराक्रमी वायु योद्धा ने अग्रिम पंक्ति में रहकर कई डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक्स मिशन का नेतृत्व किया तथा निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट करने के साथ साथ अपने साथी पायलट्स को सुरक्षा प्रदान की। आसमान में रहते हुए आपने ऑपरेशनल वेरिएबल्स के अनुरूप कई साहसिक निर्णय लेते हुए तीन स्थानों से संचालित जटिल वायु अभियानों को सफलता के शिखर तक पहुंचाया। अद्वितीय उड़ान कौशल, अटूट कर्तव्य निष्ठा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू।
1: ग्रुप कैप्टन रंजीत सिंह सिद्धू मार्चिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज मेडल Short Veer Chakra from our Honorable President.
3: Group Captain Manish Arora, Shaurya Chakra, Udan Pilot.
2: और अब उड़ान पायलट मनीष अरोड़ा को वीर चक्र दिया जा रहा है।
3: आपको कुछ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को ध्वस्त करने के लिए चलाए गए एक जोखिमपूर्ण अभियान का दायित्व सौंपा गया। शत्रु का वायु क्षेत्र अति आधुनिक रडार की सतत निगरानी में था तथा लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस दुश्मन के लड़ाकू विमान इसकी सुरक्षा में निरंतर तैनात थे। ऐसी घातक परिस्थितियों में हथियार प्रक्षेपण का लॉन्च विंडो बेहद सीमित होने के बावजूद इस शूरवीर अधिकारी ने शत्रु की मारक सीमा के भीतर घुसकर लड़ाकू विमानों के प्रचंड प्रहार से निर्धारित लक्ष्यों को बर्बाद किया और अपने साथियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। अद्भुत पराक्रम, असाधारण नेतृत्व क्षमता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा, शौर्य चक्र।
2: ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा शौर्य चक्र को वीर चक्र से सम्मानित कर रहे हैं। तालियों के गड़गड़ाहट के बीच माननीय राष्ट्रपति ने ग्रुप कैप्टन मनीष अरोड़ा को
3: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी, उड़ान पायलट।
1: एंड नाउ Group Captain Animesh Patni, dressed in impeccable blue uniform. कमिंग फॉरवर्ड।
3: एक अग्रिम एयरफील्ड पर सरफेस टू एयर मिसाइल स्क्वाड्रन की कमान संभालते हुए

0: आपने एक चुनौतीपूर्ण अभियान में दो फायरिंग यूनिट्स का नेतृत्व किया जिसमें शत्रु के कई हवाई लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा गया। शत्रु को भ्रमित करने के लिए आपने लगातार अपनी यूनिट का स्थान परिवर्तित किया एवं भीषण गोलाबारी के बीच अपने सैनिकों तथा उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित की। आपके सजग मार्गदर्शन में एक संदिग्ध शत्रु गुप्तचर को भी पकड़ा गया। असाधारण साहस तथा कर्तव्य परायणता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी।
1: ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी रिसीविंग हिज वीर चक्र एंड एज दे से डू नॉट गो वेयर द पाथ लीड्स, गो वेयर देयर इज नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल एंड गणतंत्र मंडप एकोइंग
0: कलरा उड़ान पायलट
1: विद अप्लॉज।
2: और अब ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को आमंत्रित किया गया है जो कि उड़ान पायलट है।
0: आपने एक खतरनाक सैन्य अभियान के अंतर्गत दुश्मन के दो महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह करने के लिए अनएस्कॉर्टेड स्ट्राइक पैकेज के मिशन लीडर के रूप में उड़ान भरी। शत्रु द्वारा जमीन और आसमान से निरंतर किए जा रहे प्राणघातक हमलों, विमान और शस्त्र प्रणाली में आई तकनीकी बाधाओं तथा प्रतिकूल मौसम के मध्य इस पराक्रमी वायु योद्धा ने असाधारण संयम तथा रण कौशल का परिचय दिया। रात के अंधेरे में मौत को चुनौती देते हुए शत्रु के सुरक्षा कवच को भेद कर निर्धारित लक्ष्यों को नेस्तो नाबूद किया और अभियान का गौरव बढ़ाया। इस अद्भुत पराक्रम के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा।
2: असाधारण साहस शौर्य ग्रुप कैप्टन कुणाल कालरा को वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है।
0: विंग कमांडर वर्तमान में ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा उड़ान पायलट।
1: विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फ्लाइंग पायलट फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स।
0: आपको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा दुश्मन की शस्त्र प्रणालियों से संरक्षित लक्ष्यों पर निर्णायक प्रहार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। शत्रु के रडारों की निगाहों से बचते हुए आपने अत्यंत निम्न ऊंचाई से अपने दल के साथ उड़ान भरी। जो ही अभियान निर्णायक चरण में पहुंचा आपको दुश्मन की वायु रक्षा विमानों तथा जमीनी हथियारों से जवाबी हमले का सामना करना पड़ा। जीवन पर मंडराते गंभीर खतरे के बीच आपने असाधारण नेतृत्व कौशल तथा अद्भुत धैर्य के साथ अपने प्रभावी फायर से निर्धारित ठिकानों के साथ साथ दुश्मन के नापाक मंसूबों का भी विनाश किया। इस शौर्यपूर्ण अभियान के लिए आपको वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा।
1: एंड अनदर लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर विंग कमांडर नाउ ग्रुप कैप्टन जॉय चंद्रा फॉर एक्सेप्शनल गैलेंट्री एंड करेज डिस्ट्रॉइंग द डेजिग्नेटेड एनिमी टारगेट रिसीविंग हिज वीर चक्र।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट 1988 स्वतंत्र मीडियम बैटरी।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट अब वीर चक्र लेने के लिए माननीय राष्ट्रपति के साथ।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट ने कमान अधिकारी के रूप में एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान में उच्च कोटि के संचालन कौशल का परिचय देते हुए लक्षित आतंकवादी कैंप का संपूर्ण विनाश कर सफलता प्राप्त की। अभियान की तैयारी के दौरान उन्होंने उपग्रह चित्रों का गहन विश्लेषण कर आतंकी कैंप की सटीक पोजिशन वह पहचान सुनिश्चित की। पुनः मिले आदेश पर एक और महत्वपूर्ण सामरिक लक्ष्य भी नष्ट किया। रणनीतिक सूझबूझ व अदम्य साहस के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट।
2: तालियों की गड़गड़ाहट के बीच असाधारण बहादुरी, अडिग नेतृत्व और अतुल्य साहस के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल सुशील बिष्ट वीर चक्र लेते हुए माननीय
3: स्क्वाड्रन लीडर वर्तमान में विंग कमांडर सार्थक कुमार उड़ान पायलट।
1: स्क्वाड्रन लीडर नाउ विंग कमांडर सार्थक कुमार फ्लाइंग पायलट proudly marching forward, a quick turn and salute to our supreme commander.
3: Squadron leader Sarthak Kumar ne mission planning cell ke pramukh sadasya ke roop mein anek deep strike mission ki yojana aur samanvay mein nirnayak bhumika nibhai va uch jokhim bhare long range stand off strike missionon mein prabhavi yogdan dete hue safalta

0: उड़ान पायलट स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह को वीर चक्र के लिए आमंत्रित किया गया है।
1: स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह ने एक अत्यंत जोखिमपूर्ण वायु मिशन में शत्रु की मजबूत एयर डिफेंस प्रणाली को भेदते हुए कम ऊंचाई पर रडार से बचते हुए प्रवेश कर लक्ष्य पर प्रभावी हमला किया और शत्रु की वायु रक्षा संरचना को काफी गंभीर क्षति पहुंचाई। तीव्र खतरे के बावजूद अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अदम्य साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कौशल के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह।
0: असाधारण साहस और शौर्यपूर्ण कार्य के लिए स्क्वाड्रन लीडर सिद्धांत सिंह माननीय राष्ट्रपति से पदक ग्रहण करते हुए वीर चक्र आपको दिया गया।
1: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक उड़ान पायलट।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक from the Indian Air Force now ready to receive his award, Veer Chakra.
1: Squadron Leader Rizwan Malik, operation ke dauran madhya ratri mein ek unescorted strike package ke deputy mission leader ke roop mein udaan bhari. Laksh navintam shaktishali vayu raksha shastra pranali se susajjit tha. Virodhi air space mein nirbadh radar cover ke bavajood खतरों से भरे घेरे को भेद कर विरोधियों की घातक रेंज में होने के बावजूद आतंकवादी प्रशिक्षण केंद्र और शत्रु के इलाके में एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य को ध्वस्त कर दिया। अदम्य साहस रणनीतिक कौशल विलक्षण सैन्य प्रतिभा के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक।
2: स्क्वाड्रन लीडर रिजवान मलिक। Echoes of jubilation in the hall. A proud moment for Squadron Leader Rizwan Malik receiving his Veer Chakra for undaunted spirit.
1: Vartaman mein Squadron Leader Arshveer Singh Thakur, Udaan Pilot.
0: Mananiya Pradhan Mantri, Uparashtrapati aur Tino Senaon ke Adhyaksh is waqt apne sainikon ki shaurya gatha sunte hue.
1: Flight Lieutenant Arshveer Singh Thakur. ऑपरेशन की मध्य रात्रि में एक महत्वपूर्ण मिशन के लिए उड़ान भरी। भयावह दायरे को भेदने का अवसर सीमित था, आक्रमण करने का लॉन्च विंडो भी सीमित था। विरोधी के भारी संख्या में होने के बावजूद रात्रि में बेहद नीचे उड़ते हुए रडार को चकमा देकर साहस के साथ शत्रु के सामरिक लक्ष्य को पूरी तरह से ध्वस्त किया। उनके आक्रमण ने विरोधी पर विध्वंसकारी प्रभाव ऐसा डाला जिससे विरोधी उनका हमेशा के लिए सामना करने में अक्षम हो गए। असाधारण साहस और विलक्षण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर।
0: शौर्यपूर्ण कार्य के लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट वर्तमान में स्क्वाड्रन लीडर आर्शवीर सिंह ठाकुर माननीय राष्ट्रपति से वीर चक्र प्राप्त हुए।
1: नायब सूबेदार सतीश कुमार, 4th बटालियन, द डोगरा रेजिमेंट।
2: एंड नाउ नायब सूबेदार सतीश कुमार फ्रॉम द 4th बटालियन डोगरा रेजिमेंट प्राउडली मार्चिंग फॉरवर्ड।
1: नियंत्रण रेखा पर जब हमारी चौकियां भीषण तोप और मोर्टार गोलीबारी की चपेट में आई तो स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नायब सूबेदार सतीश कुमार ने मोटर प्लेटून का नियंत्रण अपने हाथों में लिया और कई स्थानों पर ताबड़तोड़ फायर कर कई लक्ष्यों को बर्बाद किया और नुकसान दुश्मन को भारी पहुंचाया। उनके द्वारा किए गए काउंटर बम्बार्डमेंट और काउंटर मोटर ऑपरेशन ने दुश्मन के मोटर ठिकानों को प्रभावी रूप से दबाकर दुश्मन पर सामरिक बढ़त दिलाई। अधिक संकल्प और साधारण वीरता के लिए आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार सतीश कुमार।
2: हैंड्स गोइंग अप इन अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नायब सूबेदार सतीश कुमार फ्रॉम द डोगरा रेजिमेंट एंड आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट पिनिंग द वीर चक्र मेडल ऑफ गैलेंट्री ऑन द प्राउड चेस्ट ऑफ सतीश कुमार।
3: शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय असाधारण वीरता के लिए कीर्ति चक्र। लांस नायक मिनाची सुंदरम ए तोपखाना।

0: and our regiment 34 Rashtriya Rifles.
1: 29 Shaurya Chakra, 15 Veerta Chakra aur
0: Last night Meenakshi Sundaram A Kulgam ke ek operation mein aantarik gherabandi ka hissa the. ऑपरेशन के दौरान आतंकवादी ने घेराबंदी तोड़ने की हताश कोशिश की और अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। इसी भीषण गोलीबारी के बीच लांस नायक मीनाक्षी को चेहरे और दाहिने कंधे पर भी गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने विशुद्ध साहस, मन की दृढ़ता और असाधारण निशानाबाजी के परिचय देते हुए एक आतंकवादी को रोका और उसे भीषण नजदीकी गोलाबारी में मार गिराया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराने के लिए लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए
1: 7 कीर्ति चक्रों में से पहला कीर्ति चक्र दिया जा रहा है लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम को।
0: नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा पैराशूट रेजिमेंट।
2: नर्व्स ऑफ स्टील आर मेन एंड सोल्जर हैव दिस इज नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
0: जम्मू एवं कश्मीर में एक तलाशी अभियान के दौरान नायक सुबेदार दुलेश्वर सुब्बा ने दो आतंकवादियों को एक नाला पार करते हुए देखा और तुरंत अपने दस्ते की स्थिति बदलकर आतंकवादियों को घेरने का आदेश दिया। तभी भागने के प्रयास में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आपने तुरंत प्रभावी गोलीबारी की जवाबी देते हुए एक आतंकवादी को घायल कर दिया। अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने खुद को उजागर किया और दूसरे आतंकवादी पर निशाना साधा, जिसके परिणाम स्वरूप दूसरा आतंकवादी भी मौके पर ढेर हो गया। अद्वितीय वीरता, असाधारण साहस एवं उत्कृष्ट युद्ध कला के लिए नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। नायब सूबेदार दुलेश्वर सुब्बा।
2: And a round of applause from our Honorable Prime Minister, members of the Cabinet, dignitaries, for Naib Subedar Doleshwar Subba receiving his Kirti Chakra.
0: Major Ashdeep Singh, Kavachit Corps, 1 Assam Rifles.
1: And now, agla Kirti Chakra.
0: मेजर अर्शदीप सिंह सीमा के नजदीकी क्षेत्र में एक विशेष गश्ती दल के अग्रणी थे, जब उनका गश्ती दल अचानक दुश्मन की गोलाबारी के चपेट में आ गया। उन्होंने त्वरित नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को दुश्मनों पर हावी होने के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर पहुंचाया। सशस्त्र कैडरों से भिड़ते हुए उन्होंने जैसे ही कैडर को रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर के साथ लैस खतरे को देखा तो वे रेंगते हुए आगे बढ़े और सशस्त्र कैडर को मार गिराया। असाधारण वीरता एवं अद्वितीय नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। मेजर अर्शदीप सिंह
1: अद्वितीय वीरता और असाधारण नेतृत्व के लिए मेजर अर्शदीप सिंह इस वक्त राष्ट्रपति के सामने अपना कीर्ति चक्र ग्रहण करते हैं।
2: Moments like these will be remembered by one and all present here and around the country. Group Captain Prashant Balakrishnan Nair.
0: Air Commodore Prashant Balakrishnan Nair एक योग्य उड़ान अनुदेशक तथा एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट हैं। ये भारत के प्रथम मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक है। इनको एक्सियोम 4 मिशन में एक स्टैंडबाय मिशन पायलट के रूप में चुना गया था, जहां इन्होंने प्राइमरी मिशन कर्मी दल के सदस्यों के साथ अत्याधुनिक मिशन प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनके प्रशिक्षण में जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, स्पेस वॉक ट्रेनिंग तथा स्पेशलाइज्ड स्पेस फ्लाइट ऑपरेशंस भी शामिल थे। इनके अदम्य साहस एवं असाधारण वीरता के लिए एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। एयर कमोडोर प्रशांत बालाकृष्णन नायर।
2: The proud family, with a round of applause, proudly receiving the Kirti Chakra. This is Group Captain Prashant Balakrishnan Nair, flying captain, flying pilot in the Indian Air Force.
0: Captain Lalrin Omar Silo, Parachute Regiment.
1: और अब विशेष दल 4 पैराशूट के कैप्टन लाला रिनाउ साइलो आमंत्रित किए गए हैं कीर्ति चक्र के लिए।
0: कैप्टन साइलो को श्रीनगर इलाके में एक आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई।

0: घने जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आपने एक संदिग्ध गतिविधि देखी। मिनी आरपीवी द्वारा आपने खतरे का विश्लेषण किया और स्पष्ट रूप से उच्च श्रेणी के एक आतंकवादी की पहचान की। रणनीतिक संयमता दिखाते हुए आपने आतंकवादियों पर सटीक गोलाबारी की। अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए आप भीषण गोलाबारी के बीच आगे बढ़े और एक खूंखार आतंकवादी को नस्ती की मुठभेड़ में मार गिराया। निर्भीकता साहस का प्रदर्शन करते हुए आपने बाकी आतंकवादियों को भी निष्प्रभावी कर दिया। युद्ध कुशलता, अद्भुत बुद्धिमत्ता और स्पेशल फोर्सेस की निपुणता का प्रदर्शन करने के लिए कैप्टन रालरिन ओमा साइलो को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। कैप्टन रालरिन ओमा साइलो।
1: तालियों की कड़कड़ाहट के बीच राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते हुए कैप्टन साइलो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। कैप्टन साइलो को
2: अब शौर्य चक्र मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। लांस दफादार बलदेव चंद आमट कौर, चौथी बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स, मरणोपरांत।
3: एंड नाउ शौर्य चक्र पोस्थमसली, अ वेरी पॉइंटेंट मोमेंट, द फर्स्ट चक्र, शौर्य चक्र गोइंग टू लांस दफादार बलदेव चंद फ्रॉम द आर्मड कोर, कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव हिज वाइफ एंड मदर।
2: लांस दफादार बलदेव चंद 19 सितंबर 2025 को कश्मीर में चलाए गए एक आतंक विरोधी अभियान का हिस्सा थे। सशस्त्र आतंकियों द्वारा अचानक किए गए प्राणघातक हमले के बीच घिरे अपने साथियों की रक्षा के लिए आप हथियारबंद आतंकी पर अकेले टूट पड़े। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए भीषण हाथापाई के बाद इस शूरवीर सैनिक ने आतंकी से विदेश निर्मित पिस्तौल छीनकर अपने कई साथियों की जान बचाई एवं अपने दल को पुनर्गठित किया। सीने में गोली लगने से घायल होने के बावजूद आप आखिरी सांस तक आतंकियों का मुकाबला करते हुए अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लांस हवलदार बलदेव चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिवानी रनौत तथा उनकी पूज्य माता श्रीमती विजय कुमारी।
3: Our honorable president walking towards the martyr's wife and mother to present the Shaurya Chakra posthumously to Lance Dafedar Baldev Chand. Hearts are heavy and overwhelming feeling, but our martyr leaves the family, the near and dear ones, with pride and honor.
2: Ab Veer Chakra Marnoparant pradan kiye jayenge. उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत, कांस्टेबल दीपक चिंगाखम सीमा सुरक्षा बल मरणोपरांत।
1: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज और कांस्टेबल दीपक चिंगाखम की परिवार के सदस्य मरणोपरांत वीर चक्र लेने के लिए इस वक्त माननीय राष्ट्रपति के सामने।
2: उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चेंगखम सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन के दल के साथ जम्मू क्षेत्र में बॉर्डर आउटपोस्ट पर तैनात थे। 7 मई 2025 की पूरी रात सीमा पार से मोर्टर द्वारा की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के बीच उपनिरीक्षक इम्तियाज ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता न करते हुए बंकर से बाहर आकर खतरे का जायजा लिया और अपने साथी कांस्टेबल दीपक चेंगखम के साथ मिलकर अपनी दोनों लाइट मशीन गन्स के प्रभावी फायर द्वारा इसका सटीक जवाब दिया। मोर्टर का एक गोला फटने से शरीर का लगभग हर हिस्सा जख्मी होने के बावजूद आप दोनों ने आखिरी सांस तक मोर्चे पर डटे रहकर अपने दल का निरंतर मनोबल बढ़ाया, जिससे शत्रु के मंसूबों को विफल किया जा सका। उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता, असाधारण साहस तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज तथा कांस्टेबल दीपक चिंगाखम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण करेंगी उपनिरीक्षक मोहम्मद इम्तियाज की पत्नी श्रीमती शहनाज आजिमा।
1: और अब माननीय राष्ट्रपति अपने आसन से नीचे उतरते हुए ये मरणोपरांत पुरस्कार देते हुए
2: दीपक चिंगाखम की पूज्य माता श्रीमती चिंगाखम एवं मन देवी एवं पूज्य पिता श्री चिंगाखम बोविन बिहारी सिंह।

0: ऐसा अवसर है, इतना भावुक अवसर होता है जब शहीद सैनिकों के परिजन राष्ट्रपति के हाथों सम्मान ग्रहण करते हैं और पूरा राष्ट्र उनके बलिदान को नमन करता है।
1: राइफलमैन सुनील कुमार, 4th बटालियन जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, मरणोपरांत।
2: द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ राइफलमैन सुनील कुमार पोस्टमसली कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव द मेडल ऑफ गैलेंट्री वीर चक्र, अ पॉइंटेंट मोमेंट when the entire nation stands beside the family of our great martyr, together sharing their
1: rifleman Sunil Kumar and joy. Sima Suraksha Bal ki 7th battalion ke saath sena ke samanvay tukdi ke roop mein Jammu kshetra ki ek seema chauki par tainat the. 7 mai 2025 seema paar se shatru dwara lagatar ki ja rahi bhari golabari ke beech chauki ki aur badhte dushman ke sashastra payload se utpann khatre ko bhaapte hue ये जांबाज सैनिक निडरता के साथ अपने बंकर से बाहर निकला और अद्भुत रणकौशल का परिचय देते हुए अपनी लाइट मशीन गन के सटीक प्रहार से उस घातक आयुध को निष्क्रिय कर दिया। प्राणघातक परिस्थितियों में इस शौर्यपूर्ण कार्य को अंजाम देते हुए गंभीर रूप से घायल होने के कारण अंततः वो वीर गति को प्राप्त हुए। अटूट कर्तव्य निष्ठा तथा सर्वोच्च बलिदान के लिए राइफलमैन सुनील कुमार को मरणोपरांत वीर चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती सुदेश कुमारी तथा पूज्य पिता श्री यशपाल।
2: Our honorable president gracefully walking forward to the next of kin, the parents of rifleman Sunil Kumar, awarding them the Veer Chakra posthumously. To the proud family saluting the mother for giving birth to such a brave heart.
1: अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत प्रदान किए जाएंगे। सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर महार रेजिमेंट, 1st बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत।
0: और अब कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर के परिवार को। द महार रेजिमेंट एक राष्ट्रीय राइफल्स के है सिपाही।
1: 6 जुलाई 2024 सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखते ही आपने अपने दल को सतर्क किया। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस शूरवीर युवा सैनिक ने अपने प्रभावी फायर से उनके प्रयासों को नाकाम कर दिया। भीषण गोलीबारी के बीच आपने अपनी जगह बदलते हुए सटीक निशाने से 2 खूंखार आतंकियों को मार गिराया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही है उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्यामबाला जंजाल एवं पूज्य माता श्रीमती शालू प्रभाकर जंजाल।
0: कीर्ति चक्र मरणोपरांत दिया जा रहा है सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर की पत्नी को। बहुत ही भावुक क्षण है जब माननीय राष्ट्रपति उनसे गले मिलते हुए गले लगाते हुए उनकी माता को बहुत ही भावुक होते हुए
2: A tearful mother, unable to bear the loss of her son, a great martyr.
1: लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी सेना सेवा कोर 1st सिक्किम स्काउट्स मरणोपरांत।
2: एंड नाउ द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पोस्टमसली फ्रॉम द आर्मी सर्विस कोर कमिंग फॉरवर्ड टू रिसीव द ऑनर इन द फॉर्म ऑफ कीर्ति चक्र for their beloved. Greeting
1: Lieutenant Shashank Tiwari ne 22 mai 2025 ko Uttar Sikkim ke durgam pahadi ilake mein chalaye gaye ek operational gasht ka swechha se netritv sambhala. Gasht ke dauran unka ek agnivir Stephen Subba santulat bigadne se nadi mein ja gira. अपने साथ

0: को नदी की प्रचंड धारा में बहता देख इस युवाधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और नुकीली चट्टानों के बीच विकराल जल प्रवाह से जूझते हुए घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला। लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। अंततः सैन्य धर्म के सर्वोच्च आदर्शों के अनुरूप अटूट बंधुत्व एवं त्याग का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस सर्वोच्च बलिदान के लिए लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है। सम्मान ग्रहण कर रही हैं उनकी पूज्य माता श्रीमती नीता तिवारी तथा पूज्य पिता श्री जंग बहादुर तिवारी।
1: The mother receiving a warm hug from our honorable president, wiping the tears. It's difficult for one and all to hold back the tears. Kirti Chakra posthumously for Lieutenant Shashank Tiwari.
2: राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक वातावरण देशभक्ति सम्मान और गौरव की भावना से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। समारोह अब समापन की ओर बढ़ता हुआ सभी जो और अब रक्षा सचिव माननीय राष्ट्रपति से समारोह समाप्त करने की
3: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी अनुमति हो तो रक्षा अलंकरण समारोह समाप्त किया जाए।
1: And now seeking the permission for a closure, the audience is rising for the national song and the national anthem.

0: Soulful tunes being belted out by the Maha Regimental Center and our Honorable President bowing to the audience with a namaste and slowly, gracefully interacting with the audience and heading towards the grand entrance of the Ganatantra Mandap. Glory, honor, duty and discipline are words which define events like the Defense Investitures Ceremony 2026, Phase 1, which is coming towards a beautiful, soulful, solemn closure. And one is reminded of the Sanskrit Shloka. At the moment, our other dignitaries, our Honorable Prime Minister, interacting with the members, audiences. And one is reminded of this beautiful Sanskrit shloka. Asato ma sadgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityur ma amritam.
1: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: निर्धनजनानां जीवनस्तरे स्वस्य उन्नयने प्रौद्योगिक्याः अपि महत्वपूर्णा भूमिका अभवत।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: अद्य आरभ्य पश्चिम बंगाल राज्ये आयुष्मान प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना प्रवर्तिष्यते। एतेन सा योजना सम्पूर्णेपि देशे कार्यान्विता भविष्यति। स्वास्थ्य सेवा विस्तार दिशि महत्वपूर्णं पदम् इदम्। राज्य सर्वकारः अद्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनायाः कार्यान्वयनार्थं राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन सह दिल्ली नगरे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं करिष्यति। अस्मिन् अवसरे केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा तथा पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी उपस्थितौ भविष्यतः। दिल्ली उच्च न्यायालयेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यस्य द्वादश कक्षायाः उत्तर पुस्तिकानां आंकिक मूल्यांकन प्रणाली विषये जनहित याचिकायां केन्द्र सर्वकाराय तथा CBSE बोर्ड इत्यस्मै सूचना पत्रं निर्गतम्। न्यायमूर्तिद्वयं नीना बंसल कृष्णा तथा मधु जैन महोदयाभ्यां राष्ट्रिय भारतीय विद्यार्थी संघस्य याचिकायाः आधारेण केन्द्र सर्वकारात् CBSE बोर्ड इत्यस्मात् च उत्तरं याचितम्। याचिकायाम् आंकिक मूल्यांकन प्रणाल्याः निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा विश्वसनीयता एषु विषयेषु प्रश्नाः उत्थापिताः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। समम् एव अयं कार्यक्रमः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अद्य अपराह्णे नवदेहली नगरे भारतसभा अभवत्। अस्यां सभायां विपक्षस्य विभिन्नाः नेतारः उपस्थिताः आसन्। अस्मिन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस पार्टी इत्यस्य वरिष्ठः नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी इति दलस्य प्रमुखः अखिलेश यादवः, तृणमूल कांग्रेस पार्टी इत्यस्य अध्यक्षा ममता बनर्जी, वरिष्ठः नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला, NCP SP नेता सुप्रिया सूले च आसन्। सभायाः अनन्तरं प्रसारमाध्यमान् सम्बोधयन् कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे उक्तवान् यत् सभायां 25 राजनैतिक दलानि उपस्थितानि आसन्। सः अवोचत् यत् सभायां विभिन्नेषु विषयेषु चर्चा कृता, सर्वे अपि स्वमतं व्यक्तवन्तः।
2: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारत देशः पश्चिम एशिया क्षेत्रे पुनः प्रवृत्तानां आक्रमणानां विषये गभीरां चिन्तां व्यक्तवान्। विदेश मंत्रालयेन उक्तं यत् एते घटनाक्रमाः अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य कृते अत्यन्तं चिन्ताजनकाः सन्ति। शिला तैल प्राकृतिक इंधन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालयेन उक्तं यत् पश्चिम एशियायां वर्तमान परिस्थितेः अपि देशे शिला रस तैलस्य गृह्य इंधनस्य LPG गैस इत्यस्य तथा प्राकृतिक इंधनस्य आपूर्तिः स्थिरा वर्तते। मंत्रालयस्य अनुसारेण पेट्रोल, शिलातैल, डीजल, पीडज्वालतैल, LPG द्रवीकृत शिलातैल इंधन इत्यादीनां पर्याप्तः भण्डारः देशे उपलब्धः वर्तते। ईरान देशे भारतीय दूतावासस्य परामर्शः ईरान स्थितेन भारतीय दूतावासेन क्षेत्रे वर्तमान तनावपूर्ण स्थितेः कारणात् भारतीय नागरिकेभ्यः ईरान यात्रां परिहर्तुं परामर्शः प्रदत्तः। तत्र वर्तमानाः भारतीय नागरिकाः उपलब्ध यान साधनैः देशत्यागं कर्तुम् अपि सूचिताः। आकाशवाणी सेवायाः 90 वर्ष प्रपूरणम्। प्रसारयति भारतस्य स्वरं विश्वस्मिन्। आकाशवाणी अद्य स्वस्य स्थापनायाः 90 वर्ष पूर्तिम् उत्साहेन आचरति। 36 उत्तर

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारे राम राम, राम। शाहिद भाई
1: जी
0: भाई, रोज की तरह ही आज भी हम अपने सभी बहन भाइयों के लिए अपना ग्राम संसार कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। और भाई आज तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत ही उत्सुकता की बात है, क्योंकि आज है
1: 90 वर्षों की वो यादगार और तमाम चीजें और सारी एक कहानी जो आपके सामने आवाज़ और आपके स्मृति पटल पे जो है ना चलती हुई नज़र आएगी। 90 साल जो आकाशवाणी ने सेवा की है,
0: बिल्कुल
1: वो याद आएगा,
0: वो याद आएगा। और भाई देखिए, आज ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी ने 90 साल आज के दिन पूरे कर लिए हैं। और भाई 8 जून 1936 को अपनी स्थापना के बाद से अपने 90 गौरवशाली वर्ष उन्होंने पूरे किए हैं। और
1: जी, लगातार और सतत हमने जो है कि जनता के हित के लिए ना

0: तमाम तरह की नीतियां हैं, तमाम जानकारियां हैं, वो सतत जो है कि प्रसारित किया, सब तक जन जन तक पहुंचाने की
1: बिल्कुल। और
0: कोशिश की
1: भाई
0: है।
1: हमारी जो आकाशवाणी है, हमारा जो रेडियो है, उसका नारा ही यही है कि बहुजन हिताय
0: बहुजन सुखाय।
1: सुखाए। तो क्यों ना एक परिचर्चा अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाते हैं इस विषय पर। 90 वर्षों की जनसेवा, आकाशवाणी की गौरवशाली सफर जो है ये परिचर्चा, और इसमें जो भाग ले रहे हैं वो हैं चौधरी रघुनाथ सिंह और डॉक्टर रामफल चहल, जो कि
0: पूर्व सहायक निदेशक रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर।
1: तो
0: तो
1: आइए।
0: आइए सुनते हैं ये परिचर्चा।
2: साथियों नमस्कार। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम बेहद सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी बातें हैं, और उन बातों को, उन यादों को ताजा करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है चौधरी रघुनाथ सिंह जी को और डॉक्टर रामफल चहल जी को। आप दोनों पूर्व प्रसारण कर्मी हैं, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे स्टूडियो में हैं। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं।
3: नमस्कार,
4: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
2: चौधरी रघुनाथ सिंह जी, आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप बहुत पहले से यहाँ पर मौजूद थे और आपकी तो बहुत सारी यादें होंगी आकाशवाणी से जुड़ी हुई। तो पहले ये बताइए कि आपने सबसे पहले कहाँ ज्वाइन किया था और किस रूप में ज्वाइन किया था?
3: हाँ, दिल्ली स्टेशन पर जब फार्म एंड होम की स्थापना हुई 1966 में
2: जी,
3: तो पूरे हिंदुस्तान में 10 खोले गए थे और दिल्ली उनमें से एक था। और ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने दिल्ली स्टेशन में काम करने का मौका मिला। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा
2: जी,
3: रेडियो में काम करना उस समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी,
2: गौरव की बात थी और हर कोई चाहता था
3: जी। आज भी मुझे याद है कि मेलबर्न डी मेलो और न्यूज रीडर देवेंद्र पांडे की आवाज आज भी कानों में गूंजती है।
2: बिल्कुल, वो तो हमारे कानों में भी गूंजती है, उनको देखने की इच्छा थी लेकिन हम तो देख नहीं पाए। खैर जी, डॉक्टर रामफल चहल जी, आपकी ज्वाइनिंग कहाँ हुई?
5: मैंने सन 1983 में आकाशवाणी रोहतक पर फार्म एंड होम कृषि एवं गृह कांश में एक सहायक संपादक के तौर पे अपना काम शुरू किया। उससे पहले मैं कृषि विभाग और कई विभागों में था, लेकिन जैसा चौधरी साहब ने कहा कि उस समय ये था कि मैं जिस से आया था वहाँ तनख्वाह ज्यादा थी, उसको छोड़ के मैं आकाशवाणी में आया था।
2: तो यहाँ पर आने का क्या कारण रहा?
5: आने का कारण ये था कि उस समय कलाकार ही आते थे और मैं भी एक राष्ट्रीय स्तर का ड्रामा कलाकार था, तो मुझे एक उम्मीद ये थी कि भाई यहाँ पे हमारा बहुत सुखद सा अनुभव रहेगा, और वो रहा भी।
2: तो यानी कि आपकी जो सैलरी थी वो आपने दरकिनार कर दिया और आपके अंदर जो कला है उस कला को निखारने के लिए, उस कला को लोगों के सामने लाने के लिए आपने ये काम किया। चौधरी साहब, आकाशवाणी में आने से पहले भी कहीं काम किया करते थे?
3: मैं ब्लॉक के अंदर एक्सटेंशन ऑफिसर था और ब्लॉक के अंदर, बल्कि ये समझिए कि बहुत सी बातें जो ग्राम सेवक सूचना किसानों तक देते थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि संचार योजना में, खासतौर से सूचना में, रेडियो सबसे अग्रणी रहा है
2: जी।
3: तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि रेडियो को आज भी क्रांति का पहला कदम माना जाता है। उसमें रेडियो ही था और कोई ना इंटरनेट था ना कोई टीवी था, लेकिन रेडियो ही था और रेडियो की आवाज को लोग इतनी मान्यता देते थे कि भाई आपने कहाँ से सुना है? रेडियो से। यहाँ तक कि घड़ी भी अगर मिलाई जाती थी तो रेडियो से मिलाई जाती थी
2: जी।
3: तो उसकी साख जो थी रेडियो की बहुत ज्यादा थी
2: जी।
3: और आज भी है।
2: तो वो दौर कैसा था जब लोग रेडियो सुनते थे और जब आप यहाँ पर काम करने लग गए, यानी कि आकाशवाणी से आप जुड़ गए, तो उस दौर में रेडियो के प्रति लोगों की किस प्रकार की रुझान होती थी, किस प्रकार का इंटरेस्ट होता था?
3: इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना कि रेडियो की सूचना देने की शक्ति तो थी, लेकिन रेडियो सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक खबरों में उलझा हुआ था
2: जी।
3: कृषि जगत की बात नहीं होती थी।
2: यानी कि जो 1966 में आपने ज्वाइन किया उस समय ही ये फार्म एंड होम की भी स्थापना हुई, तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख करके ही ये फार्म एंड होम की स्थापना की गई थी
3: जी। बिल्कुल, जब फार्म एंड होम की स्थापना हुई तो उन्होंने इस प्रोग्राम को बाजाबता तरीके से शुरू किया गया
2: जी।
3: एग्रीकल्चर प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री का प्रोग्राम और समाज के अंदर कुछ बुराइयों को उछालने के लिए जो भी बुराइयां हैं उनके प्रोग्राम भी होते थे। उससे पहले एग्रीकल्चर के बाजार प्रोग्राम नहीं होते थे।

0: वैसे इसके आने के बाद प्रोग्राम के अंदर एक दौर आया कृषि दर्शन
1: तो
0: का।
1: आपके दौर कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स थे जो कि बहुत लोग सुनते थे और जिसको सुन करके किसान जो है वो लाभान्वित होते
0: इस प्रोग्राम के अंदर कृषि गोष्ठियां, किसान सफल किसानों से भेंट
1: थे?
0: और आदान प्रदान, क्योंकि जब से टेप रिकॉर्डर आया तो ये प्रोग्राम स्टूडियो से लेके खेतों में पहुंच गए और खेतों में किसानों को बात करने की आसानी हो गई, तो उनकी जो समस्याएं थी उनका समाधान खेतों में होने लगा।
1: जी,
0: टेप रिकॉर्डर और फोन इन प्रोग्राम ने तो प्रोग्राम में जान डाल दी।
1: तो चहल साहब, आपने भी फार्म एंड होम से ही आपने भी शुरुआत की। तो चौधरी साहब तो आए थे 1966 में और आपने 80 के दौर में, 80s के दौर में आपने ज्वाइन किया था। उस समय क्या
2: पूरे यौवन पे था आकाशवाणी उस समय। अगर 20वीं शताब्दी में सब क्रांतियों की बात करें तो सबसे बड़ी सूचना क्रांति है, क्योंकि सूचना क्रांति में जितना क्रांति आई है और उसी के माध्यम से फिर हरित क्रांति। सबसे पहला काम रेडियो ने किया कि कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की उनको बुलाया स्टूडियो में और उनसे सीधी बातचीत सुनी किसानों ने, और कृषि अधिकारियों ने भी सुनी। तो वो सीधी जो लैब टू लैंड की बात थी वो रेडियो ने की सबसे पहले, और उसी के माध्यम से जो हरित क्रांति का प्रचार प्रसार हुआ इतनी तेजी के साथ हुआ कि देखते ही देखते रेडियो जो है वो एक जीवन का अहम हिस्सा बन गया।
1: डॉक्टर रामफल ने अभी एक बात कही, हरित क्रांति की बात की, और उसी दौर में आपने ज्वाइन किया था।
0: हरित क्रांति नहीं, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये तीनों का एक दौर था। तो जहां तक हरित क्रांति का सवाल है,
1: जी
0: ये जो श्रेय है रेडियो को जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कृषि विज्ञान ने तो काम किया, लेकिन इसको घर घर तक, गांव गांव तक, गली गली तक पहुंचाने का काम
1: रेडियो ने
0: रेडियो
1: किया।
0: ने किया। और इससे क्या हुआ कि हरित क्रांति से किसानों की दुगनी उपज बढ़ गई, अनाज रखने की जगह नहीं मिली और बाहर से अनाज मंगाना बंद कर दिया। डॉक्टर स्वामीनाथन का कथन है कि फ्यूचर ऑफ द नेशन बिलोंग टू ग्रेन नॉट गन्स। आने वाली संतियों को जो जो भविष्य है वो अनाज पर निर्भर है, ना कि बंदूकों पर।
1: चौधरी साहब, जब ये हरित क्रांति शुरू हुई थी तो आपको उसे फील्ड में जाने का भी मौका मिला होगा, लोगों से बात करने का भी मौका मिला होगा। उस समय लोगों के क्या रिएक्शन थे रेडियो के प्रति और जो हरित क्रांति की जो हमने शुरुआत की थी?
0: हरित क्रांति आने के बाद किसानों की हालत में सुधार हुआ और जहाँ किसान जाते थे वहाँ बड़े खुश होते थे, उनकी उपज दुगनी हो गई। मैं ये कहता हूँ उनको भाव भी अच्छा मिला, और मैं तो बता रहा हूँ कि अनाज मकाने बंद कर दिया, और बाहर का अनाज तो आपको मालूम उस जमाने में कितना गंदा आता था,
1: जी जी
0: लोग उसको पसंद ही नहीं करते थे। जब से ये अनाज पैदा होने लगा तो लोगों ने खाना भी पसंद किया, माली हालत भी ठीक हो गई लोगों
1: जी
0: की।
1: जी चहल साहब, जब आपने 80 के दशक में जब आपने ज्वाइन किया, तब तक तो हरित क्रांति 20 साल लगभग हो चुके थे। तो उस दौर में तो और भी कुछ ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर हम लोग बढ़ चले थे, और खाद्यान्न के क्षेत्र में, चाहे चावल हो, धान हो, गेहूं हो, इन सब के क्षेत्र में काफी आत्मनिर्भर हो चले थे।
2: बिल्कुल हो चुके थे, लेकिन साथ साथ रेडियो ने जो एक अच्छी बात की, जैसे मैंने कहा सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया, इसके साथ साथ जो मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन था। हम क्या करते थे कि एक बात की हमने धान की किस्मों के ऊपर, और फिर एक रागनी सुना दी बढ़िया सी अच्छे
1: जी
2: कलाकार
1: जी
2: से,
1: जी
2: फिर दूसरी बात की हमने कपास के ऊपर, फिर एक रागनी सुना दी। इस तरह से हमारा एक मिला जुला सा प्रोग्राम होता था, एक गुलदस्ता कहिए उसको। उसमें हम मौसम का हाल भी बताते हैं, उसमें बाकी बाजार का भाव भी बताते हैं, और फिर धीरे धीरे हमने रेडियो कृषि शिक्षा एक फसल को लेकर और लगातार सप्ताह में, यानी कि जमीन की तैयारी से लेकर और बिक्री तक उसकी, जैसे आकाशवाणी रोहतक की बात करूं तो हमने धान के ऊपर, कपास के ऊपर, गन्ना के ऊपर, गेहूं के ऊपर रेडियो कृषि शिक्षा के प्रोग्राम चलाए। इसके अलावा जो कलाकार हमारे बहुत प्रसिद्ध थे, स्टॉक करेक्टर, जैसे मैं किशन भाई के उसमें था, तो हम पूरी टीम को लेके गांव में जाते थे और वो अपना ड्रामा भी करते थे, रागनी भी सुनाते थे, डांस भी करते थे, तो उससे लोगों का और जुड़ा हुआ। जैसे आपने कहा खेत में हम हफ्ते में एक प्रोग्राम ओबी रिकॉर्डिंग उसको बोलते, स्थल रिकॉर्डिंग पर
1: जी।
2: आधारित।
1: तो
2: इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम हमने किया वो फोन इन के माध्यम से, मुझे सौभाग्य मिला, जैसे चोई साहब ने कहा कि कृषि एवं गृहकांश में पहले व्यक्ति थे, मैं पहला व्यक्ति था जिसने आकाशवाणी रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार से पहले फोन इन किए,
1: अच्छा।
2: और फोन टेलीफोन के माध्यम से जो भी आपके प्रश्न हो उसके उत्तर हम देंगे। और जैसे आप बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसी तरह से कि बिल्कुल तकनीकी ज्ञान सही हो लेकिन भाषा इतनी सरल हो कि आम आदमी तक वो पहुंच सके। अगर हम बहुत विशुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करेंगे तो हरियाणा, दिल्ली और इसमें बहुत कम लोग, जुड़ाव नहीं होता, अपना अपना आता अपनी बोली से, अपनी भाषा से, अपनी स्थानीय शब्दों से। तो वो हमने उसी भाषा में तकनीकी ज्ञान को सही रूप में, सरल भाषा में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही हो लेकिन भाषा इतनी सरल हो कि आम आदमी समझ सके।
1: तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदल गया है, डिजिटल युग आ गया है, तकनीकी जो

0: जो सुविधाएं हैं वो भी बदल गए हैं, तो उस हिसाब से रेडियो भी बदला है,
1: जी
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, जमाने के साथ अगर हम नहीं बदलेंगे तो पिछड़ जाते हैं, क्योंकि बैक गियर में गाड़ी बहुत देर नहीं चलती।
0: जी
1: तो उसके साथ साथ बदलाव रेडियो में भी आया, FM हमारा बैंड आ गया गाड़ियों में आजकल, फिर थोड़े से दिन चले वो दूसरे प्राइवेट रेडियो, लेकिन अब फिर हम वापिस जो है ना FM बैंड पे, यानी कि वही कार्यक्रम जो आकाशवाणी से होते हैं उन्हीं को सुनते हैं और उन्हीं पे विश्वास करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा असली बात यह है कि आपकी विश्वसनीयता क्या है। हमारी विश्वसनीयता आज भी देखिए 99% लोगों तक, 98% एरिया में, 400 से ऊपर स्टेशन जो है दिन रात पता नहीं कितनी भाषाओं में, बोलियां तो सैकड़ों में प्रसारण करते हैं, और वो प्रसारण ऐसा होता है जो देश हित में होता है, समाज हित में होता है, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी तरह की बातें करता है। हम देहाती प्रोग्राम की बात कर रहे थे, देहात में हम देहाती महिलाओं के भी कार्यक्रम करते हैं, देहाती बच्चों के भी करते हैं, किसानों के भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, और बाकी की जो फिल्मी गीत हैं, दूसरे गीत हैं, नाटक हैं, और रेडियो का एक सबसे बड़ी जो देन रही वो रही रेडियो फीचर, यानी कि आप बाहर जाएंगे वहाँ के हालात का तबसरा करेंगे, पूरा देखेंगे, लोगों को रिकॉर्ड करेंगे और अपनी आवाज़ देके, जैसे हम कपड़ा दे देते हैं तो टेलर उसको बटन लगाता है और चेन लगाता है और फिर वो ड्रेस बनती है, तो रेडियो फीचर एक ऐसा रेडियो का रूपक जो है वो एकमात्र ऐसी विधा जो केवल रेडियो ने दी, और वो सबसे सशक्त माध्यम एक बार रही रेडियो फीचर जो था। उसमें जाके खेत में या जहां भी जाते थे किसी संस्थान में, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान पर हमने किया, कृषि विश्वविद्यालय पर हमने किया, और यहाँ आपका पूसा इंस्टीट्यूट पर हमने प्रोग्राम किए, तो वो जाके पूरा उनसे बातचीत करके जो स्थानीय वैज्ञानिक हैं या दूसरे एक्सपर्ट हैं उनसे अपनी भाषा में उनको करके तब हम प्रसारित करते थे।
2: एक बहुत बड़ी बात जो फार्म एट होम ने किया है, पहले जो मौसम की जानकारी हम देते थे
0: जी,
2: वो सिर्फ मौसम की जानकारी थी, फार्म एट होम की वजह से और कृषि विज्ञानों के सुझाव की वजह से इसका नाम रखा एग्रोमेट, जो कृषि से संबंधित बात की जाए। इससे पहले तो खेती की बात वो कहते थे कि भैया मौसम की बात कहकर चले गए, लेकिन उसके फसल के साथ क्या संबंध है वो स्टार्ट हुआ।
0: तो उस समय कौन से ऐसे प्रोग्राम थे जिसमें कि किसानों ने तवज्जो दी और लोगों ने उसको बहुत ज्यादा सराहा भी, कोई ऐसे प्रोग्राम है जिसे आपको याद है?
2: एक तो नई फसलों की बात हुई, जो पुश्तैनी फसलें थी उनकी जगह नई फसलें, जिससे कि किसान को ज्यादा फायदा हो, फूलों पर जोर दिया गया
0: जी,
2: जो थोड़े समय पे तैयार हो जाती है और बाजार में भाव भी अच्छा मिलता है। इसी प्रकार अच्छे पशुओं की नस्लों को लाने के लिए, क्योंकि आज भी सीमांत किसान खेतिहर मजदूर पशुओं पर ही निर्भर करते हैं
0: जी, हाँ,
2: उनकी
0: जी।
2: रोजी रोटी जो है पशुओं पर है, तो अच्छी किस्म की साहीवाल गाय, मुर्रा भैंस आपके यहाँ बड़ी मशहूर है
1: जी,
2: रोहतक में, इन नस्लों को प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए हमने विज्ञानों को बुलाया, ताकि किसानों को बढ़िया किस्म की नस्लें प्राप्त हो, दूध में बढ़ोतरी हो और उनकी आमदन बढ़े
0: जी। चौधरी रघुनाथ जी, जैसे कि हम चहल साहब से अभी बात कर रहे थे, हम जानना चाह रहे थे कि आज जो डिजिटल युग है, आपके दौर में कुछ अलग था, किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं कि आज का जो बदलाव हुआ है?
2: किसानों की पहुंच में आ गए सब प्रोग्राम
0: जी,
2: जो भी प्रोग्राम करते हैं
0: जी।
2: वैसे बताया भी डॉक्टर आपन ने, बड़ी रेडियो वो नहीं जाता था, जब से ट्रांजिस्टर आ गए आदमी हल भी चला रहे हैं और वो भी टका हुआ है, तो ये कितना बदलाव आया टेक्नोलॉजी में,
0: बहुत बदलाव आया, अब तो हर जेब में हर पर्स में मोबाइल ही मोबाइल है जी।
1: एक जो बात कर रहे हैं आप, वो दूसरी बात ये भी है साथ के साथ कि रेडियो में जो बदलाव आया है ना, वो ये भी आया है कि हम अब जो कार्यक्रम करते हैं ना, वो भी उसी तरह के करते हैं। पहले हमने पेट भरने की चिंता थी, इसलिए हरित क्रांति की बात की, आज हमारी समस्याएं और हैं कि जो कीटनाशी हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उससे बीमारियां बहुत फैल रही हैं, तो वो भी हम बात करते हैं कि भाई इतनी मात्रा में इस्तेमाल करें, सुरक्षित इस्तेमाल करें दवाइयों का, IPM जो बोलते हैं इसको, कि भाई अब जो खाद का इस्तेमाल करना है संतुलित मात्रा में करना है, तो हम उल्टे गियर में भी चलना पसंद करते हैं, क्योंकि जब जरूरत थी तब तो अनाज की जरूरत थी हमें, पेट भरने की जरूरत थी, अब हम क्वालिटी की बात करेंगे, क्वांटिटी की बात हमने बहुत कर ली, अब पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं दवाइयों के सुरक्षित इस्तेमाल की, खाद के सही इस्तेमाल की, तो वो भी बात रेडियो करता है, यानी कि जो जरूरतें जिस हिसाब से बदलाव आया समाज में उसी हिसाब से हमने भी अपने कार्यक्रमों में बदलाव किया, और हम खुल के बात करते हैं, कभी हम कहते थे भाई यूरिया डालिए, कभी हम कहते भाई NPK डालिए, आज हम कहते संतुलित मात्रा में डालिए, आज हम कहते कीड़ों की दवाई तो डालिए, लेकिन उस समय डालिए जब 10 दिन का अंतराल हो आपकी सब्जी तोड़ के खाने के लिए भेजने में और दवाई के छिड़काव में
0: जी। अच्छा, उस समय जो श्रोताओं के साथ जो संबंध थे, बड़ी आत्मीयता होती थी और आज भी आत्मीयता है, लोग श्रोता जो है हमसे जुड़ते भी हैं, और वो दौर था जब पत्रों के जरिए उस समय बातें अपनी आदान प्रदान होती थी,
1: अब टेलीफोन से करते हैं,
0: टेलीफोन से करते हैं,
2: नहीं तो जान डाल दी प्रोग्राम में
0: जी।
2: अच्छा, जहाँ तक आप अभी डॉक्टर राम बता रहे थे, रासायनिक खादों के लगातार इस्तेमाल से हमारी जमीन जो है उधर हो गई है, काफी नुकसान है, तो उसके साथ हमने कहा हरी खाद का इस्तेमाल करो, हरी खाद और फसलों का चेंज करो, बदलते रहो फसलों को, एक जगह एक ही फसल ना करो। जहाँ पानी की कमी है उसी तरह से, जहाँ चावल में पानी की बहुत ज्यादा जरूरत, पंजाब वालों ने भी कहा दूसरी फसल को जहाँ पानी की कमी है चावल छोड़ दो और चीज को।
1: चौधरी साहब मुझे याद है कि हम रेडियो प्रोग्राम करते थे, एक बार हरियाणा में शुरुआत हुई कि मार्च में धान की रोपाई करके और जुलाई में काट लेते थे और जुलाई में बासमती की रोपाई कर देते थे और बड़े खुश होकर हम कार्यक्रम करते थे। फिर लगा कि भाई पानी कितने नीचे चला गया चवा, तो फिर उसको बंद करवाया। अब उल्टी पब्लिसिटी करने की कि एक ही फसल लेंगे, सरकार ने भी पाबंदी लगाई तब जाके वो दो फसल धान की लेना बंद किया। तो इस तरह से समाज के जो भी हित में है, किसान के जो भी हित में है, तो उसके लिए स्वस्थ मनोरंजन, तकनीकी ज्ञान और सही सूचना सही समय पर कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक लोगों तक रेडियो ने पहुंचाई है और हम उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य बहुत ही सुरक्षित रहेगा और ये पहुंचाता रहेगा।
0: जी, जो सांस्कृतिक विरासत है उनको संजोने में रेडियो ने किस प्रकार की भूमिका निभाई है?
1: और कोई साधन ही नहीं बचा था हमारे पास। जितने अच्छे कलाकार थे हम उनको बुला के और उनसे सांग हमने करवाए हैं। आकाशवाणी दिल्ली भी सांग करवाता है, हमने भी बहुत सारे सांग रिकॉर्ड करवाए। और जो महिलाओं के गीत जैसे मैंने बताया, बच्चों के गीत जैसे, बच्चों को बालक मंडली में बुलाते थे, तो पूरी जो सांस्कृतिक विरासत है उसको संजोने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इतनी बड़ी हमारी लाइब्रेरी है, हमारे केंद्र पे इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जो शायद ही किसी संस्था के पास हो, और ये डिजिटल लाइब्रेरी बन गई अब तो
0: जी,
1: तो वो बहुत बड़ी विरासत हमारी।
2: आज तक जो थे राजा महाराजा है उनको देखते थे संगीतकारों को, उनके बाद अगर उनको देखभाल की है तो रेडियो ने की।
1: रेडियो ने की,
0: बहुत बड़ी बात की है कि जो भी देखभाल किया, जो सांस्कृतिक सामाजिक विरासत को जो संजोने का जो काम किया है वो रेडियो ने किया हुआ। चहल साहब, चलते चलते जो हमारे जो सुनने वाले हैं, जो आपको पहले सुन चुके हैं और अभी जो नई पीढ़ी है सुनने वाले हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको यही कहना चाहेंगे कि भाई जो हम कम से कम समय में अधिक से अधिक और बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं वो रेडियो देता है, और उससे अपना स्नेह बनाए रखें। बुजुर्ग हमारे आशीर्वाद देते रहे और बच्चे हमारे साथ ये सोच के चलें कि हम जो बात करते हैं सीधी सच्ची और सटीक करते हैं।
0: रघुनाथ सिंह जी, आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? और रेडियो से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी का सबसे बड़ा योगदान तो यही है, ये घर घर तक पहुंच चुकी है, तो जो कुछ भी प्रोग्राम आकाशवाणी द्वारा सुने जाते हैं उनको अमल में लाए ताकि उनकी जिंदगी में सुधार आए और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए।
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, आकाशवाणी ने 9 दशकों में विश्वास, विश्वसनीयता और जनसेवा की जो परंपरा स्थापित की है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। बदलती तकनीक और नए संचार माध्यमों के बीच भी आकाशवाणी की ये गौरवगाथा भारतीय जनमानस में सदैव जीवंत रहेगी। डॉक्टर रामफल जी और चौधरी रघुनाथ सिंह जी, आप दोनों ने वक्त निकाला, अपने यादों को अपने ताजा किए, अपने श्रोताओं के साथ बांटा, हमारे साथ बांटा, आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
3: शाहिद भाई, ये एक परिचर्चा अपने आप में, देखिए पूरे 90 वर्षों की गाथा इस रेडियो से, आकाशवाणी से जुड़ी, भाई एक परिचर्चा पूरी, मतलब संपूर्ण परिचर्चा जिसे हम कह सकते हैं कि अपने आप में कह गई,
4: दे दी,
3: बिल्कुल
4: ये बता दिया। और हकीकत में कि हमारी ये जो बहुदंदी संस्कृति है ना, कई रंगों का गुलदस्ता है ना, इसको पिरोने का, सजाने संवारने का, संस्कृतियों को जोड़ने का और पोषने का जो काम रेडियो ने किया है,
3: शायद ही,
4: हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई अब कर भी नहीं सकेगा,
3: नहीं कर सकेगा। और जो रेडियो ने करा है, आकाशवाणी ने जो कर दिखाया है इन 90 सालों में, वो एक काबिले तारीफ है। तो भाई, अभी हमारे सभी भाई बहन, सभी श्रोता सुन रहे थे ये परिचर्चा, 90 वर्षों की जो जनसेवा है आकाशवाणी द्वारा किस प्रकार से की गई है, और एक गौरवशाली हमारा ये सफ़र रहा है। और इस परिचर्चा में जो भाग लिया वो थे डॉक्टर रामफल चहल और चौधरी रघुनाथ सिंह जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे कमल किशोर। तो भाई, क्यों ना चलते चलते अपने सभी बहन भाइयों का मनोरंजन भी करवाते हैं।
4: जी हाँ, और आइए अब सुनवाते हैं राजेंद्र जाटव से ये रागनी।

0: तो शायद भाई अभी हमारे सभी भाई बहन सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज़ में ये रागनी, और किस्सा था महाराणा प्रताप का।
1: जी, आपने देश की संस्कृतियों, परंपराओं और विरासत को, खास तौर से वीरता की विरासत को जो है कि बड़े सलीके से, बड़ी सुंदरता से जो है कि बताने की
0: बयान किया
1: कोशिश
0: है
1: की
0: ना।
1: है। जी हाँ,
0: तो देखिए अब भाई चलने का समय हो गया है, और हमारा जो आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम है यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम।
0: राम।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
4: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस न्यू मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है।

सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भाई बहनों को हमारे
1: राम
0: राम राम।
1: पायल बहन, देखिए मौसम काफ़ी बदल गया है।
0: बिल्कुल,
1: गर्मी इस कदर बढ़ी है कि जिंदगी जो है ना बेहाल है।
0: बिल्कुल भाई, एक तरह से
1: और हमारे किसान भाई जो है उनकी कोई भी क्रियाकलाप हो, कोई एक्टिविटी हो, वो बिना खेतों में गए हो ही नहीं सकती है। खेत, बाग, बगीचे, उनके खलियान, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनके पशु जो हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ से जुड़ के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बिना ना तो हमारी खेती चल सकती है और ना ही जो है कि और कई बहुत सारी दूसरी चीज़ें, जैसे हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं, वो सीधे उससे जुड़ा हुआ है। तो ये तापमान जो बढ़ रहा है, इसके कई वजह हो सकते हैं, लेकिन हम आज बात ये करना चाहेंगे कि कैसे हमारे भाई बहन, ख़ासतौर से गांवों के लोग, कैसे अपनी खेती बाड़ी और तमाम चीज़ों को सुचारू रूप से चलाते हुए मौसम से बचें।
0: बिल्कुल, देखिए बात आपने मौसम की करी है, और देखिए जो खेत खलियान का काम है शाहिद भाई, वो बहुत ज़रूरी है कि भाई समय समय पर आप हर चीज़ का जो है भाई निरीक्षण करते रहें, आते जाते रहें, देखते रहें। और खेतों में तो देखिए निराई का, गुड़ाई का, खरपतवार का, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, छोटे छोटे काम जो हमारे किसान भाई बहनों को करने पड़ते हैं। तो ऐसे में तो भाई हम एक चीज़ तो ज़रूर कहेंगे कि भाई इस गर्मी में अपना ख्याल रखें, अपने पशुओं का ख्याल रखें। और जैसी ही आपने बात कही है दुग्ध क्रांति की, श्वेत क्रांति की, तो भाई हमारे सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे कृषि की जोत कम होती जा रही है, ऐसे में आबादी बढ़ती जा रही है, ऐसे में जो मुनाफा है किसान का
1: वो
0: घट रहा है। तो ऐसे में हमारे किसान भाई, और भी
1: खेती की बात आप कर रही हैं, वो बिल्कुल सही कर रही हैं,
0: बिल्कुल। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने पशुपालन की बात कही है, पशुपालन के साथ साथ मत्स्य पालन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी कर सकते हैं।
1: एक और बड़ी चीज़ है कि अपने मतलब इस ऐसे मौसम, हार्ड मौसम से बच के, विपरीत मौसम से बचते हुए हम जो है कि मशरूम की खेती है और इस तरह की बहुत तरह की वनस्पतियाँ हैं ना, उनकी खेती कर सकते हैं जो औषधि काम में आती हैं। तो इस पे हमारे किसान भाई जो है कि थोड़ा सा ध्यान दे के ना, मौसम से बचते हुए अपनी आय को सतत रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, आय बढ़ा सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें कर भाई, जैसे कि नमी वाले तापमान में आप मशरूम की खेती कर सकते
1: जी
0: हैं। तो आज इसी बात में हम एक बातचीत सुनवाते हैं अपने सभी बहन भाइयों को, गाँवों में मशरूम का उत्पादन जो है
1: उसकी क्या संभावनाएं हैं ना। इस पे बातचीत जो है कि कर रहे हैं डॉक्टर भारत सिंह, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं शिकोहपुर गुरुग्राम के।
0: तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
2: साथियों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कार्यक्रम में प्रत्येक दिन कोई ना कोई ऐसी जानकारी अवश्य आपके लिए लेकर के आते हैं जो हमारे लिए जागरूकता होती है, आमदनी का जरिया होती है और कहीं ना कहीं खेतों और खलियानों को खिलखिलाने का अवसर देती है। आज हमारे युवा साथी जो हम पारंपरिक कृषि कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, यदि हम देखें कि उससे अलग भी कुछ ऐसी फसलें हैं, ऐसे कृषि उत्पाद हैं जिनका बाजार में भाव बहुत अधिक रहता है, तो क्यों ना हम भी उनकी ओर अग्रसर हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि गाँव में मशरूम उत्पाद की संभावना। इस विषय पर विशेष जानकारी लेकर के हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर भरत सिंह। आप वैज्ञानिक हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के गुरुग्राम स्थित कृषि विज्ञान केंद्र से। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
3: नमस्कार
2: जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आज का विषय है मशरूम को लेकर के, तो जो हम ग्रामीण अंचल में आज भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम नई फसल की बात करते हैं, नई कृषि की बात करते हैं, तो हमारे किसान भाई बहन हो या हमारे जो युवा साथी हैं वो हो, एक झिझक होती है, उसे पैर पीछे खींचते हैं कि कहीं घाटा ना हो जाए। तो आज इन सब बातों पर स्पष्ट चर्चा रहेंगे कि गाँव में मशरूम उत्पादन की संभावना। तो हमारे जो ग्रामीण युवक हैं, हमारे किसान भाई बहन हैं, मशरूम की खेती में कैसे संभावना देख सकते हैं ग्रामीण स्तर पर?
3: देखिए, मशरूम की खेती करने के लिए हमारे किसान भाइयों को एक तो बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, इसमें सुनिश्चित एक निश्चित आमदनी का साधन भी मशरूम की खेती को हम कह सकते हैं। तो जहां तक आपने झिझक वाली बात कही, तो झिझक वाली इसमें कोई ऐसी बात है नहीं, क्योंकि हमारे जो युवा हैं और हमारे किसान भाई हैं, मशरूम की खेती करने से पहले एक प्रशिक्षण जरूर लेंगे। अगर प्रशिक्षण ले लेते हैं किसी भी सरकारी संस्था से या राज्य सरकार के बागवानी विभाग हैं या और कोई भी संस्था है वहाँ से, तो प्रशिक्षण के बाद में मशरूम का कार्य की शुरुआत करेंगे तो इसमें उनकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और फिर इसमें कोई भी उनके लिए रिस्क वाली बात तो सामने आएगी ही नहीं।
2: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रशिक्षण से लेकर के शुरू करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो नुकसान है वो नगण्य हो जाता है, अच्छा लाभ मिलता है। तो प्रशिक्षण के लिए हमारे साथी कहाँ संपर्क कर सकते हैं जो मशरूम के लिए कि उन्हें प्रशिक्षण चाहिए, तो कैसे उनकी पहुँच वहाँ तक हो सकती है?
3: हमारे किसान भाई जो हैं अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में देश के लगभग प्रत्येक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। उसके साथ ही उनका जो जिला बागवानी विभाग है तो वहाँ जाकर के भी संपर्क करेंगे, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है कि जो बागवानी विभाग हैं वो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम मशरूम के लिए आयोजित करते हैं, साथ में कृषि विज्ञान केंद्र भी जो है मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम की खेती को सिखाने के लिए अपने युवाओं के लिए साल भर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, तो वहाँ प्रशिक्षण के लिए जाएं। या फिर उनके और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है सोलन में, वहाँ पूरे देश के किसान भाई वहाँ से जाकर के भी प्रशिक्षण लेते हैं, तो प्रशिक्षण की कोई किसानों के लिए मुश्किल नहीं है, वहाँ से प्रशिक्षण आसानी से प्राप्त करके मशरूम की खेती को वो अपना सकते हैं।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि प्रशिक्षण भी ले लिया और हम कार्य शुरू करना चाहते हैं तो अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है सभी को, अगर कोई भी हम नया काम करेंगे तो पैसे की बड़ी दिक्कत है, कहीं ये लगेगा कि भाई आरंभ हम कार्य कर रहे हैं तो इसमें कितना खर्चा आ जाएगा, कुछ मैं बचा पाऊंगा या नहीं पा, तो इसमें कितना खर्चा शुरू में हो सकता है कि अगर हम कोई कार्य शुरू करें?
3: मशरूम की खेती का कार्य करने के लिए दो तरह का प्रक्रिया करनी होती है, जैसे कि अगर हमारे किसान भाई प्रशिक्षण के बाद में उच्च तकनीकी युक्त मशरूम का घर बना रहे हैं तो उसके लिए बागवानी विभाग की योजनाएं हैं, उसमें 24 लाख रुपए से लेकर के 40-50 लाख रुपए तक का भी उनको एक अनुदान राशि का भी उसमें प्रावधान है, लेकिन उसके लिए प्रशिक्षण बहुत मस्ट है। जब प्रशिक्षण ले लेंगे तो तभी वो अनुदान राशि, क्योंकि उसके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

0: अगर हमारा एक साधारण किसान भाई हैं जो कि इतना बड़ा अनुदान नहीं लेना चाहते हैं या किसी कारणवश वो ले नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हमारे किसान भाई कम लागत से भी मशरूम का घर, जिसको गांव के स्तर पर झोपड़ी कहा जाता है, एक साधारण सी झोपड़ी बना करके जिसका साइज हमारे किसान भाई अपनी उपलब्ध जगह के आधार पर निर्धारित कर सकते हैं, जैसे कि 15 फीट 20 फीट चौड़ा है और 30-40 फीट लंबाई वाला आकार का कहीं भी उनके घर के आसपास में खाली जगह पड़ी हुई है या उनके पास में अतिरिक्त कोई कमरा है, बरामदा है, उसके अंदर भी वो मशरूम का घर बना करके, क्योंकि इसमें ये देखा जाता है कि खुली जगह पर मशरूम की खेती हम नहीं कर सकते हैं,
1: जी
0: उसके लिए उसको पूरा बंद करना पड़ेगा। और बंद करने के लिए चाहे साधारण सी घास फूस की टाटी, धान का पुआल है या सरगंडा का जो फूस होता है, उससे भी हमारे किसान भाई एक कम लागत में मशरूम का घर तैयार कर सकते हैं। फिर उस मशरूम घर के अंदर में लगभग 2-2.25 फुट की अंतर पर अलग अलग रैक्स क्रिएट किए जाते हैं, जहाँ पर हम मशरूम के बैग या मशरूम का जो खुला सिस्टम है उसके आधार पर भी बेड बना करके उसके अंदर कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक अगर 15 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा एक मशरूम का घर बना लिया, उसमें 6 तह वाला रैक बना लिए,
1: जी
0: तो उसमें लगभग जो है 500 तक आराम से मशरूम के बैग आ जाते हैं। उनको बैग को रख करके हमारे किसान भाई उसमें मशरूम की खेती को सुचारू रूप से कर सकते हैं।
1: यानी कि ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि केवल 15 फिट से 20 फिट के कोई भी एक कमरे में हम ये शुरू कर सकते हैं। तो इसमें खर्चा अपने ऊपर, यानी कि
0: अपने
1: जितना
0: ऊपर
1: आप
0: है
1: बड़ा
0: खर्चा।
1: काम करना चाहते हो उतना अधिक खर्चा, लेकिन अधिक में कहीं ना कहीं सरकार भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, वो अनुदान के रूप में आपकी सहायता निश्चित रूप से करती है। अब बात आती है, जैसे आपने कहा कि हमने मशरूम का घर बना लिया, कोई कमरा है या कोई झोपड़ी है, लेकिन अब उसमें जो आवश्यकता होगी, जो कंपोस्ट है, के लिए क्या कुछ हमारे किसान भाइयों को करना पड़ेगा?
0: मशरूम के लिए मुख्य तौर पर इसमें तीन जो सामग्री हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे मशरूम के लिए कंपोस्ट बनाना, ये जो एक प्रकार की खाद होती है, तो जिसको हम मशरूम की कंपोस्ट कहते हैं। दूसरा है मशरूम का बीज।
1: जी
0: तीसरा है मशरूम के लिए केसिंग सामग्री। तो ये तीन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो मशरूम का बीज है, नियर बाई कहीं ना कहीं जिला स्तर पर कोई इकाई होगी, मशरूम बनाने वाली कोई प्रयोगशाला होगी, तो वो आराम से उन जिले के अंदर ही या आसपास कोई विभाग है, बागवानी विभाग है,
1: जी
0: जहाँ भी हमारे किसान भाई रहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पर बीज मिलने की संभावना होती है। अब इसमें बाकी जो दो सामान है, चाहे मशरूम की कंपोस्ट है या फिर केसिंग सामग्री है, इसको हमारे किसान भाई आराम से अपने फार्म पर जो उत्पादित जो अवशेष हैं, फसलों के अवशेष हैं और पशुओं का जो गोबर है, उसकी खाद है और जो गेहूं का भूसा है, उसी से सारे सामान आसानी से तैयार हो जाते हैं। जब हमारे किसान भाई किसी प्रशिक्षण में जाते हैं, तो प्रशिक्षण के दौरान उनको सारी प्रक्रिया समझा दी जाती है कि इसमें कंपोस्ट बनाते समय कितनी कितनी मात्रा में, बहुत सारे कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जैसे गेहूं का चोकर है, यूरिया है, जिप्सम है, म्यूरेटा पोटाश है, उनको भी एक निर्धारित मात्रा में उसमें कंपोस्ट बनाते समय समायोजित किया जाता है। और लगभग 28 से 30 दिन की प्रक्रिया में और कम खर्चे में, इसके लिए कोई किसी प्रकार के उच्च तकनीकी युक्त घर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कंपोस्ट आराम से बना सकते हैं। लगभग कंपोस्ट में 6 से 8 पलटाई करनी होती है 3-3 दिन के अंतर पर, और फिर वो हमारी कंपोस्ट तैयार हो जाती है। ये प्रक्रिया शुरुआत में थोड़ा सा एक किसान के लिए को मेहनत ही कह सकते हैं, लेकिन एक साधारण सी मेहनत है, इसमें कोई विशेष वो बात नहीं है।
1: जी डॉक्टर साहब, जब बात आती है कि मशरूम के लिए कंपोस्ट भी तैयार है, बीज भी मिल गया है और हमने लगा दिया, तो यह फसल लगभग कितने दिन की हो?
0: ये फसल लगभग ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की फसल होती है। एक बार अगर मशरूम आपने लगा दिया, मशरूम के घर में मशरूम आना शुरू हो गया, तो देखा तो ये आता है कि उसमें 3 या 4 बार ही अच्छा फ्लस आता है। फ्लस का मतलब अच्छी तरह से फसल का बूम आता है, तो 3-4 बार में मशरूम का अधिक से अधिक प्रोडक्शन जो है वो मिल जाता है। उसके बाद में मशरूम का जो फसल है ना, वो थोड़ी कम आने लगती है। तो अगर किसान भाइयों के पास में टाइम है, तो कम रूप में भी फसल को लेते हुए फिर अपनी फसल को आखिरी की तरफ ले जा सकते हैं,
1: जी
0: या उनको फिर मौसम अगर अनुकूल है और नई फसल लगानी है, तो हमारे किसान भाई जो है उस घर को फिर खाली करके फिर उसमें दूसरा अजीब क्रॉप उसमें लगा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि सामान्य फसलों में कीट की और रोग की बड़ी एक समस्या है, तो क्या मशरूम के उत्पादन में भी या मशरूम की फसल में भी ये कीट और रोग प्रबंधन पर हमें क्या ध्यान देना होगा, ये आते हैं या नहीं आते?
0: मशरूम की खेती में कीड़े और रोग भी आते हैं, लेकिन उसके आने की बजाय मुख्य रूप से यही होती है, अगर मशरूम घर के अंदर में अच्छी तरह से साफ सफाई है, कंपोस्ट को आपने ठीक तरीके से बनाया है, उसमें आवश्यक सामग्री को सही ढंग से समायोजित किया है, तो उसमें कीड़े और पतंगों की आने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। कई बार ये देखा जाता है कि हमारे जो किसान भाई है ना, मशरूम घर को पूरी तरह से बंद कर देते हैं, उसमें एयरेशन नहीं होता है, ताजा हवा नहीं उसमें जाती है, तो उस स्थिति में उसमें फिर कोई भी समस्या, बीमारी है, वायरस वाली है या बैक्टीरिया वाली बीमारी आ जाती है।

0: या उसमें माइट है या दूसरे जो मक्खी हैं वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जब इसमें कोई मशरूम के घर के अंदर का मौसम सही नहीं होगा तभी ये समस्या आती है। तो वो समस्या नहीं आए उसके लिए हमारे किसान भाइयों के लिए साफ सफाई का मशरूम घर के अंदर में विशेष ध्यान रखना है। कोई किसी प्रकार का अंदर में धूम्रपान नहीं करना है, कोई किसी प्रकार की अंदर में गंदगी नहीं छोड़नी है, गंदे पैरों से अंदर में नहीं जाना है और गंदे हाथों से कोई भी मशरूम के कार्य को, फसल की कटाई को नहीं करना है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए कि जब भी मशरूम के घर में जाएं उससे पहले आप अच्छी तरह से अपने हाथों को साफ कर लें, पैरों को साफ कर लें और अंदर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर मशरूम तोड़ते समय मशरूम की खाद है, मशरूम के कोई भी प्रोडक्ट है वो जमीन पर नीचे गिर जाता है तो अंदर में उसको एक अलग से वहां पर सफाई का ध्यान रखें, अंदर में कोई झाड़ू भी लगानी पड़ती है। तो मशरूम घर के अंदर में उसी कार्य के लिए एक झाड़ू अलग से होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है अपने किसान भाइयों के लिए, क्योंकि कीड़े बीमारी उसमें तभी आएंगे जब हमने सावधानी प्रॉपर बरती नहीं है। तो अगर कीड़े बीमारी इसमें आ जाते हैं तो फिर उसमें हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं उसमें किसी प्रकार के कीटनाशक का छिड़काव करते हैं। तो तैयार फसल पर कोई किसी प्रकार के कीटनाशक के छिड़काव की मैं सिफारिश नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक दिन के बाद मशरूम की तुड़ाई होती है और मशरूम का जो फल उसमें 90% पानी की मात्रा होती है
1: जी
0: तो उसमें कीटनाशक अवशोषित हो जाते हैं। वो फिर ऐसा मशरूम मार्केट में जाता है वो हमारे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी बोल लाभदायक नहीं होता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने अगले प्रश्न को यहाँ जन्म दे दिया कि उपभोक्ता और मार्केट। हमारे किसान भाई बहन मान लीजिए कि वो खेती कर रहे हैं और आपकी दी हुई सलाह के कारण उनका उत्पादन भी अच्छा हो रहा है, तो अब इसमें वो अपने लिए कैसे बाजार आसानी से चुने कि उन्हें उपभोक्ता मिले और अच्छा उत्पादन जो है वो बाजार तक जाए और उनकी जो कहीं ना कहीं आमदनी है वो बढ़ जाए।
0: देखिए हमारे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मशरूम का बहुत ज़्यादा विशेष चलन है। नंबर वन पर तो बटन मशरूम आती है जिसको हम श्वेत खुम्भ भी कहते हैं, तो ये बटन मशरूम होगी। दूसरा दूधिया मशरूम है, तीसरा एक जो है ढिंगरी मशरूम है। तो इन तीनों प्रकार की मशरूम में सबसे ज़्यादा जो चलन में है मशरूम वो बटन मशरूम में है। और ये बटन मशरूम मैं देख रहा हूँ कि आज के समय में 12 महीने मार्केट में मिल जाती है। दूसरा ये हर घर की ये आवश्यकता बन चुकी है। तो मशरूम कि बिक्री वाली जहाँ तक बात है, बिक्री को लेकर के कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या नहीं है, क्योंकि गांव में भी आज के टाइम में मशरूम का अधिकतम भाग गांव में ही सेल हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि 50% अगर आपके पास में 5 क्विंटल मशरूम निकली या छोटी यूनिट से 2 क्विंटल मशरूम निकली है तो उसका आपका 50% भाग जो है मशरूम का लोकल गांव में या लोकल जो हमारे सब्जी विक्रेता है गांव में, सब्जी की दुकानें होती हैं वहीं पर के माध्यम से बिक जाती है। और फिर नियर बाई हमारे आसपास के क्षेत्र में जो आपका लोकल मार्केट है जहाँ पर सब्जी मंडी होती है
1: जी
0: तो सब्जी मंडी में जाकर के आप इसको आसानी से बिक्री कर सकते हैं जैसे वहाँ पर और सब्जियाँ बिकती हैं इस तरह से। तो मशरूम की बिक्री को लेकर के सभी किसान भाइयों को एक मैसेज है कि बिक्री को लेके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसानी से इसकी बिक्री हो जाती है और अच्छे दाम पर बिक्री होती है इसकी।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गांवों में मशरूम उत्पादन की संभावनाएं विषय पर डॉक्टर भारत सिंह वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक रहे हैं शिकोहपुर, उनसे बातचीत कर रहे थे अमित तेवतिया। तो साथियों ये विशेष जानकारी आपने पाई है। इसके अलावा आप जो है कि कई तरह के गैर सब्जी यानी औषधि मशरूम की भी खेती कर सकते हैं, उससे मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए इसके साथ अब आपका कराते हैं मनोरंजन।
3: सुनवाते हैं रेनू बर्मन की आवाज़ में ये गीत।

अभी हमारे भाई बहन सुन रहे थे रेणु बर्मन की आवाज़ में ये शिक्षा गीत, और चलते चलते अपने सभी भाई बहनों को सुनवाते हैं शीशपाल सिंह भाटी की आवाज़ में एक ये रागनी किस्सा रहेगा सरवर नीर का।

अभी आप सुन रहे थे सरवर नीर का किस्सा शीशपाल सिंह भाटी की आवाज़ में, और इसी के साथ हम अपने ग्रामीण भाइयों बहनों को इस कार्यक्रम को समाप्त करने की गुजारिश करते हैं। सभी ग्रामीण साथियों को हमारा राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब समय है कार्यक्रम गजलों का, आइए सुनते हैं गजलों के खूबसूरत खजाने में से एक ये खूबसूरत सी गजल।

0: कसे।
1: गजलों का कार्यक्रम आप सुन रहे थे और आप सुन रहे थे जगदीश सिंह की आवाज़ में ये गजलें। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
3: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
2: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: बहू जी, मम्मी जी, इस घर के कुछ नियम हैं, जैसे जैसे कि यहाँ कैश की परंपरा नहीं है तो लेन देन वो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, ओ जैसे UPI से।
6: अच्छा
5: हाँ, और सुनो एक और नियम है।
6: वो क्या है मम्मी जी?
5: तुम्हारी मुंह दिखाई भी UPI से मिलेगी।
6: आम भी ना मम्मी जी।
7: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क, उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर

0: लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी में हाल ही में हुए मालवीय नगर और अन्य आग की घटनाओं के बाद आपदा प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है।
1: बैठक में अवैध भवनों के खिलाफ चल रही अभियानों, अग्नि सुरक्षा संबंधी लाइसेंस के दुरुपयोग और भविष्य की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की गई। इस दौरान दिल्ली की आपदा संबंधी प्रणालियों में सुधार करने पर बल दिया गया। बैठक में अग्निशमन विभाग के कार्यबल को मजबूत करने के उद्देश्य से मौजूदा रिक्तियों को भरने के लिए पूर्व अग्निवीरों की भर्ती पर विचार करने का सुझाव दिया गया। साथ ही पिछले सप्ताह गठित अधिकारियों की टीम को समय पर कार्यवाही संबंधी रिपोर्ट ATR प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। बैठक में गर्मी से संबंधित आपदा प्रबंधन उपायों और मॉनसून की तैयारियों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आगामी बरसात के मौसम में बाढ़ के प्रति अतिरिक्त सावधानी, सख्त कार्यान्वयन और शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया गया। निकिता की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
0: दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच हुआ। ये पहल धूल रहित सड़कों, शहरी हरियाली और वैज्ञानिक सड़क प्रबंधन को बढ़ावा देगी। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और CBSE से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में CBSE द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। इस बीच केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने बताया है कि कक्षा 12वीं की परीक्षा 2026 के लिए नंबरों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की विंडो 2 जून से 7 जून तक पूरी तरह कार्यरत थी। इस दौरान 1,60,000 से अधिक उम्मीदवारों ने 3,08,000 से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं के लिए आवेदन किया। साइबर हमलों और किसी भी तरह के खतरे से बचाने के लिए साइबर सुरक्षा टीम ने इस पूरी अवधि में सिस्टम की लगातार निगरानी की। CBSE ने मीडिया और सोशल मीडिया पर इस पोर्टल के काम न करने को लेकर चल रही कुछ खबरों पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। बोर्ड ने छात्रों और अभिभावकों का भ्रम दूर करते हुए बताया कि जिन छात्रों के स्क्रीन पर रोल नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है तो इसका कारण ये है कि उन्होंने इस प्रक्रिया के पहले चरण यानी आंसर बुक की फोटोकॉपी के लिए आवेदन नहीं किया। बोर्ड ने याद दिलाया कि नियम के मुताबिक सिर्फ वही छात्र अगले चरण के लिए पात्र होते हैं जिन्होंने पहले चरण में अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई किया हो। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूची जारी कर दी है। पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
2: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र के शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में यमुना।

जीर्णोद्धार के मुद्दे पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि साफ और स्वच्छ यमुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है और सबको मिलकर इसको जल्द पूरा करना है। बैठक में तय किया गया कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष के अंत तक 99 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। अब तक 128 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा चुके हैं। श्री शाह ने बल देते हुए कहा कि यमुना जीर्णोद्धार परियोजना में कार्य प्रगति की हर 20

0: पुलिस की सामुदायिक पुलिसिंग सेल ने आज खिचड़ीपुर के झुग्गी में बच्चों के लिए आत्मरक्षा सत्र का आयोजन किया। इसका उद्देश्य युवा प्रतिभागियों में व्यक्तिगत सुरक्षा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना था। दिल्ली पुलिस ने आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मेगा साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 250 से ज़्यादा वरिष्ठ नागरिकों को उभरते साइबर क्राइम के खतरों के बारे में जागरूक किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में एक विशेष अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
1: आज 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी के रंग भवन में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक नृत्य कालबेलिया सहित विभिन्न लोक प्रस्तुतियां प्रदर्शित की गई। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने आकाशवाणी को 90 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी। श्री जोशी ने इस अवसर को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी पीढ़ियों से समाज की रीढ़ रही है और सूचना, संस्कृति और रचनात्मकता के माध्यम से लोगों को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर उसके कर्मचारियों और श्रोताओं को बधाई दी।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 2400 घंटे 23 प्रमुख भाषाओं और 146 से अधिक बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से नीतिका गुप्ता।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कल से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। एक रिपोर्ट।
3: इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को योजना के अंतर्गत मिलने वाली 9 मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं की जानकारी दी जाएगी और उनका लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी और लू से नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली सरकार हीट एक्शन प्लान के अंतर्गत कई प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में बाहरी उत्तरी जिला प्रशासन ने एक गैर सरकारी संगठन सीड्स के सहयोग से बवाना में एक अभिनव और पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया है, जो वर्तमान हीटवेव के दौरान लोगों को राहत प्रदान कर रहा है।
4: वर्तमान में बवाना और अलीपुर में 2 कूलिंग जोन संचालित हैं। इसके अतिरिक्त 3 और कूलिंग जोन विकसित किए जा रहे हैं, जिन पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। इनमें से एक कूलिंग जोन जिला उपयुक्त कार्यालय के सामने स्थापित किया जा रहा है। इस कूलिंग जोन का उद्देश्य विशेष रूप से समाज के कमजोर संवेदनशील वर्गों, निर्माण श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा चालकों, ड्राइवरों, रिहाड़ी पटरी विक्रेताओं और खुले में काम करने वाले अन्य नागरिकों को अत्यधिक गर्मी के दुष्प्रभावों से बचाना है। इन कूलिंग जोन का निर्माण मुख्य रूप से बांस से किया गया है। नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कूलिंग जोन में ठंडे पीने के पानी, ORS पैकेट, अग्निशामक यंत्र, हीट वेव से बचाव और जागरूकता संबंधी सूचना, शिक्षा और संचार सामग्री

0: और पर्याप्त बैठने और विश्राम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कूलिंग जोन को लोगों से अत्यंत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नीतिका गुप्ता के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक दिल्ली में और आसपास के राज्यों में लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। एक बार फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। राजधानी में हाल में हुई आग की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विषय पर समीक्षा बैठक की। दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बीच समझौता ज्ञापन। राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ती गर्मी के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना में पर्यावरण अनुकूल बांस से बना कूलिंग जोन स्थापित किया। और आकाशवाणी ने आज अपने गौरवशाली 90 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मुझे कॉलेज का टाइम याद है।
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से। RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लीजिए सुनिए आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष एक विशेष वार्तालाप। आकाशवाणी भोर से पहले, भोर के बाद। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका, प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना।
7: नमस्कार साथियों, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष वार्तालाप में आप सभी का स्वागत है। भारत के जनसंचार इतिहास में आकाशवाणी का नाम अत्यंत ही सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है। वर्ष 1936 में अपनी औपचारिक स्थापना से लेकर आज तक के 90 वर्षों की यात्रा में आकाशवाणी ने न केवल सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का दायित्व निभाया है, बल्कि देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी की शुरुआत एक सीमित प्रसारण सेवा के रूप में हुई थी, किंतु समय के साथ यह विश्व के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक हो गई है। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़ जी का परिचय कराना चाहूंगा। आप भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति हैं और आप आकाशवाणी की महानिदेशक भी रह चुकी हैं, और आप एक लंबे अरसे से मीडिया और पत्रकारिता से भी जुड़ी हुई हैं। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस विशेष कार्यक्रम में।
8: नमस्कार, थैंक यू।
7: प्रोफेसर अशोक टंडन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हैं। आप लंदन PTI के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आप माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में निदेशक भी रह चुके हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार। डॉक्टर वर्तिका नंदा जी, आप जानी मानी लेखिका और मीडिया विशेषज्ञ हैं। वर्तमान में लेडी श्रीराम कॉलेज में पत्रकारिता और रेडियो की प्राध्यापिका हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रदीप सरदाना जी, पत्रकारिता में आपको 50 वर्षों का एक लंबा अनुभव है और रेडियो टीवी से भी आप निरंतर जुड़े हुए हैं। फिल्म जो पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में उनको खुद को नहीं मालूम है, लेकिन आपको ज्यादा मालूम है। हम आपका भी स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं इस विशेष वार्तालाप कार्यक्रम में। तो चलिए, आज का जो कार्यक्रम है वार्तालाप, इसका संचालन करेंगे प्रदीप सरदाना जी, और अब मैं मंच और माइक आपके हवाले करता हूँ।
9: नमस्कार। यहाँ आए सभी महानुभावों सहित दूर दूर तक बैठे आकाशवाणी के उन लाखों करोड़ों श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं जो ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। आज का दिन निश्चय ही एक ऐतिहासिक दिन है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होना एक बहुत बड़ी घटना है, और मुझे इस बात की खुशी यह भी है कि जहां आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो रहे ऑल इंडिया रेडियो को, और वहां मुझे इसके साथ काम करते हुए

0: हुए 45 बरस हो चुके हैं, यानी आकाशवाणी का जो एक सफर है इसको आधे को मैंने खुद देखा है, जिया है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं बहुत पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब मैं यहाँ पहली बार युवाणी में आया, पहला कार्यक्रम किया, हालांकि मुझे पत्रकारिता में आए हुए कुछ साल हो चुके थे, 1974 में आ गया था, और 1980 में मेरा पहली बार आकाशवाणी में कदम रखा, और जनवरी 1981 में मेरा पहला कार्यक्रम प्रसारित हुआ था। कवि मैथिली शरण गुप्त ने शायद 1912 में भारत भारती में लिखा था कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। शायद इसी बात को आकाशवाणी ने भी अपनाया कि मनोरंजन तो है लेकिन उसमें उपदेश भी है, ज्ञान भी है। आप देखिए, सूचना का ऐसा सबसे बड़ा माध्यम जो इतने बरसों से चल रहा है, 90 साल से जब आकाशवाणी की बात कर रहे हैं और अभी तक चलता आ रहा है, तो कितनी बड़ी बात है कि इतने माध्यम आ गए। आज मोबाइल हमारे मुट्ठी में है, इतने सारे चैनल्स हैं, इतनी सारी चीजें, आप कहीं कुछ देखिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, गाने कहीं भी सुन सकते हैं। आप देखिए, अगर ये आकाशवाणी नहीं होती, आप कल्पना कीजिए जो ये फिल्म संगीत है, क्या इतना लोकप्रिय होता? कभी नहीं होता। हालांकि आकाशवाणी ने शुरू से इस बात का बड़ा ध्यान रखा कि हमारे यहाँ जो गीत प्रसारित होंगे वो बिल्कुल अच्छे गीत होंगे। इस बात की ध्यान रखा गया कि इसके अंदर कोई अश्लील गीत, द्व्यर्थी गीत नहीं आए। तो खैर, ऐसी बहुत सी और बातें हम करेंगे आगे, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे साथ प्रज्ञा पालीवाल जी हैं। मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने एक बार बताया था कि इनकी जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले युवाणी से हुई थी। इनकी पहली कमाई भी उसी से हुई थी और मेरी पहली कमाई भी युवाणी से हुई थी। मुझे याद है शायद 25-30 रुपए पहली बार मिले थे जब मैंने युवाणी का पहला कार्यक्रम किया था, और इनको शायद 35 रुपए मिले थे जब इन्होंने किया था। और ये कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जिस आकाशवाणी से इन्होंने अपनी शुरुआत की, पहली कमाई की, पहला कार्यक्रम किया, उसी आकाशवाणी में ये महानिदेशक बनी। और मुझे याद है जब पिछली बार इनसे बात हुई थी, यहाँ पर थी, तब इन्होंने कहा था कि हम 89 पूरे हो चुके हैं और हम चाह रहे हैं कि आकाशवाणी के 90 साल मनाएंगे। हालांकि ये IIMC में चली गई चांसलर बनके, लेकिन इन्होंने कहा था, मुझे याद है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं। और मैं सबसे पहले यही चाहूंगा, प्रज्ञा जी आप बताएं, आपने दोनों दौर को जिया, एक कार्यक्रम प्रस्तुता के रूप में भी और उसके बाद और भी विभिन्न रूपों में भी, और फिर यहाँ के महानिदेशक के रूप में भी, तो आप आकाशवाणी के 90 साल के सफर को कैसे देखती हैं?
1: देखिए, 90 साल किसी भी संस्था के लिए बहुत प्रमुख होते हैं, विशेष रूप से सार्वजनिक प्रसारणकर्ता आकाशवाणी, उसकी जिम्मेदारी लगातार इतने वर्षों तक निभाना वो एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और मैं कह सकती हूँ कि आकाशवाणी ने यह कार्य बखूबी किया है, चाहे जो सूचना, संचार, शिक्षा, इन तीनों ही अपने उद्देश्यों में, टू इन्फॉर्म, टू एजुकेट एंड टू एंटरटेन, ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव्स आकाशवाणी ने शुरू से ही निभाए हैं। जैसे आपने फिल्म संगीत के बारे में बता ही दिया, लेकिन शिक्षित करना और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल देश में जहाँ पे इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है, उसमें हमारे यहाँ हर तीन कोस पे एक बोली बदल जाती है, और आकाशवाणी ही एकमात्र ऐसा चैनल है अभी भी और हमेशा से रहा है जिसके दूरस्थ गांव में भी वो सुना जाता है। तो ये जो लोगों को शिक्षित करने का काम किया है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ सूचना देने का काम किया है, वो आकाशवाणी से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत सारे ऐसी घटनाएं याद हैं, चाहे कोई साइक्लोन आए, आपके जो आधुनिक संचार के साधन है वो सब फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी के माध्यम से यदि अभी सूचना देनी है मछुआरों को, देनी है सुनामी का, हम लोगों को सबको याद है, या जो उड़ीसा में इतने चक्रवात आते हैं अलग अलग देश के अलग हिस्सों में, उसमें हम लोगों ने देखा कि आकाशवाणी को ही एक क्रेडिबल सोर्स माना जाता है। विश्वसनीयता यदि किसी भी चैनल की हम लोग आज देख लें तो वो आकाशवाणी की है। और क्यों ये अपने आप बना के रख पाए, अपना ये कारण, क्योंकि समय के साथ साथ आकाशवाणी ने परिवर्तन किया है अपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, अलग अलग तरह से। पहले केवल आप ट्रांसमीटर्स के थ्रू सुनते थे, ट्रेडिशनल रेडियो सेट्स के द्वारा सुनते थे, धीरे धीरे तकनीकी का प्रयोग आया, अब ऐप पे है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो वहां आप आकाशवाणी अपने क्षेत्र का, मान लीजिए कोई बिहार का है तो वो बिहार में अपने क्षेत्र का समाचार या वहाँ क्या घटनाएं हो रही है या उस भाषा के गीत भी कहीं भी बैठ के, तो ये जो एक लोगों को जोड़ने का काम किया है वो एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। और तकनीकी के साथ साथ बदलाव किया है, इसीलिए आज भी आकाशवाणी वही विद्यमान है लोगों के दिलों में जैसे पहले थी। और ऐसे संगठन में काम करने के लिए आना अपने आप में एक गौरव की बात है जो मुझे लगता है। लेकिन हम लोग पर्सनल चीज को अलग रखते हुए बात करें कि हाँ, आकाशवाणी कैसे आगे बढ़ रहा है, तो अभी लेटेस्ट जो पॉडकास्ट विधायक शुरू किया है आकाशवाणी ने एक सार्वजनिक प्रसारणकर्ता के रोल में होते हुए, एक सरकारी माध्यम होते हुए नई विधा को अपनाना, और आप देखिए आज वो विधा कितनी लोकप्रिय हो रही है और आकाशवाणी की भी जो पॉडकास्ट है वो इतना लोकप्रिय हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, एग्रीकल्चर।

0: भारत सरकार राज्य सरकारों की विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देना हो लोगों को, कैसे पहुंचेगी? अलग अलग खेती के लिए कार्यक्रम है, स्वास्थ्य के कार्यक्रम है और बड़े पॉपुलर कार्यक्रम है। अब चूंकि FM पे भी है, FM चैनल्स बहुत लोकप्रिय हैं, तो FM के जरिए लोग, चाहे आप घर में नहीं भी हो तो भी, आप ड्राइव कर रहे हो तो भी आप ये सब सुन सकते हो। इसी के क्रम में बोले सोशल मीडिया, आप देखेंगे कि जो सोशल मीडिया आकाशवाणी के हैंडल्स हैं, दे आर मच मोर पॉपुलर देन अदर टीवी चैनल्स। विजुअल माध्यम जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हमारे आकाशवाणी के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनकी जो फॉलोअर्स है वो रीच है। और सबसे बड़ी बात, कोई क्यों आकाशवाणी सुने? यदि आपको विश्वसनीय समाचार सुनना, आज भी हम लोग ध्यान करते हैं कि बहुत सारे इवेंट्स हुए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्यों हम लोगों को इतनी जिम्मेदारी से समाचार देने पड़ते थे? क्योंकि कोई भी यदि सुनना चाहेगा क्रेडिबल कि आज क्या हो रहा है, वो आकाशवाणी से सुनता है। यदि आकाशवाणी ने कह दिया तो वो सच है। इसलिए ये आकाशवाणी के जो अधिकारी हैं और जो काम करने वाले, उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग दूसरों की तरह रेस में नहीं है आगे बढ़ने की, या नंबर ऑफ TRP की रेस में नहीं है, बल्कि विश्वसनीय और समय पे समाचार देना और सही समाचार देना। और जैसा आपने एंटरटेनमेंट का, तो आपने स्वयं ही बताया कि यदि आकाशवाणी पे आ रहा है तो वो बहुत ही स्तरीय एंटरटेनमेंट होगा।
1: बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि आकाशवाणी TRP की रेस में आगे नहीं भागता, लेकिन इतना भरोसेमंद है और आज भी इतना विकास की गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है कि आप देखिए, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय सिर्फ 6 केंद्र थे हमारे यहाँ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, तिरुचिरापल्ली। आज हमारे यहाँ 600 के लगभग प्रसारण केंद्र हैं और 250 से अधिक स्टूडियो वाले केंद्र हैं जहाँ पूरे कार्यक्रम बनते हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा अशोक टंडन जी से, हमारे पुराने और आज के बहुत ही दिग्गज पत्रकार, और मुझे खुशी है कि मैं भी इनके साथ, जब ये PTI के दिनों में थे तब भी मुलाकात होती रहती थी, माखनलाल चतुर्वेदी के नोएडा संस्थान में पढ़ा है अभी, तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। एक तरफ जहां ये जनसंचार के माध्यम है उससे जुड़े रहे और साथ ही सरकार से भी जुड़े रहे। मुझे याद है ये जो कम्युनिटी रेडियो की स्थापना है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही उसकी नीति बनाई थी, तभी वो शुरुआत हुई थी और बाद में वो आडवाणी जी ने उसका उद्घाटन किया था। तो टंडन साहब, आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि आप भी इतने वर्षों से ये कार्यक्रम करते रहे और संचार के माध्यम से जुड़े रहे, आप संचार के जो अन्य माध्यम है और जो आकाशवाणी है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं?
2: मैं उस पीढ़ी का हूं जिस समय मिडिल क्लास के घरों में रेडियो नहीं होता था, ट्रांजिस्टर तो आए ही नहीं थे, तो उस समय मैं अपने अगर बचपन के दिनों की बात करूं तो हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, घर में रेडियो का तो मैंने कहा सवाल ही नहीं था, तो स्कूल से हम भागकर क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए मार्केट की पान की दुकान पर जाया करते थे क्योंकि वहां रेडियो होता था। तो पहला जो आकाशवाणी के साथ संबंध जुड़ा वो जुड़ा क्रिकेट की कमेंट्री के माध्यम से, और इतने धुरंधर क्रिकेटर क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले थे जो हाउस होल्ड नेम बन गए थे, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो सुशील दोषी, मेलविल डिमेलो, जसदेव सिंह, ये वो नाम थे जिनको बच्चा बच्चा जानता था क्योंकि उनकी कमेंट्री ऐसी होती थी। तो ये पहला प्रभाव मेरे पर तो आकाशवाणी का जो पड़ा वो तो पड़ा कमेंट्री से। दूसरा, विविध भारती के साथ साथ जिस तरह के भोले बिसरे गीत, संगीत सरिता, चित्र लोक और फौजी भाइयों के कार्यक्रम, ये एक दूसरा प्रभाव था जो हमारे समय की युवा पीढ़ी पर पड़ा, मनोरंजन का साथ। महिलाएं रसोई में काम कर रही हैं तो गाने रेडियो पर चल रहे हैं, फिर जब ट्रांजिस्टर आता है तो खेत खलिहान मजदूर हर व्यक्ति ट्रांजिस्टर के साथ जुड़ा है, गाने सुन रहा है, समाचार सुन रहा है और अपना काम कर रहा है। तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था समाचार। जो हिंदी के समाचार हम लोग सुनते थे उसमें देवकीनंदन पांडे,
1: रामानुज प्रसाद सिंह,
2: रोशन मेनन, सुरजीत सेन, लोतिका रत्नम, लोतिका सिंह, पामेला सिंह, इंदु वाही, ये वो नाम थे जिनको घर घर में बच्चा जानता, बाद में पत्रकार बना। जब लड़ाई हुई 1965 की और 1971 की, और उस दिनों जो कार्यक्रम बनाए गए वो मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और लोग रेडियो पर कान लगाए रहते थे कि कब समाचार से हमको जानकारी मिले। तो समाचार जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण साधन रहा है और आज भी है। और अभी भी मैं एक बात बीच में कह दूं कि जब सरकार ने FM रेडियो के लाइसेंस देने शुरू किए, लेकिन समाचार अपने बनाने की परमिशन अभी तक नहीं दी गई है, वेव्स हैं रेडियो की, ये किसी और के हाथ में देना कितना खतरनाक हो सकता है ये हम समझते हैं। आकाशवाणी की वो इम्पोर्टेंस है कि अगर किसी दुश्मन ने आपकी आकाशवाणी यानी रेडियो स्टेशन पर कब्जा कर लिया तो समझिए वो देश आधा पस्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण काम है आकाशवाणी का, और उसी लिए ये आकाशवाणी को इतना महत्व दिया गया। मैं एक उदाहरण दूंगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है आकाशवाणी के समाचार की जो विश्वसनीयता के बारे में। एक बार क्या हुआ कि गोवा के एक मुख्यमंत्री थे दयानंद बंदोडकर, उनकी बेटी बाद में मुख्यमंत्री बनी और उनको ये लगा कि मैं अपने पिताजी की एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं। वो डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग हो रही थी तो डमी शूटिंग होनी थी और उसमें वो खबर जानी थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो उस जमाने में न्यूज एजेंसी फ्लैश फ्लैश फ्लैश करती थी, फ्लैश फ्लैश फ्लैश गोवा सीएम डेड। अब ये हो गया शूटिंग, लेकिन जो टेलीप्रिंटर ऑपरेटर था वो स्विच को ऑफ करना भूल गया।
1: अच्छा।
2: उसके चलते वो गोवा से समाचार मुंबई पहुंच गया, मुंबई ने दिल्ली को दे दिया, दिल्ली ने उसको प्रसारित कर दिया। अब आकाशवाणी को ये इंस्ट्रक्शन थी और आज भी है कि अगर ऐसा कोई समाचार एक न्यूज एजेंसी से आता है आप उसको ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले दूसरी न्यूज एजेंसी से आप उसको कन्फर्म करेंगे। तो उसके चलते वो आकाशवाणी से समाचार प्रसारित नहीं हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय राष्ट्रपति भवन से फोन आ रहे हैं कि आप आकाशवाणी से क्यों प्रसारित नहीं कर रहे, गोवा के मुख्यमंत्री का देहांत हो गया है। आकाशवाणी के डीजे ने कहा साहब हमने दूसरी एजेंसी से कन्फर्म किया है, उसका कहना है साहब ऐसा कोई समाचार नहीं है। मैं ये प्रत्यक्ष बता रहा हूँ आपको कि फिर राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री कार्यालय ने सेटेलाइट से नेवल हेडक्वार्टर जो वेस्टर्न कमांड का है उससे संपर्क किया तो उन्होंने कहा साहब यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है। अब उस जमाने में क्या हुआ कि संपर्क टूट गया गोवा और मुंबई के बीच में उस एजेंसी का। जब संपर्क जुड़ा तो उसने कहा कि वेयर इज द फॉलो अप, उसने कहा क्या फॉलो अप, आपने कहा था गोवा सीएम डेड, उसका फॉलो अप क्या है। तो अब रियलाइज हुआ कि शूटिंग करते समय एक स्विच ऑफ ना करने से कितना बड़ा देश, लेकिन आकाशवाणी अपने उस पर डटी रही और इसके कारण दुनिया को गलत समाचार नहीं मिल पाया। आज भी लोग कहते हैं कि जरा रेडियो की खबर सुन ली जाए, आकाशवाणी जो बात कहेगी वो सत्य है, उसमें कोई ना तो गॉसिप है और ना ही कोई बढ़ा चढ़ाकर है और ना ही इसमें किसी प्रकार का देश के अंदर जो एक सद्भावना है उसको खत्म करने की कोशिश है। तो आकाशवाणी ने 90 साल में ये जो एक अपनी इमेज बनाई है बल्कि शांति स्थापित करवाने में सहयोग दिया।
1: देखिए जिस तरह आपने बताया कि आकाशवाणी पर भरोसा करते हैं, मुझे 1971 के वो दिन याद है जब भारत पाक का युद्ध चल रहा था। उस समय भी ऐसा होता था, पाकिस्तान हर बार अपने रेडियो से प्रसारित करता था हमने भारत की सेना को पीछे खिसका दिया, इसको ये कर दिया, जबकि हमारी सेना सीधे लाहौर तक पहुंच गई थी। तो तब आकाशवाणी ने एक कार्यक्रम शुरू किया था ढोल की पोल। ढोल की पोल इतना अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरा व्यंगात्मक तरीके से ये बताया जाता था कि पाकिस्तान किस तरह झूठ बोल रहा है, और पाकिस्तान उस कार्यक्रम से इतना परेशान हुआ था कि उसने झूठ बोलना बहुत कम कर दिया था। लेकिन आप ये देखिए आकाशवाणी के सामने इन 90 सालों में कितनी चुनौतियां आई हैं, कितनी बार ऐसे लगा कि बस आकाशवाणी अब जाने को है, इसका जमाना चला गया। तो तभी 85 के समय भी ऐसा लगा, लेकिन आप देखिए फिर किस तरह धीरे धीरे जो है आकाशवाणी ने FM चैनल शुरू किए, कम्युनिटी चैनल शुरू किए, और उसके बाद फिर ऐसे लगने लगा शायद फिर पीछे हो रहा है। तो लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम प्रसारित हुआ आकाशवाणी पर, और आप देखिए उस एक कार्यक्रम ने आकाशवाणी को इतना लोकप्रिय बना दिया है, आकाशवाणी को राजस्व भी मिल रहा है, उसकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है, उसको सभी लोग सामूहिक रूप से सुनते हैं, और आकाशवाणी के उसी कार्यक्रम को सारे तमाम चैनल्स रेडियो के चैनल्स हैं चाहे वो टीवी के चैनल्स हैं उसी को आगे प्रसारित करते हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा वर्तिका नंदा से। वर्तिका नंदा एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और इतने सालों से मैं इनको देख रहा हूँ और कई बार हम टीवी के कार्यक्रम में कई बार रेडियो के कार्यक्रम में भी साथ होते हैं। इन्होंने पत्रकारिता में तो किया अध्यापक के रूप में जो कर रही हैं वो भी है, साथ ही इन्होंने जेल के ऊपर जो काम किए हैं वो इतने अनुपम है उसका कोई मुकाबला नहीं है, और आकाशवाणी के साथ भी लगातार जुड़ी हुई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप खुद इतने साल से आकाशवाणी के कार्यक्रम भी कर रही हैं, तो आपको आकाशवाणी के ऐसे कौन से कार्यक्रम हैं जो आपके दिलों में अभी घर की हो।
3: देखिए 12 नवंबर 1947 को जब महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार आकाशवाणी में आए, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि जब ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें कहा कि गांधी जी आप आइए, उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत में मेरा आना उचित नहीं है, मैं तो तब आऊंगा जब भारत आजाद होगा, और भारत के आजाद होने के बाद ही यहाँ पर आए। वो ऐतिहासिक घटना थी जिसे जन सेवा प्रसारक दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
1: हमारे आकाशवाणी में आज भी वो स्टूडियो है
3: और आज वो बापू धाम बन गया और उस बापू स्टूडियो में अब रिकॉर्डिंग्स होती हैं, वही बापू स्टूडियो जहां महात्मा गांधी आए थे।
1: जी।
3: इन सालों में बहुत से कार्यक्रम हुए, लेकिन एक बात जो और बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित हुई वो थी मन की बात। मन की बात ने ये साबित कर दिया कि अगर देश का प्रधानमंत्री आकाशवाणी के माइक को चुनता है पूरे हिंदुस्तान से बात करने के लिए, तो इसका मतलब जाहिर तौर पर आकाशवाणी में कोई ऐसा जादू है जो बहुत से लोग शायद ना समझ पा रहे हों। आकाशवाणी ने एक और काम किया, उसने इतने सालों में हमें सुकून भी दिया,

0: हमें संवेदना दी, हमें संस्कार दिया और हमें सहूलियत भी दी। आकाशवाणी ने शिक्षा की जो मुहिम चलाई, शिक्षा से जुड़े बहुत से कार्यक्रम इग्नू के साथ जोड़कर आज भी आकाशवाणी पर प्रसारित हो रहे हैं। जो अशिक्षित है उसे शिक्षा से जोड़ रहा है आकाशवाणी, और जो शिक्षित है उसके अंदर भाषा के बेहतर संस्कार को जगा रहा है। एक और बड़ी रोचक बात लगती है, सैनिक भाइयों का कार्यक्रम बड़ा ही लोकप्रिय रहा, खासतौर पर इसलिए कि जो सरहद पर है अपने परिवार से दूर उदासी से घिरा हुआ, उनको थामने का काम भी आकाशवाणी ने किया। किसानों की चिंता भी आकाशवाणी ने कही। असल में ऐसा लगता है कि जो जिंदगी की मूलभूत जरूरतें थी, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, रोजगार, ऐसे तमाम बड़ी चीजें जिसके बिना हम जिंदगी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, पता नहीं क्यों वो जन सेवा प्रसारक माध्यमों के हिस्से में डाल दी गई और कमर्शियल मीडिया के पास आ गया तिजोरी भरने का काम। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने देखा। तीन तरह के ब्रॉडकास्टर्स से हमारा परिचय रहा, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, कमर्शियल मीडिया और कम्युनिटी मीडिया। इन सालों में आकाशवाणी ने हमारे सामने कई खिड़कियां खोली। उसने ये बताया कि हम जब बात करते हैं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की, उस बात को चरितार्थ किया आकाशवाणी ने। हर कार्यक्रम का चुनाव, चाहे वो बच्चों का कार्यक्रम हो, बुजुर्गों का हो, युवाओं का हो, मन की बात हो, किसानों का कार्यक्रम हो या फिर शिक्षा की अलख जगाने का कार्यक्रम हो, और खास तौर पर संगीत हो, जिंदगी में संगीत खोलने का काम भी आकाशवाणी ने किया। और उसने ये भी बताया कि संगीत के साथ साथ भी आप कैसे अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं। इस बात की जिक्र मैंने खास तौर पर इसलिए भी किया कि जब कोई आकाशवाणी को सुनता है तो वो ये भी जानता है कि हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम्स में, थिएटर ऑफ द माइंड, आकाशवाणी हमारी कल्पनाओं के संसार को बड़ा उर्वर करता है। आपके सामने वो कलाकार नहीं है, आपके सामने वो अभिनेता भी नहीं है और वो संगीतकार भी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग तुरंत उन तस्वीरों को बुनने लगता है। चाहे प्रधानमंत्री के निधन की खबर हो और चाहे सुनामी हो, आकाशवाणी ने अपनी धुन को, अपने तरीके को, अपने स्वर को भी कभी नहीं बदला। आप जिस कमर्शियल मीडिया की तरफ बात कर रहे थे, जाहिर तौर पर वो शोर आकाशवाणी के कानों तक भी पहुंचा, लेकिन आकाशवाणी की खूबसूरती है कि उसने अपने आप को कभी भी एक नकलची बंदर नहीं बनाया। वो कभी भी इस डर में नहीं आया कि बाकी लोग हमसे आगे गुजर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने तिजोरी की खनक को समझ लिया है और पकड़ लिया है। आकाशवाणी उस तिजोरी की चमक दमक से परे बड़े शालीनता से अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत करता रहा। अभी भी हर बार हम देखते हैं जब भी कोई विशेष तिथि होती है तो यहाँ विशेष कार्यक्रमों को बनाया जाता है। और अब मैं देखती हूँ कि तकनीक में इतने बदलाव के बावजूद, आकाशवाणी ने उन तकनीकों को अपनाने के बावजूद अपने उस पुराने गौरव को और अपने उस संस्कार को, अपनी उस गति को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया। पुरानी रिकॉर्डिंग्स आकाशवाणी में महफूज हैं, महात्मा गांधी की आवाज से लेकर पंडित रविशंकर, हरिप्रसाद चौरसिया और यहाँ तक कि सुभाष चंद्र बोस तक। कितनी आवाजों को आकाशवाणी ने सहेज कर रखा। एक शिक्षक, एक छात्र और किसी भी एक नागरिक के लिए आकाशवाणी एक कमाल का उड़न कटोला है। सारे रस हैं इसमें। वियोगी के लिए, दुखी व्यक्ति के लिए मरहम का काम करता है, किसी ऊर्जावान व्यक्ति के लिए नई ऊर्जा देने का काम करता है, जिसके पास रोजगार नहीं है उसके सामने रोजगार के अवसर पैदा कर देता है। तो मतलब ये कि आकाशवाणी का चाहे न्यूज रूम हो, साहित्य का दरवाजा हो या फिर संगीत का विशाल पटल हो, वो सब किया जो किसी सफल और सार्थक ब्रॉडकास्टर को करना चाहिए था या करना चाहिए है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। कितने ही कार्यक्रम को मैं आज याद करता हूँ पुराने। एक कार्यक्रम हवा महल, जो बचपन से हमारे दिलों में घर करके बैठा हुआ है। आपने सैनिकों की बात की, सैनिकों के लिए एक कार्यक्रम जयमाला शुरू हुआ, नरगिस दत्त ने उसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले वो सैनिकों के लिए संदेश सुनाती थी। मेरी नरगिस जी और सुनील दत्त साहब से बहुत अच्छे संबंध रहे, तो दत्त साहब बताते थे कि जब हमारा चीन के साथ युद्ध हुआ तो उसके बाद वो जगह जगह जाके सैनिकों के लिए अपनी झोली फहरा के नरगिस जी और सुनील दत्त साहब पैसे बटोरते थे, लोगों से भीख मांगते थे एक तरह से, हमें दीजिए इनकी सहायता के लिए। तभी आकाशवाणी ने सोचा इतनी दूर दराज के लोग सैनिक बैठे हुए हैं, उनके पास कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, कैसे उन तक संगीत पहुंचे, कैसे उनके संदेश पहुंचे, कैसा उनका परिवार के साथ वार्तालाप हो। तब जाके ये जयमाला कार्यक्रम शुरू किया जो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उसमें सैनिकों के संदेश सुनाए जाते थे, उनकी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती थी, और नरगिस ने उसको पेश किया, देवानंद साहब ने पेश किया, अमिताभ बच्चन जी ने पेश किया, महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बहुत से लोगों ने पेश किया। वो कार्यक्रम इतना अच्छा था, आज भी वो कार्यक्रम चल रहा है अपने अलग रूप में, और आज भी उसकी पुरानी यादें जो है आती हैं उसके अंदर। तो प्रज्ञा जी, मैं भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप जब अपनी युवा अवस्था में थी तब आपको कौन से कार्यक्रम ऐसे थे जो आपको बहुत अच्छे लगते थे कि इनको मिस ना करूं, जरूर सुनूं?
2: कार्यक्रम गीत संगीत के अतिरिक्त जब बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज

0: में हो, यूनिवर्सिटी में हो, उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट आकाशवाणी का एक है न्यूज सर्विसेज डिवीजन, उसके जो अनेक कार्यक्रम, यदि आप बात करें करेंट अफेयर्स से जितने संबंधित प्रोग्राम है, चाहे आप सुर्खियों में ले लें, स्पॉटलाइट ले लें, या करेंट अफेयर्स से रिलेटेड डिस्कशंस ले लें, ये कार्यक्रम बहुत समय से चल रहे हैं। ये जानकर मुझे खुशी होती है कि आजकल जो कोचिंग एकेडमीज हैं, जो यूपीएससी या अलग अलग स्टेट सर्विस कमीशन या दूसरे एग्जाम्स के लिए बच्चों को तैयार करती हैं, वो पूरा पूरा उस कार्यक्रम का ट्रांसक्राइब करा के उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देती हैं। कॉपीराइट है या नहीं वो उस बात में नहीं, लेकिन अनेकों ऐसी एकेडमीज हैं और इन कार्यक्रमों को हर छात्र युवा जो है वो जरूर सुनता है। साथ में पॉलिटिकल, एजुकेशनल स्फीयर, एग्रीकल्चर ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, या पार्लियामेंट से रिलेटेड बजट हुआ, विशेष मौके आते हैं उन पे आधारित जो विशेष कार्यक्रम बनाए जाते हैं वो बहुत ही लोकप्रिय होते हैं और ज्ञान परक होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: हर बच्चा उसको सुनना चाहता है। और जब हम लोग देखा करते थे हमारे पेरेंट्स सुन रहे हैं कमेंट्रीज, और हॉकी की कमेंट्री का तो अलग ही लेवल होता था, हॉकी बहुत फास्ट गेम है, उसी हिसाब से होती थी जसदेव सिंह की या मेलविन डी मेलो वाली जो कमेंट्री होती थी उसकी खासियत सुनते थे। एक चीज और जो आकाशवाणी के कार्यक्रम में आते थे और मुझे याद है मेरे पेरेंट्स भी सुना करते थे, और फिर वो दूरदर्शन में आया जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे, वो सारे जितने वरिष्ठ कवि उस समय के, चाहे नीरज जी हो,
1: कवियों को, पंत जी हो, सबने, महादेवी वर्मा, सबने,
0: सुरेंद्र शर्मा जी हैं, तो वो सब इस माध्यम पे आते थे। तो वो जो विशेष श्रृंखलाएं आकाशवाणी की हैं उनको बहुत पसंद। और मुझे याद है पढ़ते समय हम लोग समाचार सुनते थे, जितना ज्यादा आप करंट अफेयर्स से वाकिफ होंगे, जैसे वर्तिका जी ने कहा इग्नू के जो प्रोग्राम भी गए थे, ज्ञानवाणी, और वो इस तरह के कार्यक्रम शुरू से ही सुने हैं, गीत संगीत तो सुनते ही थे। और आज भी आप देखिए जो किसानों की सलाह के कार्यक्रम होते हैं, हम लोग यहाँ बड़े शहर में बैठ के ये बोल सकते हैं कि कोई नहीं सुन रहा, लेकिन बड़े शहरों में उनकी प्रासंगिकता नहीं है इसीलिए नहीं सुन रहा, लेकिन गाँव में आज भी उन कार्यक्रमों की प्रासंगिकता है, चाहे वो आपके स्वास्थ्य वाले, हम लोगों को यहाँ पे तो सारी मेडिकल एडवाइस मिल जाएगी जैसे मैंने पहले भी कहा था। और फिर जिस प्रकार के इन करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स में लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है बिजनेस से रिलेटेड समाचारों का, मार्केट मंत्रा, उसको मैं शाम को सुनती थी, तो आर्थिक जगत में क्या हो रहा है वो पूरे दिन का एक समरी आ जाती थी कि स्टॉक्स ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं, क्या कारण है, भारत की क्या स्थिति है। तो मैं समझती हूँ कि ये कोई और नहीं कर सकता, ये आकाशवाणी एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर होने के नाते ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है।
1: बिल्कुल, स्वास्थ्य और जो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम बताए उसमें सबैकी प्रोग्राम बहुत एक प्रसिद्ध रहा, और मैं भी उसको 1980 82 83 के दशक से उसको करता आ रहा हूँ। और मुझे आज याद आ रहा है कि आज 2 जून है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस कार्यक्रम की, तो आज ही के दिन जो राज कपूर है उनका निधन हुआ था 2 जून 1988 को, और मेरा एक बड़ा एक शायद पता नहीं कोई पूर्व जन्म का रिश्ता था या मेरा सौभाग्य था कि उनके अंतिम समय में मैं ही उनके साथ था एम्स के अंदर, मैंने ही उनसे आखिरी बात, इतने बड़े फिल्मकार ने इतने संवाद लिखे लेकिन उसने जीवन का आखिरी संवाद मेरे साथ किया। वो कार्यक्रम भी सवाईकी में 2 जून 1988 को गया था, जो आज ये रिकॉर्डिंग का दिन है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छी वो देता है कि किस तरह आप देखिए कि ये सब हुआ। और जिस तरह स्वास्थ्य की बात की तो मैं खुद आकाशवाणी के लिए बहुत समय तक स्वास्थ्य पत्रिका कार्यक्रम करता रहा, मैं विश्वविद्यालयों में जाता था, अलग अलग कॉलेज में जाता था, उस समय बड़ा मुश्किल था आज के समय के हिसाब से अपना जो छात्राएं हैं उनसे, खासतौर से परिवार नियोजन की बात करें, शादी की बात करें, आज तो बहुत एडवांस हो गया लेकिन 40 साल पहले 35 साल पहले बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मैं तब भी अपना वो पुराना मेट्रो रिकॉर्डर हो जाता था वो ले जाता था और जाके यूनिवर्सिटी में बैठ जाता था, लॉन के अंदर फिर बुलाता था बाहर से किसी को, फिर उनसे बातों बातों में बात करता था। लेकिन उसके बाद वो इतने अच्छे कार्यक्रम बनते थे कि बहुत ही शिक्षा उनको मिलती थी, डॉक्टर से भी बात करते थे, लोगों से भी बात करते। कोरोना के दिनों में स्पेशल कार्यक्रम शुरू हुए वो भी इसके अंदर चल रहे हैं। तो टंडन साहब, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा कि आपका एक इतना एक अलग अनुभव, आप क्या देखते हैं आकाशवाणी के भविष्य को किस रूप में देखते हैं आप आज?
2: मैं उससे पहले एक्सटर्नल डिवीजन के बारे में बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तो कोई बहुत बड़ी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा जो आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजन था जिसमें कितनी ही विदेशी भाषाओं में हम समाचार प्रसारित करते थे और उनके समाचारों को हम इकट्ठा करके फिर यहाँ पर बुलेटिन में डालते थे, तो मैं समझता हूँ कि वो सर्विस भी जो थी बहुत महत्वपूर्ण थी और आज भी चलती है। पत्रकार होने के नाते मैंने बहुत नजदीक से आकाशवाणी के संवाददाताओं के साथ काम किया। विदेश में चाहे प्रधानमंत्री की विजिट हो, राष्ट्रपति की हो, या कोई और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो, उनके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर भी रहता था जिसमें उनको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करनी पड़ती।

0: बाइट्स जिसको आज कहते हैं वो लेने पड़ते थे, और हम लोग तो अपनी कॉपी जितनी लंबी मर्जी लिख लें उनको छोटे में न्यूज बुलेटिन के हिसाब से वो बनानी पड़ती थी खबर। हम देखते थे कितना मुश्किल काम करते थे। और मैंने लगभग 20 साल तक तो आकाशवाणी के करस्पॉन्डेंट के साथ काम किया, देश में भी विदेश में भी, और उन पर जितना दबाव रहता था क्योंकि उनका समाचार बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और ये जो दबाव में काम करने में आकाशवाणी के संवाददाताओं ने योगदान दिया जिसके चलते आकाशवाणी के समाचारों की विश्वसनीयता बनी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक कार्यक्रम की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा कि जब 1971 की लड़ाई में सरेंडर करती है पाकिस्तान की सेना, तो यहाँ से एक स्पेशल वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बन के सुरजीत सेन गए थे और उन्होंने वहां पर बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो से लाइव ढाका से किस प्रकार से जनरल ए के नियाजी ने सरेंडर किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन किया, इसका लाइव उन्होंने, आप सोचिए टेलीविजन में लाइव दिखाना आसान है लेकिन आकाशवाणी के एक स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के नाते उन्होंने जो एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया कि सरेंडर कैसे हुआ, तो ये इतने महत्वपूर्ण एक ऐसे आयाम हैं जिसको आकाशवाणी के संवाददाताओं ने कवर किया और कितनी कठिनाई में दुर्गम स्थानों पर जाकर और फॉरवर्ड एरिया में जाकर सियाचिन जैसी जगहों पर जाकर तो इन लोगों ने जो काम किया। देखिए अब अगर आप भविष्य की बात करें तो अब तो टेक्नोलॉजी इतनी बदल गई है, समय के साथ आकाशवाणी ने भी टेक्नोलॉजी अपनाई है, आज डिजिटल मीडिया में आकाशवाणी की रीच सबसे ज्यादा है और जो कोई भी टेक्नोलॉजी आ रही है, हम लोग सुनते थे एक ऐसा समय आने वाला है जब आपके हाथ में एक फोन होगा उस पर आप आकाशवाणी के समाचार भी सुनेंगे, आप उसमें टीवी की खबरें भी सुनेंगे, आप उसमें संगीत भी सुनेंगे, आज वो हमारे सामने है, हमारे हाथ में है। तो उस युग को आज आकाशवाणी जी रहा है और किसी भी तरह से वो इस फील्ड में अपनी जो उसकी एक सुप्रीमेसी है उसको छोड़ने वाला नहीं है, चाहे टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंच जाए आकाशवाणी आकाशवाणी ही रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, आकाशवाणी आकाशवाणी रहेगा, उसको आप ऐप पर सुन सकते हैं, अपने पुराने कार्यक्रम को सुन सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप इस तरह आकाशवाणी से आज भी कदम ताल मिलाकर, श्रोता भी चल रहे हैं, आकाशवाणी भी कदम ताल मिलाकर आज की जो आधुनिक तकनीक है उसके साथ चल रही है। आकाशवाणी में इतने आधुनिक स्टूडियो आ गए हैं जिसमें रिकॉर्डिंग की बहुत सुगमता हो गई है, पहले जरा सी गलती जाती थी बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें याद है जब रिकॉर्डिंग कर लेके बड़ा एक मेटल का रिकॉर्डर लेके जाते थे, इतना भारी होता था तब जाके लोगों से बात करते थे तो कितनी समस्या आती थी, आज सब कितना आसान हो गया है। तो मैं अब वर्तिका जी आपके पास फिर एक बार पूछना चाहूंगा कि आज मैं कितने भी टीवी चैनल्स पे जाऊं, बड़े बड़े जो न्यूज चैनल्स हैं मुझे आमंत्रित करते हैं, लेकिन जब मुझे आकाशवाणी से आज भी किसी कार्यक्रम के लिए आमंत्रण मिलता है तो मुझे जो सुखद अनुभूति और जो आनंद मिलता है उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो आप किस तरह देख रही हैं आकाशवाणी को बदलते स्वरूप में, इसकी पहुंच को लोगों तक, और आज के जो आप कॉलेज में पढ़ाती हैं तो वहाँ किस तरह लोगों के अनुभव रहते हैं आकाशवाणी को लेकर?
2: देखिए आकाशवाणी बहुत सुंदर मिश्रण है परंपरा का भी और आधुनिकता का भी। इस भवन के अंदर आते ही हमें सबसे पहले दिखते हैं पुराने सेट और बहुत सुंदर है वो तस्वीर, और वो भी तस्वीर जहाँ महात्मा गांधी का जिक्र है।
1: बिल्कुल।
2: उसके बाद अंदर आने पर अभी देखिए हम जिस स्टूडियो में है पंडित रविशंकर, उनके नाम पर इस स्टूडियो का गठन किया गया है और तमाम स्टूडियोज ऐसे ही नामों के साथ जुड़े हैं। जो यहाँ का जो गलियारा है वो भी इतिहास की बड़ी सुंदर तस्वीर हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि आकाशवाणी ने हमेशा से ये समझा कि इतिहास को सहेजना, उसका सम्मान करना, वर्तमान पर पूरी नजर रखना और भविष्य की तरफ उन दरवाजों को खुला रखना, जो इन तीनों को एक साथ सहेज लेता है वही आगे बढ़ पाता है। आकाशवाणी इसका बहुत सुंदर प्रतीक है। एक और बात जो लगती है कि आकाशवाणी ने आर्काइव्स पर बहुत जोरदार काम किया, उसने किसी भी तरह से इतिहास को मिटने नहीं दिया। 15 अगस्त 26 जनवरी की जिस परेड को और जिस भव्य समारोह को दूरदर्शन के आने इससे पहले या फिर आने के बाद भी लोग तन्मयता से सुना करते थे और कल्पना करते थे कि क्या हो रहा होगा, वो झांकियां क्या होगी, उसे आंखों देखा बताने वाला आकाशवाणी हम सबको ये भी बताता रहा कि बिना देखे भी आपके अंदर एक टेलीविजन है, रेडियो आपके लिए टेलीविजन बन गया था और आज भी रेडियो हमारे लिए वो टेलीविजन है। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो का भविष्य, आकाशवाणी का भविष्य इस लिहाज से भी बहुत सुनहरा है कि ये हमारे इतिहास को संजोकर रख रहा है, वर्तमान के बदलावों को वो सोख रहा है और आने वाले समय में जिस तरह की आकाशवाणी की हमें जरूरत होगी उस हिसाब से वो अपने आप को रोज बदल रहा है। आकाशवाणी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि जो बुजुर्ग हैं उनका भी आकाशवाणी था, जो आज बच्चा है उसका भी आकाशवाणी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज में जो हम

0: पढ़ा रहे हैं वहाँ पर भी आकाशवाणी की मौजूदगी हमेशा रहेगी। ये बात अलग है कि जब सिलेबस डिजाइन होता है हर बार इस बात की बहस होती है कि जो तिजोरी भर रहा है कहीं वो ज्यादा प्रभावशाली तो नहीं है, लेकिन वो बहस हर बार इस दबाव के आगे हार जाती है कि आकाशवाणी की जगह कोई नहीं ले सकता। असल में आकाशवाणी हमारा नींव है, उस नींव के आगे ही बाकी संसार है।
1: तो अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ रहे हैं, इससे पहले मैं चाहूंगा कोई भी श्रोता जो यहाँ बैठे हुए हैं कोई सवाल पूछना चाहे हम किसी से तो पूछ सकते हैं। जी हाँ, आप बताइए अपने नाम के साथ।
2: मैं डॉक्टर विक्रम गौड़ रसिक, मैं स्वयं पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। रेडियो पत्रकारिता में मैंने बहुत कुछ लिखा है और माननीय वर्तिका मैम भी पढ़ाती हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप महाविद्यालय में पढ़ाती हैं, मैं विद्यालय स्तर पर 11वीं-12वीं को पढ़ाता हूँ। मैं माननीय टंडन जी से एक सवाल करूँगा कि आज के परिदृश्य को लेकर के हम क्या ऐसा करें कि आकाशवाणी विश्व में क्रांति लाए आज के युग में।
1: जी टंडन साहब,
3: धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे उद्गार रखे, लेकिन मेरा मानना है कि आकाशवाणी आज उस चरम पर पहुंच चुकी है जहां पर उसको पहुंचना था, और किसी भी तरह से वो न तो तकनीकी तौर पर ना और व्यवहारिक तौर पर किसी भी दुनिया के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनसे किसी मामले में कम नहीं है। हम विकासशील देशों के तो अग्रणी हैं ही हैं। आज आकाशवाणी और प्रसार भारती का जो मुकाबला है वो विकसित देशों के जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं उनके साथ हो रहा है, और मैं ये कहना बिल्कुल उचित समझता हूँ कि कई विकासशील देशों के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स के लोग हमारे यहाँ भारत में ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं कि वो कैसे अपने पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को सुधार सकते हैं। हम अग्रणी हैं और अग्रणी ही रहेंगे। अभी भी बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की ओर देखते हैं कि यहाँ का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऐसे कैसे इतनी सक्षमता के साथ चल रहा है। और एक बात और बताना चाहूंगा, हमारे पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर पर विशेष तौर पर आकाशवाणी के समाचार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई कि ये केवल और केवल सरकार की खबरें देता है और उसमें संतुलन नहीं बनाता, और ना ही कभी किसी तरह का प्रोपेगेंडा करता है, सरकार के पक्ष का भी नहीं है। और लोकतंत्र के नाते भारत में क्योंकि एक फ्री प्रेस है तो उसमें हम कभी ऐसा भी नहीं है, मैंने स्वयं देखा है कि बुलेटिन के बारे में पूरा लोग एनालिसिस करते हैं कि कितने मिनट सत्ता पक्ष को दिए गए, कितने मिनट विपक्ष को दिए गए, कितने मिनट किस नेता को दिए गए। तो अभी तक आकाशवाणी के न्यूज बुलेटिन के बारे में कभी किसी विरोधी दल ने शिकायत भी नहीं की कि आप बायस्ड हैं। ये जो एक आकाशवाणी ने अपनी एक साख बनाई है उस साख को आगे बढ़ाकर रखना है, और कोई कारण नहीं है कि जो आप चाहते हैं कि आकाशवाणी और इससे ऊंचे मुकाम पर जाए। वो जहां जहां पर भी ब्रॉडकास्टिंग का मुकाम जाएगा दुनिया में स्टैंडर्ड जाएंगे। भारत न तो बीबीसी से पीछे है, न वॉइस ऑफ अमेरिका से पीछे है, न चाहे डॉइश वेले है, ये दुनिया के जितने बड़े पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर हैं या उन सब की अग्रणी श्रेणी में भारत का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर आता है और हमेशा बना रहेगा।
4: एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगी आपकी बात का, जब उन्होंने पूछा कि भविष्य में कैसे और ग्रो कर सकता है। देखिए, भारत जो देश है जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवाओं का देश है, और अभी हम लोग ने सुना कैसे जापान सबसे एजड कंट्रीज में से है, तो उनकी अलग चुनौतियां हैं। लेकिन यदि आकाशवाणी को युवाओं में लोकप्रिय होना है, क्योंकि हमारी आपकी जनरेशन, टंडन साहब की जनरेशन, तो हम लोग तो अभी भी आकाशवाणी पर जाएंगे, लेकिन यदि युवाओं में आकाशवाणी को उतना ही पॉपुलर रखना है जितना पहले रहा है, उसके लिए युवाओं पर केंद्रित विशेष प्रोग्रामिंग वो करनी होगी। और अभी मैंने ये देखा है कैसे सोशल मीडिया पे आप देखिए रील्स, आकाशवाणी ने जो रील्स का अपनाया, आज युवाओं में रील्स बहुत पॉपुलर है, तो वो रील्स को भी आकाशवाणी ने अपना लिया है, और जो रेडियो पे नहीं सुन रहे हैं वो रील्स के माध्यम से ही आकाशवाणी को सुन रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की मन की बात की अलग अलग विषयों की छोटी छोटी स्टोरीज बनी हो, या फिर कोई घटनाएं हो रही हैं, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, चाहे अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं, उसको जो रील्स के रूप में आकाशवाणी दे रहा है, तो यदि यंगस्टर्स में पॉपुलर होंगे तो भविष्य भी उज्ज्वल होगा।
1: बिल्कुल। और कोई सवाल पूछना चाहें बताएं। जी आप बताएं।
5: मेरा सवाल प्रज्ञा मैम से ही है। खुश हुई इस बात की जानकर के सर की पहली कमाई मैम की भी युवाणी से, आपकी भी और मेरी भी सर वहीं से हुई। मैम मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला ही है, और मैं पिछले 26 वर्षों से यहाँ जुड़ा हुआ, और कई सारे स्कूल में कॉलेजेस के अंदर मैं रेडियो पढ़ाने के लिए जाता हूँ,
1: इसीलिए रेडियो वाला आपका नाम है।
5: सर ये लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर शामिल है, क्योंकि मैं आकाशवाणी का प्रोडक्ट हूँ तो मैं आकाशवाणी को हर समय आगे रखता हूँ। लेकिन जब ये कहा जाता है

0: कि नहीं आप और प्राइवेट चैनल्स को और बताएं, उनके बारे में बताएं, उनके आरजेस के बारे में बताएं, उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में बताएं, तो वहां पर मैं कैसे मैम तालमेल किया जाए।
1: आपने सही कहा कि जो मैंने पहले बात कही थी कि आज जो यंगस्टर्स में कौन पॉपुलर है, हम आकाशवाणी को रेस में नहीं पढ़ना है पॉपुलैरिटी की, लेकिन जो तरीका है एंटरटेनमेंट का ही देने का वो थोड़ा सा बदल गया है। कैसे और ज्यादा पुराना एक आकाशवाणी का पैटर्न होता था उस हिसाब से हम कैसे बदलें आज के समय के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि वो अनर्गल जो बातें कर रहे हैं वो हम लोग लाएं, गंभीरता भी मनोरंजक तरीके से, थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से गंभीरता भी दी जा सकती है, क्योंकि हमारा काम है एंटरटेन करना, सूचना देना, दोनों को कैसे एक अच्छा बैलेंस बनाया जाए वो आकाशवाणी को करना बहुत ही जरूरी है।
2: जी आप पूछिए सवाल।
3: जी नमस्कार।
2: नमस्कार।
3: मैं डॉक्टर पारुल राज, वैसे मैं बनारस से हूँ, मैं कवित्री भी हूँ, तो मेरा एक रहता है स्त्री विषय मेरा है मेन, तो जो कहते हैं ना कि एक कोना जो खाली है वो अगर हम उस चीज को मनोवैज्ञानिक तरीके से समझ के और उसको हम प्रसारित करें, कार्यक्रम बनाएं, और तो वो मेरे मतलब एक मेरा ये सुझाव है।
2: ठीक है, आपका अच्छा सुझाव है। हालांकि महिलाओं को लेकर केंद्रित कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं और कवियों को लेकर भी चल रहे हैं, और यहाँ भी बहुत सारे कवियों को आमंत्रित करके विशेष कार्यक्रम,
1: एक विविध भारती पे एक सखी सहेली बहुत पॉपुलर
2: सखी संगीत चल रहा है, महिलाओं को अचार बनाना, ऐसी घर की चीजों को बनाना, इतना लोकप्रिय कार्यक्रम था वो। कई बार वो जो व्यंग्य कार्यक्रम उसमें जोड़ देते थे कि आप जो अचार बनाने से कह रहे हैं कि आप इसको ऐसे कीजिए, इसमें डुबो दीजिए, तो कई पति को सलाह दे रहे हैं उसको डुबो दीजिए, तो इस तरह कह रहे, वो कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय रहा। तो इसलिए ये बहुत कार्यक्रम ऐसे है जो लोकप्रिय। जी मैं एक बार आपसे और जानना चाहूंगा टंडन साहब कि आप वाजपेयी जी के मीडिया सलाहकार भी रहे, तो वाजपेयी जी कोई बहुत कवि तो थे ही और दिग्गज राजनेता थे, वो रेडियो को लेकर कैसे सुनते थे आकाशवाणी को और क्या उनका रहता था?
4: अटल जी की बहुत सारी कविताएं आकाशवाणी पर भी प्रसारित हुई हैं, तो देखिये वो भी जिस युग में पढ़े भले, तो रेडियो तो जीवन का एक अंग था ही, और मेरा ऐसा मानना है कि समाचार सुनने में, सामयिकी या और ऐसे कार्यक्रमों को सुनने में सभी राजनेताओं का बहुत विशेष एक ध्यान रहता था आकाशवाणी की तरफ, इंतजार करते थे लोग कि कब समाचार बुलेटिन आए, कब शाम के जो इनका चर्चा आए। वो सारी जनरेशन तो आकाशवाणी के साथ ही आगे बढ़ी है, और उसमें राजनेता कहीं कोई अलग नहीं है।
2: तो जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, जाहिर इतने सारे अखबार आते थे, उनका मीडिया क्लिपिंग्स आती थी, तो तब भी उनका रेडियो के प्रति, खासतौर समाचारों के प्रति,
4: जैसे जैसे समय बदलता गया तो आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो लोग कार में बैठकर ही चलते हुए सुनते हैं, और आज भी वही है। आज मुझे नहीं लगता किसी भी घर में रेडियो होगा, और ना ही हमने कभी रेडियो पर समाचार सुने। आज समाचार बुलेटिन केवल और केवल कार के अंदर ही सुना जाता है,
2: बिल्कुल,
4: और जितने लोग भी कार से सफर
2: सुबह 8 बजे शुरुआत होती है वो,
4: तो
2: रेडियो
4: इसीलिए जुड़े रहते हैं कि वो देश दुनिया के साथ उनका जुड़ाव है, क्योंकि चलते हुए भी उनको पता चलता है देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ पत्रकार होने के नाते भी कि जो आकाशवाणी के समाचार बुलेटिन है या जो उनके विशेष कार्यक्रम है, स्पॉटलाइट है, ये आज भी बहुत आवश्यक है, हिस्सा है जीवन का, तो इससे लोग अलग नहीं हो सकते। अपने मोबाइल पर भी हम समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के सुन सकते हैं, तो ये जो सुविधा आई है इसमें मेरा ऐसा मानना है कि समाचार बुलेटिन और ये जो कार्यक्रम है सामयिकी, इसमें कोई प्राइवेट चैनल इसका मुकाबला नहीं कर सकता।
2: बिल्कुल।
5: नमस्कार। मैं एज इंजीनियर, यहाँ मेरी पहली नौकरी यहाँ लगी थी, और मेल्ट्रॉन का जो ये रखा है टेप रिकॉर्डर, इसको हम ही मेंटेन किया करते थे, सरदार जी होते थे, लेकिन मैं इंजीनियर से साहित्यकार बन गया, मैं आज मैं पोएट हूँ, वो सब इसी की देन है आकाशवाणी में जो आर्टिस्ट लोग आते हैं। तो उस समय जो टेक्नोलॉजी थी, जो टेक्नोलॉजिकली भी आकाशवाणी को सुने लोग बाग ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आर्ट कहीं खुलती जा रही है, बस इतना ही।
2: ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही है, और आप भी आइए।
6: मैम मेरा नाम कीर्ति बैद है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि पत्रकारिता को 200 वर्ष हो रहे हैं, रेडियो को 100 वर्ष 2027 में हो जाएंगे, और एक शोधार्थी होने के नाते मुझे लगता है कि हमारी जो इतनी लंबी यात्रा रही है उसमें शोध की दिशा में भी काम होना चाहिए, क्या आकाशवाणी भी इस दिशा में काम कर रहा है?
1: बहुत सारे रिसर्च पेपर्स और पीएचडी रिसर्च के लिए जो आकाशवाणी के जो आर्काइव्स थे उसमें बहुत लोग आते हैं रिसर्च करने के लिए, किसी को कोई क्लिप पुराना भाषण सुनना है विशेष रूप से, आकाशवाणी आकाशवाणी के पास जो रिकॉर्ड हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के लाल किले से संबोधन है, यदि उसका भी विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है,
2: बड़े-बड़े संगीतकारों की जो उनकी रिकॉर्डिंग है,
1: बिल्कुल, और उनके जो साक्षात्कार है उस पर आधारित बहुत सारे रिसर्च पेपर्स बने हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं।
2: बिल्कुल आपकी बात सही है।

0: बड़ी अच्छी बात है कि इतने अच्छे काम जो आकाशवाणी ने किए हैं वो हमेशा याद रहेंगे, और आज भी आकाशवाणी जो है वो सभी से आगे है। आकाशवाणी पर अभी मैंने कुछ दो तीन पंक्तियां लिखी हैं अपने मेरे कवि मन ने कि आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, आकाशवाणी का आज भी नहीं दूर दूर तक कोई सानी, 90 वर्षों से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, बस मिलता रहे यूं ही श्रोताओं का प्रेम स्नेह, युगों युगों तक अमर रहेगी हमारी ये आकाशवाणी।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: आकाशवाणी भोर से पहले भोर के बाद। आकाशवाणी की स्थापना के आधिकारिक रूप से 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अभी आप आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित ये वार्तालाप सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे भारतीय जनसंचार संस्थान की कुलपति और आकाशवाणी की पूर्व महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक प्रोफेसर अशोक टंडन, वरिष्ठ लेखिका प्राध्यापिका और मीडिया विशेषज्ञ डॉक्टर वर्तिका नंदा। इस वार्तालाप का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया विशेषज्ञ श्री प्रदीप सरदाना। कार्यक्रम का नियामन कर रहे थे कमल किशोर बड़ाइक। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण लाल मीणा, और कार्यक्रम का संयोजन किया था राम अवतार बैरवा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगनयात्रियों में से एक ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
5: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च

0: या आयुष्मान भारत और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के ऋतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2,00,000 रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5,000,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2,00,000 रुपये और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एंटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
2: To develop the industrial ecosystem.
3: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत

0: अमित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
5: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण

उन पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जमहूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्त गिर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंबा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जे पी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी

0: जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2 लाख रुपये और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपये की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जाँच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सी पी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने क़याम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के असूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा अहम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ़ के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है, जो जंगलात और माहौलियाती निज़ाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
5: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5 बजकर 15 मिनट तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वाजे किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताज़ा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़राअत से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर्स है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और DMK ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
6: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
7: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: भारत ने मगरबी एशिया में ताज़ा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि ये ताज़ा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज़्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने फरीकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुँचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्े में अमन इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिज़ाइल हमले किए हैं जिसे मगरबी एशिया में जंग बंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सफारतखाने ने भी ताज़ा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफ़र न करने की सलाह दी है। भारतीय सफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफ़र के दस्तियाब वसाइल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनअती पार्कों की तरक्की में तेज़ी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का आगाज़ किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनअती को निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज़म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनअती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर।

0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराए से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फ़ोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289-0044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूँगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफ़ी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफ़ी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुँचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए जो कि कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाना चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह से खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पर उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएँ, कौन सी किस्म लगाएँ जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज़ करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज़्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को ज्ञान ये समझाना है कि मिट्टी की जाँच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित किया जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ मैं दूसरी बताना चाहूँगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो
0: जी। आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
0: जी,
2: प्रणाम
0: जी।
1: नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: सर जी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
1: ब्रह्मजीत जी, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज़्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि ज़मीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफ़ी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं। और आजकल मोटे अनाजों की भी काफ़ी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनके अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को और हम काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफ़ी संभावना है। और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ ज़मीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पर भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज़्यादा तो वहाँ केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीज़ों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज़्यादा आमदनी मिल सके।
0: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
3: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादातर किसान भाई एक या दो या ज़्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है और वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया। अभी क्या है ना हमारी ज़्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक मेन्योर या ऑर्गेनिक बेस कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे तो वहाँ पे क्या है ना एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है
0: हो जाती
3: और उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
0: डॉक्टर आपसे बात जारी रखेंगे, पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
4: जी नमस्कार, मैं राकेश
0: जी
4: राकेश बात कर रहा हूँ कोट खाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: धन्यवाद
4: जी। तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं एप्पल के बाग, तो मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालना चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है
0: डॉक्टर मीना।
3: तो राकेश जी जैसे आप

0: बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं और अम्लीयता लगातार जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई। तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है। मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है,
1: जी
0: बोरोन एक नंबर वन जो मतलब कैल्शियम और बोरोन ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है और इसकी कमी कमी बहुत ज़्यादा है। किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसलिए
0: तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है कि जो
0: ज़रूरी है।
1: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
2: जी नमस्ते। हाँ
1: नमस्ते
2: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी।
2: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर
3: योगेश जी, जो भी हमारे फसल जो हम अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के इसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व तो भी सप्लाई करते हैं और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में तीन प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है और वो भी एक या दो पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूँगा कि अपनी खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीज़ें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूँगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो
4: हेलो
1: जी अनिल जी।
4: मैम हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकते हैं किसानों के खेत बचाने के लिए?
3: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना जाना चाहिए, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सभी योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफ़ी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हों और किसानों के जो संगठन बने आज के किसान उत्पादक संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश के मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
5: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
5: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए।
1: जी डॉक्टर मीना।
0: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा जो, क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले दो मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहाँ से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई जैसे जो आपकी सीजनल फसल हैं जो एक सीजन में ख़त्म होती हैं उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहाँ से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ ज़रूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
0: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं, और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप ज़रूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा अवशेष या हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के बारे में, हरी खाद मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में। डॉक्टर
3: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफ़ी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पे इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक आर्मी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इंकॉर्पोरेट कर देते तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं

0: विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन हैं वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियाँ भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाएं, साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा और हमारे गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गाँव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियाँ भी चला रहे हैं तो उसका भी काफ़ी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का जो कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीज़ों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो विक्स डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद हैं जो उनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीज़ें हैं जो फफूंद नाशक, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाएं। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है, तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना।
1: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
1: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
1: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
0: मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता है, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जांपल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक समट एक गेहूं में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफ़ी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगी, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, बीज उपचार के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है, जैसे हमने रुपाई करनी है, तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफ़ी प्रयोग किया जाता है और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं, जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज़्यादा लाभ देती हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
1: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
1: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
4: जैसे इंद्रबान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहाँ पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पर वहाँ पर एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी एक किसान की जागरूकता, जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन

0: और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1501 5551। तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर। इसी तरह एक पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का एसटीडी कोड लगाएंगे 0112584 1670। ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक जो अभी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ। खासकर अगर मिसाल का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें, तो यहाँ पर स्प्रिंकल इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पर कोई पैदावार नहीं होती थी, आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में कम जा रही है, उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी, हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
2: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
3: नमस्कार जी।
2: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी एक
1: जी। राजेंद्र जी, हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
2: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है? और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पर कोई लोन मिलना?
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को पहले हम उसका क्या ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जाँच करा लें, क्योंकि जाँच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो पीएच डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
0: देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज़ हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही, हम फसल से ज़्यादा या संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाती है, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी, और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान हैं उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर सदुपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की ज़रूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर दबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम सम्पन्न करने की। नमस्कार।
3: नमस्कार जी, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य से बाहर क्यों ना रहें। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कांग्रेस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री खड़गे ने कहा कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता की कमी हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतुब्रत बनर्जी को विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष चुनने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतुब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के आदेश भी दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमान की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी। और खेलों में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन एक पारी और 300 रन से हरा करके अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

0: day. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिडी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 10:10 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं गजलों पर आधारित कार्यक्रम गुलदस्ता। सुनते हैं फनेश पवार की आवाज़ में ये गजलें। संगत कलाकार है हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष, सारंगी पर तनिष धोलपुरी और तबले पर मुस्तफ़ा हुसैन।

अभी आप सुन रहे थे फनीश पवार की आवाज़ में गजलें, कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।

मिडिल वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि की 10:30 होने को है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं उज्ज्वल नागर का राग बागेश्री में गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे उज्ज्वल नागर का राग बागेश्वरी में गायन।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियो वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 11 बजने को है। आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है, ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्स, DRM 810 किलो हर्स पर। रात्रि की 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का स्नेह भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी पसंद लेकर, जहाँ बात होगी गीतों की, एहसासों की और दिलों से निकली उन बातों की जो सीधे दिल तक पहुँचे। तो सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: आप सुन रहे हैं दोस्तों कार्यक्रम फिल्म संगीत, और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया, और मेरी सहयोगी है ज्योति शर्मा।
1: बिल्कुल, मैं भी आपके साथ जुड़ गई हूँ। और प्रिया, अगर बात करें दोस्ती की, तो दोस्ती जो है ना, वो एक शब्द नहीं है, वो एक रिश्ता है, और वो एक खूबसूरत एहसास है जो हमें दीवाना बना देता है। क्या
0: बिल्कुल।
1: कहती हो?
0: और एक दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमारा जमीन पर आकर होता है। सब तो रिश्ते भगवान जैसे रिश्ते बनाए, माँ बेटा जो भी, लेकिन दोस्ती का रिश्ता हम खुद बनाते हैं, हम खुद चुनते हैं, क्योंकि हमें वो दोस्त ऐसा लगता है कि जब हम किसी को बनाते हैं कि वो हमारा ही वो है
1: बिल्कुल
0: शक्ल में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो रिश्ता हम इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है ना कि एक इंसान ऐसा होना चाहिए जिससे हम अपने दिल की बात कर सकें और जिसके साथ हम वक्त बिता सकें और जिसके साथ ये कहें कि कई बार बात भी नहीं कर रहे हैं बट साथ में बैठे हैं तो भी लगता है कि हाँ, कुछ सुकून सा मिल रहा है ना।
0: अपनी हर बात शेयर कर सके। आप ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, आपको बता देते हैं। इस गीत की फरमाइश की थी शास्त्री नगर भीड़ शहर से किशन सतपाल, आशा सतपाल, सोनिया सतपाल, साईराज सतपाल, विशाल सतपाल। दिल्ली से इस गीत की फरमाइश की थी एसपी सिंह, प्रियाशी, वेदांशी, नीलम और वृंद सिंह ने।

0: दोस्तों, दोस्ती में ना दौलत देखी जाती है ना हालात देखे जाते हैं। बस दिल साफ होना चाहिए और फिर देखिए दोस्ती का रिश्ता कैसे गहरा हो जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और पहले तो कहते हैं ना, जब हम किसी से मिलते हैं तो निगाहें मिलती हैं, और निगाहें ये बताती हैं कि सामने वाले का जो मिजाज है वो कैसा है, सामने वाला कैसा है, कुछ हद तक बताता है। और फिर धीरे धीरे बातें होती हैं, और बातें होने के बाद एक दूसरे को हम समझते हैं, और समझने के बाद कई बार थोड़ी बहुत तकरार या कुछ ऐसे, ये कहते हैं ना, खट्टा मीठा एहसास भी होता है। और उसके बाद भी अगर कहें कि रिश्ता बना रहता है, तो इसका मतलब ये जो रिश्ता दोस्ती का है वो गहरा होने वाला है। और बात मैं अगर करूँ तो हम बचपन से ही, छोटे जब होते हैं तब से ही दोस्त बनाते हैं। अगर तुम्हें याद हो प्रिया, जब स्कूल में छोटे थे तो बहुत सारे दोस्त थे ये, और पल पल में बदलते भी रहते थे कि अब आज ये
0: अजीस
1: है,
0: हाँ
1: कल उस
0: अब्बा
1: वो,
0: कुट्टा।
1: हाँ, और आज वो है, आज ये है, और इससे दोस्ती है, अब उससे दोस्ती है। लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं ना, तो वो जो संख्या है वो कम होती जाती है, क्योंकि हमें वो लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो कहें कि हम, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, है ना। बिल्कुल, वो जो, और बात वैसे ये भी बहुत कहते हैं ना, पते की है कि आपको भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, आपको वो दोस्त चाहिए जो आपको समझे, जो आपकी बात को सुने, है ना। और मैं ये कहूँ कि भीड़ इकट्ठी करने से होता क्या है, हम उलझ जाते हैं, और वो जो एक सच्चे दोस्त की तलाश होती है वो हम कर ही नहीं पाते।
0: कम दोस्तों पर सच्चे दोस्तों, ज्यादा भीड़ बनाने से अच्छा है आप दो चार दोस्तों पे यकीन करें, उनको अपना पहले उन्हें पहचाने या फिर आप दोस्ती करें। अच्छा, इस गीत की फरमाइश की थी मध्य प्रदेश से मोनू विश्वकर्मा, संगीता माही, और साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता ने।

0: अभी तो महफिल में बातें बाकी हैं, थोड़ी हंसी और कुछ यादें बाकी हैं। यूं जल्दी उठकर मत जाइए दोस्तों, आपके साथ बिताने हैं कुछ पल और भी बाकी हैं।
1: बिल्कुल, घड़ी की सुई जो है वो इशारा कर रही है 11:33 और पूरे ये हो चुके हैं 12 सेकंड, और हम दोनों दोस्त मिले हैं और बात दोस्ती की हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे ना कि हम छोटे से ही शुरुआत करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपने छोटे में ज़्यादा दोस्त बनाए थे या बड़े में ज़्यादा दोस्त बनाए
0: छोटे
1: थे?
0: में ज्यादा बने थे, बड़े में कम हो गए थे, लेकिन दोस्त ये तो है।
1: हाँ, क्योंकि वही मैं बात कर रही थी ना कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ी समझदारी आ जाती है, और वो आनी भी चाहिए कि आप जो दोस्त बनाते हैं ना उसे दोस्त ही अगर बनाए तो अच्छा है। किसी को भी आप अपने पर अगर हावी होने देते हैं ना तो वो दोस्ती दोस्ती नहीं रह जाती है। और हाँ, सुनना, एक सुनना किसी की बात, ये भी बहुत मायने रखता है।
0: और मायने ये भी रखता है कि आपके दोस्त में हमेशा मिठास ही ना हो, उसमें कड़वाहट भी हो, आपको समझाए तो उस पर आप रिएक्ट ना दें। मतलब हर चीज़ को हर मोड़ पे उसको समझना होता है, ये नहीं
1: बिल्कुल
0: है कि आप वो आपकी तारीफ कर रहा है तो बस ये मेरा पक्का दोस्त है, ऐसा नहीं हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तुम जैसे जो बात कह रही हो उसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लाइक अगर आपका दोस्त कुछ गलती कर रहा है तो ये अगर आप अच्छे दोस्त हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे बताएं कि ये चीज़ गलत है। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ तारीफ़ करना या हमेशा अच्छा अच्छा अच्छा बोलना नहीं होता है। दोस्ती का मतलब ये भी होता है कि अगर आप अपने दोस्त को अगर वो किसी गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे उस रास्ते पर जाने से रोकना है।
0: अभी आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज़ में ये गीत, और इस गीत की फरमाइश की थी अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। साथ ही इस गीत की फरमाइश की थी दिल्ली से अनिल मोहन, उषा मोहन टिल्लू और मधु नायक ने।

0: जी हाँ दोस्तों, जब कोई दोस्त ना बहुत दूर चला जाता है, मतलब कि एक स्टेट से या दूसरे स्टेट, या मिल नहीं पाता, तो दूसरे दोस्त के दिल से आवाज़ यही निकलती है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम।
1: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मुलाकात होती रहती है ना, तो फिर बात होती रहती है, और वो बात जो खुल के हम कर पाते, क्योंकि भले ही फ़ोन का ज़माना है और यूं झट से नंबर मिलाया और हम बात कर लेते हैं, लेकिन जो बात, जो मज़ा मिलके बात करने में होता है
0: सामने
1: ना,
0: बैठ के
1: हाँ, वो मुलाकात जो है वो असर देती है ना, वो वाकई बहुत अच्छी लगती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर दोस्त हैं, भले ही बहुत व्यस्त हैं, रोज़ नहीं मिल सकते, तो कोई ना कोई दिन ऐसा ज़रूर बनाना चाहिए कुछ समय के बाद, ताकि मिल सके, बात कर सकें और अपने प्यार को एक दूसरे में बांट सकें।
0: क्योंकि दोस्ती में मुलाकात जरूरी है। अभी इस गीत की फरमाइश की थी महाराज से नासिर शेख ने, नाजिया नासिर ने, साजिद ने, गोविंदपुरा से जुनेद मुजावर, सबिया और माइकल मुजावर और जने मुजावर ने।

0: दोस्ती का रंग भी कितना खास होता है दोस्तों, जो हम चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है, ना कोई शर्त ना कोई मतलब होता, बस दिल में दिल से एक रिश्ता जोड़ लेता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये रिश्ता इतना खूबसूरत होता है जो आपको ये एहसास दिलाता है कि जो आपके रिश्ते हैं जैसे माँ बाप या भाई बहन के अलावा, उसके अलावा भी ये खूबसूरत रिश्ता हो सकता है जो कि दोस्ती का रिश्ता होता है। और
0: बिल्कुल
1: एक बात करूँ तो मुझे लगता है कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि जो हमें बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं। एक तरह से ये कहूँ कि ये उस बनाने वाले की कृपा ही होती है कि हम किसी अच्छे इंसान से मिल पाते हैं। क्या कहती हो?
0: जी, बिल्कुल ये तो ये है। और साथ में कि हमें दोस्त अच्छा मिल जाए ना, तो ये तो हमारा नसीब ही खुल गया कि हमें दोस्त अच्छा मिला और हम उससे अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कई बातें हम अपने परिवार से भी शेयर नहीं कर सकते।
1: और एक अच्छी बात बताऊं कि हमारे दोस्त हमारे साथ यहाँ आकाशवाणी में भी जुड़ते हैं, तो वो जो दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं ना, उसमें भी एक बहुत कहते हैं ना सुकून आता है और बहुत मज़ा मिलता है। और सच बताऊं जब हम आपके साथ ये वक्त होता है ना, बात कर पाते हैं और आपसे जुड़ जाते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है।
0: हमें लगता है कि आप भी हमारे दोस्त हैं, और बहुत अच्छा लगता है आप हमें मैसेज करते हैं। इसलिए पता फिर से नोट कर लीजिए, ibradiodelhi@gmail.com। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने।

0: पहले बस बातों का सिलसिला था, फिर आदत सी बन गई। पता नहीं चला दोस्तों से हुई कुछ कहानी कब प्यार में बदल गई। तो प्यार, दोस्ती से प्यार तक का रिश्ता, वो भी बड़ा अनोखा है ज्योति।
1: बिल्कुल सही कहा। और ये जो अनोखा रिश्ता है वो सबका यूं ही बरकरार रहे, और मैं कहूँ कि जीवन में आपको अच्छा और एक सच्चा दोस्त ज़रूर मिले।
0: बिल्कुल। और अगर वो प्यार में बदल जाता है ना, मतलब ज़रूरी नहीं है दोस्ती लड़की लड़की की होती है, लड़के लड़के की होती है, लड़के लड़की की भी हो सकती है। तो अगर वो दोस्ती अगर प्यार में बदल जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि आप दोस्ती और प्यार को बड़े अच्छे से, ये नहीं कि प्यार के बाद वो दोस्ती ख़त्म हो गई, उसको कंटिन्यू रखें और बहुत अच्छे से रखें, और अपना दोस्त को प्यार में कन्वर्ट करके उसे शादी का रूप दें। इस गीत की फरमाइश की थी चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे ने।

0: तो इसी आखिरी गीत के साथ हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन आप कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। और जाते जाते यही कहेंगे कि हंसते रहिए,
1: मुस्कुराते रहिए
0: और हमारे साथ यूं ही बने रहिए।

इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया अब आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी हैं। अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य

0: योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुँच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक कल नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी हैं। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और ये समय होता है बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ दोस्तों, आज जो कार्यक्रम होने वाला है तो वाकई बहुत ही सुंदर है, बेहतरीन है, लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी विशेष कार्यक्रम का शुरू का सफरनामा, जी हाँ, जिसमें आज आप सुनेंगे SD बर्मन साहब की आवाज़ में बहुत ही सुंदर, बेहतरीन और उनके संगीतबद्ध किए हुए बेहतरीन शानदार रचना। यहाँ दोस्तों, आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। नमस्कार देवियों और सज्जनों और हमारे दोस्तों, संगीत की उस जादुई दुनिया में आपका स्वागत है जहाँ धुनें सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं, जहाँ नदी की कलकल, नाविक की पुकार, खेतों की महक और प्रेम की मासूमियत सुर बनकर बहती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक महान संगीत साधक की कहानी, जिसकी धुनों ने भारतीय सिनेमा को नई पहचान दी। एक ऐसा संगीतकार जिसने लोक संगीत की मिट्टी को शास्त्रीय संगीत की गरिमा से सजाया है। एक ऐसा फनकार जिसकी रचनाएं आज भी हवाओं में गुनगुनाती है। जी हाँ, आज का यह विशेष कार्यक्रम समर्पित है भारतीय फिल्म संगीत के अमर शिल्पी, सुरों के जादूगर बर्मन दादा यानी सचिन देव बर्मन को। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि सुरों की नदी थी, सुरों की नदी थी वो बहता समंदर था, सुरों की नदी थी वो बहता समंदर था, हर धुन में मोहब्बत का एक खूबसूरत मंजर था, जिसने संगीत को रूह की जुबा दी, जिसने संगीत को रूह की जुबा बना डाला, वो कोई और नहीं अपना बर्मन दादा था। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। और परिचय के बारे में अगर उनकी हम जानकारी बताएं तो सचिन देव बर्मन यानी कि SD बर्मन साहब, जन्म 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल के कुमिल्ला यानी कि अब जो बांग्लादेश में है हुआ करता था। वे त्रिपुरा के राज परिवार से संबंध रखते थे। साथियों, ले चलेंगे कुछ ही पलों बाद, उससे पहले एक शानदार खूबसूरत गीत सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं, उसके बाद और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक सुनते ये शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और इस गीत के बारे में जो जानकारियाँ हैं वो हम आपको बता देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़िल्म थी तदबीर बाजी। जी हाँ, बाजी फिल्म, और इसी फिल्म का गीत था तदबीर से बिगड़ी हुई तस्वीर बना ले। वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत है, गीता दत्त और लता मंगेशकर की बेहतरीन खूबसूरत आवाज़ में, और साथ दिया है जी हाँ कोरस ने। ये फिल्म बाजी फिल्म 1950 की प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत साहिर के थे और संगीत SD बर्मन साहब का। आइए बढ़ते हैं। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी तथा बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के लोक संगीत को आत्मसात किया। आगे चलकर यही लोकधुनें उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत। जी हाँ, फिल्म इश्क पर जोर नहीं, ये फिल्म वाकई बेहतरीन लाजवाब फिल्म रही है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना, संगीत से सजाया है एस डी बर्मन साहब ने। साथियों, एस डी बर्मन साहब के बारे में और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, और जैसे कि उनकी जो पत्नी थी मीरा देश और दास गुप्ता, और उनके पुत्र थे महान संगीतकार राहुल देव बर्मन, जिन्हें हम कहते हैं आर डी बर्मन साहब। जी हाँ, एक बहुत ही प्यारी खूबसूरत बात जो कहते हैं बर्मनदा, कहते हैं कि बर्मनदा ने अगर कहा जाए तो बहुत सारी चीज़ें की हैं, और उन्होंने अपने संगीत जीवन की शुरुआत कोलकाता रेडियो स्टेशन और बाद में आकाशवाणी से ही आकाशवाणी की, और 1944 में मुंबई आकर फिल्म संगीत में नई क्रांति ला दी थी। या दोस्तों, और इनकी जो धुनें थी वाकई बहुत ही खूबसूरत थी। बर्मन दादा नाविकों, मछुआरों और ग्रामीण गायकों के बीच बैठकर लोग धुनें सीखा करते थे। यही कारण है कि उनकी धुनों में मिट्टी की खुशबू सुनाई देती है।

जी हाँ साथियों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचना भी आप सुन रहे थे। पिया तो से नैना लागे रे, वाकई बहुत ही प्यारी खूबसूरत रचना भी आपने सुनी, वाकई बहुत ही लाजवाब। और क्या कहें इस गीत के बारे में, एक एक गीत ऐसा लगता है कि बस दिल में बस जाता है। जी हाँ, फिल्म गाइड से लता मंगेशकर की आवाज़ में सुंदर रचना, गीत शैलेंद्र के थे और संगीत SD बर्मन साहब का ही था। बढ़ते हैं और भी जानकारियों की ओर। साथियों, बहुत ही सुंदर सुंदर गीत उन्होंने निर्माण किए हैं, यानी कि उनको संगीत दिया है। अगर हम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अनसुनी सी, अनछुई सी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचनाएं हैं। और वाकई कहते हैं 1906 को त्रिपुरा के शाही परिवार में जन्मे दादा, हम बात कर रहे हैं जो अनसुनी सी कुछ चीज़ें हैं, ने गाइड, आराधना और अभिमान जैसी फिल्मों में सदाबहार संगीत दिया। वे भारतीय फिल्म संगीत के सबसे प्रभावशाली रचनाकारों में से एक थे, माने जाते थे। संक्षिप्त में और अगर हम और बात करें तो सचिन देव बर्मन, और वो थे कोमिला, वर्तमान में बांग्लादेश, और उनका निधन अक्टूबर 1995 में हुआ, 75 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। कार्यक्षेत्र की बात करें तो संगीत निर्देशन पार्श्व गायक हिंदी और बांग्ला फिल्में, परिवार, पत्नी उन मीरा देव बर्मन और उनके पुत्र थे महान संगीतकार RD बर्मन साहब। प्रारंभिक जीवन SD बर्मन साहब का संबंध त्रिपुरा के शाही परिवार से था। उनके पिता नवद्वीप चंद देव बर्मन त्रिपुरा के राजा ईशान चंद्र देव बर्मन के पुत्र थे। उन्होंने अपना संगीत प्रशिक्षण अपने पिता के केसी डे जैसे उस्तादों से प्राप्त किया। उन्हें लोक संगीत, बाउल और भटियाली दोनों की गहरी समझ थी। फिलहाल हम सुनवाते हैं एक और खूबसूरत गीत।

जी हाँ दोस्तों, जितने गीत भी हैं अनमोल बेहतरीन खूबसूरत रचनाएं हैं, जी हाँ, जिन्होंने यानी कि एस डी बर्मन साहब ने संगीत दिया है। जी हाँ, संगीत उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में यादगार संगीत दिया है। उनके कुछ सबसे लोकप्रिय कार्यों में शामिल है गाइड, जी हाँ गाइड, जो 1965 प्रदर्शित फिल्म रही है और आज फिर जीने की तमन्ना है, गाता रहे मेरा दिल आराधना, जो 1969 में संगीत दिया था फिल्म, और रूप तेरा मस्ताना, मेरे सपनों की रानी, अभिमान 1973 में, और मीत ना मिला रे मन का बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत रहा है, 1967 की फिल्म रही है। आइए एक फिल्म का शानदार खूबसूरत गीत सुनवा रहे हैं और उसके बाद और भी जानकारियाँ हमारे पास मौजूद हैं, बस आनंदित रहिए, आप सुनते रहिए AIR लाइव न्यूज़ 24x7। आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत। साथियों, ये गीत अपने आप में बहुत ही सुंदर है, शायराना अंदाज में बेहतरीन खूबसूरत रचना है। महबूबा तेरी तस्वीर किस तरह मैं बनाऊं, वाकई बहुत ही सुंदर जज्बातों के साथ खूबसूरत रचना। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत नगमा।

0: कैसे
1: बेहद खूबसूरत, अनमोल, बेहतरीन रचना, वाकई कमाल। जितना सुनो और मन करता है सुनने को, है ना साथियों। ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि अभिमान फिल्म, जो बहुत ही खूबसूरत फिल्म रही है, जया प्रदा अमिताभ बच्चन पर फिल्म आई गई, बहुत ही सुंदर रचना। और संगीतकार तो आपको मालूम ही है, क्योंकि संगीतकार हैं एस जी बर्मन साहब। तो वाकई दोस्तों, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जैसे कि ज्वेल थीफ, जो 1967 प्रदर्शित फिल्म रही, जिसका एक गीत है बहुत ही सुंदर, होठों पे ऐसी बात। और 1957 की एक फिल्म है, जाने वो कैसे लोग थे, ये फिल्म का गीत है। वाकई एक फिल्म प्यासा का है ये गीत, वाकई बहुत ही शानदार है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे विरासत जो है बर्मन साहब की। तो एस जी बर्मन ने अपने शानदार गायन के लिए 1958 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और एस जी बर्मन दे द प्रिंस ऑफ म्यूजिशियन जैसी पुस्तकों में उन्होंने हिंदी संगीत को एक नया वातावरण और व्याकरण देने का माना गया है। तो फिलहाल हम सुनवाते हैं अभिमान फिल्म का एक बहुत ही सुंदर, बेहतरीन गीत, जो ऑल टाइम फेवरेट है।

0: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, अनमोल रचना भी आपने सुनी, वाकई बहुत ही शानदार। साथियों, ऐसे अनगिनत गीत हैं जो वाकई, यदि उनके बारे में और भी कुछ जो सच्चाई है, उनके दिल की जो बातें हैं, यदि हम उनकी बात बताएं तो वाकई एक अलग, जैसे कि एक नेचुरल जो रॉ मटेरियल होता है, लेकिन सुलझे हुए इंसान, वाकई अपनी आवाज़ खुद की पहचान थी उनकी। वो कभी भी नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज़ किसी अभिनेता पर फिल्माई जाए। उनकी आवाज़ अक्सर कथावाचक की तरह गीतों में सुनाई देती थी, लेकिन वहाँ कौन है तेरा ओ मेरे माजी, वाकई इतना सुंदर, बेहतरीन गीत है जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हर इंसान के जो दिल से प्यार करता है SD साहब को, SD बर्मन साहब को। वाकई सुनवाते हैं उन्हीं की आवाज़ में एक शानदार, बेहतरीन गीत। जैसे कि हमने बताया कि अपनी आवाज़ खुद की पहचान थी, वो नहीं चाहते थे कि उनकी आवाज़ किसी अभिनेता पर फिल्माई जाए। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हम खुद भी गाकर देखते हैं कि आखिरकार हमारी आवाज़ कैसी है ना। तो आइए सुनवाते हैं SD बर्मन साहब की आवाज़ में सुंदर और बेहद खूबसूरत रचना।
1: ओरे माझी

जी हाँ दोस्तों, वह बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत है मेरे माझी आपकी बार। साथियों, एक और कुछ बातें हैं जो कुछ अनसुनी सी हैं, वाकई बहुत ही खूबसूरत रचना है। किशोर कुमार के सबसे बड़े मार्गदर्शक थे कौन? जी हाँ, किशोर कुमार को बड़े गायकों की श्रेणी में स्थापित करने में बर्मन दादा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। और यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि सचिन तेंदुलकर का नाम भी, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का नाम भी सचिन देव बर्मन ने बर्मन के सम्मान में रखा गया था। जी हाँ, उनके सम्मान में सचिन तेंदुलकर का नाम भी रखा गया था। वाकई बहुत ही सुंदर। और साथियों, अगर हम उनके सम्मान की बात करें, जब हम सम्मान की बात कर रहे हैं तो सम्मान और पुरस्कार की बात करें तो वाकई फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार टैक्सी ड्राइवर जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही, उनको अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड मिला। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी 1958 में मिला, और पद्मश्री से नवाजे गए 1969 में। और फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जो पुरस्कार मिला है, अभिमान फिल्म से जो 1974 की फिल्म रही है, और BFJA पुरस्कार भी गाइड फिल्म के नाम गया। जी हाँ, और आराधना के लिए भी बहुत ही सुंदर बेहतरीन रचनाओं के लिए उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। और यदि हम बात करें कि फिल्मी जो फिल्मों में योगदान रहा है SG साहब का, तो उनके संगीत ने हिंदी सिनेमा को स्वर्णिम युग दिया है। बहुत सारी फिल्में हैं, दो भाई जो 1947 में थी, बाजी 1951, जाल 1952, टैक्सी ड्राइवर 1954, फंटूश 1956, पेइंग गेस्ट 1957, काला पानी 1958, ऐसी तमाम फिल्में हैं। साथियों, समय हमें इजाज़त तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी जाते जाते एक गीत हम छोड़े जाएंगे और उसी गीत के साथ उस कार्यक्रम को समापन की ओर लेके जाएंगे। कुछ गीत जमाने सुनते हैं, कुछ गीत जमाने सुनते हैं, कुछ गीतों कुछ दिलों की में बस जाते हैं। बर्मन दादा की धुनों का जादू सदियों तक लोगों के संग जाता है। 1956 से लेकर 1960 के दशक में एक बहुत ही प्यारी फिल्म रही है, फिल्म फंटूश। दुखी मन मेरे यहाँ नहीं रहना, माना जनाब ने पुकारा, छोड़ दो आंचल, हम बेखुदी में तो पुकारे चले गए, नन्ही कली सोने चली, ऐसे तमाम गाने हैं। सुरों की बारिश जब होती है, यादों की मिट्टी महकती है, किसी धुन में बचपन मिलता है तो किसी मोहब्बत में मोहब्बत बहकती है। नदी किनारे बैठा कोई आज भी गाता होगा, बर्मन दादा का कोई नगमा दोहराता होगा। या दोस्तों, तमाम तमाम गीत हैं, तमाम गीत हैं। और बस ये अंतिम नोट हम बता रहे हैं कि 31 अक्टूबर 1975 को संगीत का यह सूर्य अस्त हो गया, लेकिन उसकी किरणें आज भी भारतीय संगीत के आकाश को अलौकिक कर रही है। मुंबई में उनका निधन हुआ, पर उनकी धुनें अमर हो गई। दोस्तों, आज हमने सुरों के उस मुसाफिर को याद किया है जिसने भारतीय संगीत को नई दिशा दी, जिसकी धुनों में गांव की मिट्टी थी और शास्त्रीय संगीत की गरिमा थी, जिनकी रचनाओं ने प्रेम, विरह, दर्शन और जीवन के हर रंग

0: श्रोताओं, समय हुआ है 1 बजने वाले हैं। अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी,

0: नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। ममता बनर्जी ने के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत चट्टोपाध्याय को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: To develop the industrial ecosystem.
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
0: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई और 200 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों के अनुसार इस आपदा से लगभग 10,000 परिवार विस्थापित हुए हैं। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। ब्रिटेन के कार्डिफ में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 153 रन ही बना पाई। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एडजस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kevath and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal government signed a memorandum of understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and PM Swanidhi will be undertaken to cover every eligible beneficiary. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal shared these remarks while addressing the global ambassador need on the pharmaceutical sector and the curtain raiser ceremony of the Global Drug Regulators Conclave 2026 and International Exhibition of Pharma and Healthcare 2026 in New Delhi yesterday. He noted that India has signed 9 free trade agreements in recent years and now has trade agreements covering more than 50 countries, providing preferential market access across most of the developed world. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries, while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday. According to the Union Ministry of Steel, the accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at Caster 2 of Steel Melt Shop 1. The ministry stated that a sudden and severe explosion took place before the slide gate was opened to pour molten steel from the ladle into the tundish. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the accident at the Visakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh. Prime Minister has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. Union Home Minister Amit Shah yesterday chaired a high-level review meeting in New Delhi on the rejuvenation of the Yamuna River. Addressing the meeting, Mr. Shah said that the clean and pristine Yamuna is a collective resolve under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and called for coordinated efforts by the governments of Delhi, Haryana and Uttar Pradesh along with the concerned ministries under an integrated action plan. India recorded their biggest ever victory in Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off Test in New Chandigarh yesterday. The win surpassed India's previous record Test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance. It saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. And that is the end of this news bulletin.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10 और 5 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे वाकई बहुत ही सुंदर और बेहतरीन खूबसूरत गीतों का एक बेहतरीन कार्यक्रम होता है। जी हाँ, सुनहरे नाम से ही प्रतीत होता है कि सुनहरे यानी कि गोल्डन। जी हाँ, गोल्ड बिल्कुल उसी तरह खरा सच्चा और बेहतरीन खूबसूरत सोना, और उसी प्रकार से एक बेहतरीन लाजवाब गीत भी, इसीलिए कहा जाता है गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे जो गीत होते हैं 1931 से लेकर लगभग 1965 तक का ये एरा माना जाता है। तो इसी खूबसूरत कार्यक्रम गीत सुनहरे के अंतर्गत आज मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम की पहली और बेहतरीन खूबसूरत रचना से आगाज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहतरीन फिल्म का एक शानदार गीत, चाहे देखो आगे पीछे। जुल्म की पुकार फिल्म से एक शानदार खूबसूरत रचना है जो 1979 की फिल्म रही है। मन्ना डे की आवाज़

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन, संदेश प्रद, खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। जी हाँ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत आ रहा है फिल्म दास्तान से। जी हाँ, सुरैया और कोरस की आवाज़ में शानदार रचना, फिल्म दास्तान से। ऐ मेरे दिल में तू, आया मेरे दिल में तू। दास्तान फिल्म 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद नौशाद का। आइए सुनते हैं ये सुंदर खूबसूरत रचना।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही अनसुना और बेहतरीन खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही अलग काइंड ऑफ सॉन्ग, वाकई बहुत ही प्यारा। और ये जिस गीत के बारे में हम बता देते हैं, ये गीत किस फिल्म का था? जी हाँ, ये फिल्म थी दास्तान। जी हाँ, आया मेरे दिल में तू, सुरैया की आवाज़ में सुंदर खूबसूरत गीत। ये फिल्म दास्तान 1955 प्रदर्शित फिल्म रही। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का था। और बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही सुंदर मधुर गीत है ये ख़ास तौर से। और अक्सर जो छोटे बच्चे होते हैं, प्यारी सी गुड़िया होती है, उन्हीं पर दर्शाया हुआ और खूबसूरत मधुरता के साथ गाया हुआ लता मंगेशकर की आवाज़ में सुंदर रचना, फिल्म सीमा से, जो 1955 प्रदर्शित फिल्म रही। संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने इस खूबसूरत गीत। तो आइए सुनते हैं ये शानदार और बेहतरीन रचना।

0: बात सुनी रात सुहानी, सुनो छोटी सी गुड़िया की कहानी।
1: जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही मधुर सुंदर मार्मिक नोट पर खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर, और ये गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ, रमैया वस्तावैया, फिल्म 420। 420 फिल्म 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश और साथ दे रहे हैं कोरस यानी कि साथी। गीत शैलेंद्र के हैं और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं ये एक और खूबसूरत रचना।

हाँ दोस्तों, वाकई रमैया रमैया वस्ता भैया, रमैया वस्ता वस्ता वास के, वाकई बहुत ही सुंदर लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। वाकई रमैया वस्ता भैया, फिल्म श्री 420 से। एक और खूबसूरत गीत आ रहा है तुमसा नहीं देखा फिल्म से, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है। मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में शानदार रचना है। गीत संगीत से सजाया है ओपी नैयर साहब ने। जी हाँ, इस सुंदर बेहतरीन गीत को, तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

बात है, क्या बात है रफ़ी साहब की, क्या बात है। वाकई बहुत ही सुंदर अंदाज़ में शानदार खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ साथियों, एक और ख़ूबसूरत गीत की ओर बढ़ते हैं, और ये गीत है जमुना किनारे। जी हाँ जमुना किनारे टाइटल है इनका गीत का, और फिल्म की अगर हम बात करें तो ये एक एल्बम है साक्षी गोपाल, मन्ना डे जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में सुंदर रचना है ये।

साक्षी गोपाल 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है और इस गीत को खासतौर से संगीत से सजाया है चित्रगुप्त ने। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर और बेहद खूबसूरत गीत रचना।

बेहद बेहद खूबसूरत, जस्ट लाइक ए भजन। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहद खूबसूरत रचना अभी आप सुन रहे थे, जमुना किनारे। जी हाँ, वाकई प्यारा सा गीत, लाजवाब। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा गीत है, और ये गीत आ रहा है आपके पास, एक फिल्म है, बहुत ही प्यारी सी फिल्म है, और इस फिल्म का जो गीत आ रहा है आपके पास, जी हाँ, एक फिल्म है, बहुत ही शानदार, और ये वाकई इतनी सुंदर खूबसूरत रचना है, हम क्या कहें। जी हाँ, फिल्म दाग से लता मंगेशकर की बेहतरीन आवाज़ में शानदार गीत। फिल्म दाग 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है, और गीत हसरत जयपुरी के, और गीत और संगीत शंकर जयकिशन का। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन रचना।

वाकई बहुत ही मार्मिक और बेहद खूबसूरत गीत रचना अभी आप सुन रहे थे, वाकई बहुत ही लाजवाब। हाँ, कुछ गीत ऐसे भी होते हैं जो दुख भरे होते हैं, मार्मिक होते हैं, लेकिन उन गीतों में बहुत ही सुंदर मधुरता का जो एक समावेश बंधता है वो अलग बात है। लेकिन हाँ, दुख तो दुख ही होता है ना? तो दुख नहीं होना चाहिए ज़िंदगी में कभी भी किसी के साथ, और बस हम यही दुआएं करते हैं। और फिलहाल हम सुनवा रहे हैं एक और सुंदर और बेहतरीन गीत आ रहा है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म है, बहुत ही सुंदर है, लाजवाब है, और इस गीत को भी हम अब सुनवाने जा रहे हैं। एक बहुत ही प्यारा सा सुंदर अनमोल गीत लेकर आ रहे हैं हम। जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही अच्छा लगता है कि हम सुंदर सुंदर गीतों का जो समावेश बनता है, जो पुरानी फिल्म में जो होती हैं, वाकई उनकी बातें कुछ अलग होती है। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर बहुत ही खूबसूरत गीत है, और ये गीत आ रहा है आपके पास फिल्म, कौन सी फिल्म है, कौन सी फिल्म है तो हम बता देते हैं आपको ये कौन सी फिल्म का गीत है। जी हाँ, ये है नया दौर फिल्म से, जो 1957 प्रदर्शित फिल्म रही है, और मोहम्मद रफ़ी और बलवीर सिंह की आवाज़ में सुंदर खूबसूरत रचना है और संगीत से सजाया है इस बेहतरीन गीत को ओपी नैयर ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गीत आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की अंतिम रचना।

0: जी हाँ साथियों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ, 2 बजने को हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के

0: बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: बिजनेसेस आरएनडी एंड इनोवेशन ओरिएंटेड बिजनेसेस।
0: केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। क्रिकेट में आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के साथ होगा और 14 जून को एडजस्टन में भारत अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला टी20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kevath and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces, were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal government signed a memorandum of understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Subindu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Subindu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री

0: भैया बैठा चुप है भैया
1: मेरा भैया
2: हाँ हाँ तेरा भैया हाँ हाँ मेरा भैया
1: भैया भैया बोलो भैया
0: बोलूं क्या मैं अरे बोल कन्हैया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। वहीं केंद्रीय

0: कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के कोयला और खनन क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। हैदराबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि भारत का कोयला उत्पादन रिकॉर्ड 1 अरब टन तक पहुंच गया है और देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक बन गया है। उन्होंने बताया कि कोयला क्षेत्र में लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में लोगों की मौत पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। क्रिकेट में आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 से पहले खेले गए अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत का अगला अभ्यास मैच कल मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ होगा। भारत इस महीने की 14 तारीख को एजबेस्टन में अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के खिलाफ महिला T20 विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत करेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और कर्नाटक में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. President Draupadi Murmu yesterday conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan yesterday. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharati Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewad and Rameshwar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has achieved nationwide coverage, with West Bengal joining the world's largest health assurance scheme yesterday. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible beneficiaries. National Health Authority and West Bengal Government signed a memorandum of understanding in New Delhi for the implementation of the scheme in the state. The MOU was signed in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman yesterday met with West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari in New Delhi to discuss ways to accelerate West Bengal's development journey. The issue of credit availability in the state across various sectors and the implementation of central government schemes were also discussed. Finance Minister Sitharaman announced that in close coordination with the state government, a renewed saturation drive of flagship schemes such as Pradhan Mantri Mudra Yojana, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Atal Pension Yojana and PM Swanidhi will be undertaken to cover every eligible beneficiary. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal announced that India's pharmaceutical industry is projected to double in size over the next 5 years, driven by innovation, global partnerships and expanding international market access. Mr. Goyal shared these results while addressing the global ambassador meet on the pharmaceutical sector and the curtain raiser ceremony of the Global Drug Regulators Conclave 2026 and International Exhibition of

मैंने प्यार किया इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ थी लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की। अब आइए आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर के स्वर में दीवाना फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में देवदास फिल्म का ये गीत आपने सुना। अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में मुस्कान फिल्म का ये गीत।

कभी हाँ कभी ना इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब सुनवाते हैं बादल फिल्म का ये गीत, जिसको आवाज दी है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने।

0: आपका क्या ख्याल है?
1: बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे नकली सजावट से खराब ना कीजिएगा, क्योंकि खूबसूरती सादगी में ही है।
0: पॉइंट नोटेड मिस्टर
1: रोहित।
0: मिस्टर
1: रोहित।

0: कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में क्या कहना फिल्म से। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत और गज़ल अब यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव News 24x7 चैनल है। आप प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

0: अभी आप नाद ब्रह्म कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप। ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपकी एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी, कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: वंदे मातरम।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज मंगलवार है, शक संबत 1948, ज्येष्ठ मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। सुबह के 4:53 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

अब हम आपको बता दें हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। प्रातः 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन सकेंगे प्रातः 6:10 पर। 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन। श्री रामचरित मानस आप सुनेंगे 6:45 पर। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 7:10 पर। 7:30 पर होगा हमारा फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर।

दिन में 9:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक, ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:30 से। 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम

0: 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सबरस सुरमंजरी। कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:30 पर। महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन, ये कार्यक्रम होगा दिन में 12:10 से। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1:10 पर। दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही कलाकार, स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT, ये कार्यक्रम होगा दिन में 3:00 से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 5:00 को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले भी शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी के सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजेंद्र जैन ने महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। यह उपचुनाव सुनेत्रा पवार के राज्यसभा से इस्तीफे के बाद कराया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुए भीषण आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हो गए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार अत्यधिक गर्म पिछले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान यह हादसा हुआ। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उपराष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों को संबल देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में करीब 35 लोगों की मौत हो गई है और 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। फिलहाल राहत और बचाव

योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें। इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाएं। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के एक घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए। आज बात करेंगे अर्धमत्स्येन्द्रासन की। अर्धमत्स्येन्द्रासन को हाफ स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो अर्धमत्स्येन्द्रासन तीन शब्दों के मेल से बना है, अर्ध, मत्स्य और इंद्र। अर्ध मतलब आधा, मत्स्य यानी मछली और इंद्र मतलब भगवान। अर्धमत्स्येन्द्र का अर्थ है शरीर को आधा मोड़ना या घुमाना। अर्धमत्स्येन्द्रासन आपके मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी के लिए अत्यंत लाभकारक आसन है। यह आसन सही मात्रा में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है, अथवा जननांगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। यह आसन रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए। अर्धमत्स्येन्द्रासन की प्रक्रिया को आपको समझाते हैं। सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। दोनों पैरों को साथ में रखें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे।

0: अब बाएं पैर को मोड़ें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के पास रखें, या आप बाएं पैर को सीधा भी रख सकते हैं। दाहिने पैर को बाएं घुटने के ऊपर से सामने रखें। बाएं हाथ को दाहिने घुटने पर रखें और दाहिना हाथ पीछे रखें। कमर, कंधों व गर्दन को दाहिनी तरफ से मोड़ते हुए दाहिने कंधे के ऊपर से देखें। रीढ़ की हड्डी सीधी ही रखें। इसी अवस्था को बनाए रखें। लंबी गहरी साधारण सांस लेते रहें। सांस छोड़ते हुए पहले दाहिने हाथ को ढीला छोड़ें, फिर कमर, फिर छाती और अंत में गर्दन को ढीला छोड़ें। आराम से सीधे बैठ जाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी तरफ दोहराएं। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लाभ। इससे मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूती मिलती है। छाती को फैलाने से फेफड़ों को ऑक्सीजन सही मात्रा में मिलती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन में रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उसकी कार्य कौशलता में सुधार होता है। पीठ में दर्द और कठोरता से राहत मिलती है। यह आसन छाती को खोलता है और फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। अर्ध मत्स्येंद्रासन बाहों, कंधों, ऊपरी पीठ और गर्दन में तनाव को कम करता है। अर्ध मत्स्येंद्रासन स्लिप डिस्क के लिए चिकित्सीय है, लेकिन यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। यह आसन पेट के अंगों की मालिश करता है और पाचन में सुधार लाता है, जिससे कब्ज जैसी स्थिति में लाभ होता है। अग्नाशय के लिए लाभदायक है। मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी है अर्ध मत्स्येंद्रासन। यही आसन डायबिटीज, कब्ज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, मूत्रपथ विकारों, मासिक धर्म की परेशानियां और अपच के लिए चिकित्सीय है। अर्ध मत्स्येंद्रासन के दौरान कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। गर्भ अवस्था और मासिक धर्म के दौरान यह आसन वर्जित है, नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जिनके दिल, पेट या मस्तिष्क की ऑपरेशन की गई हो, उन्हें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। उनके लिए भी आसन वर्जित है। पेप्टिक अल्सर या हर्निया वाले लोगों को यह आसन बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसी तरह अगर आपको रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट या समस्याएं हैं, तो आप यह आसन ना करें। हल्के स्लिप डिस्क में इस आसन से लाभ हो सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में इसे नहीं करना चाहिए। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी इसी चैनल पर, इसी समय। योग करते रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
1: आओ योग करें। ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं।

0: ये थे, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: मैं हूं आपका जलदाता ग्रैंड वाटर। कैसे हैं आप सब? आपकी मशीनें यहां धरती में इतने नीचे भी मुझे चैन से नहीं रहने देते। हर साल मेरा ठिकाना धरती में और नीचे हो जाता है। इस वर्ष 2040 में धरती में कितना और नीचे आ गया हूं मैं? क्या लिखूं अपना दर्द? अब तो कलम में बस बूंदे ही बची हैं। अपनी फोटो भेज रहा हूं, खुद ही देख लीजिए मेरी सेहत। क्या पता अगली चिट्ठी लिख भी पाऊंगा या नहीं। आप कर सकते हैं मेरी सहायता, बस दो शब्द याद रखिए, कंट्रोल और सेव। और हाँ, अपना ख्याल रखिएगा।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

0: अभी आप देशभक्ति ये सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर गरुण मिश्रा का गायन राग नट भैरव।